103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी एफएम शिमला से बोल रहे हैं। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। समय मिलाइए हमारी स्टूडियोज़ की घड़ी में 5:58 और 32 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी

0: ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है, शिव अनादि है, शिव ही भगवंत है, भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है।

हिमांजलि कार्यक्रम अभी आपने सुना। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। 6:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं मानस गान। गायक कलाकार लता मंगेशकर, मन्ना डे, सुरेश वाडकर और रंजना जोगलेकर। संगीतकार सतीश भाटिया।

संतों के समाज को आनंदमय और कल्याणकारी बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उनकी तुलना तीर्थराज प्रयाग से की है, जहां राम भक्त रूपी गंगा तथा ब्रह्म विचार रूपी सरस्वती की धाराएं प्रवाहित होती हैं। मात्र कवियों तथा पंडितों की ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है।

मानस गान अभी आपने सुना। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। 6:50 हुए हैं। लीजिए पेश है देश गान।

0: देशगान अभी आपने सुना, 6:57 होने को हैं। लीजिए पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं गोदावरी वर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले अभ्यर्थियों का डोप टेस्ट अनिवार्य करने और इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में

0: प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित बैठक में उन्होंने चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित ग्रेजुटी व अवकाश नकदीकरण के भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में तूफान के कारण वन भूमि पर गिरे और उखड़े पेड़ों को हटाने के लिए 1 जून से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान कल शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। तीसरे चरण के तहत प्रदेश की 1189 पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान, वार्ड सदस्य और जिला परिषद व ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव के लिए वोट डाले गए। मतदान करीब 80% दर्ज किया गया। पंचायतों में तीसरे चरण के मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रजातंत्र की मजबूती जनता की सहभागिता से ही संभव है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। वे कल अपने गृह जिला बिलासपुर के झंडुता विधानसभा क्षेत्र की विजयपुर सुंगला पंचायत चुनाव में मतदान करने के अवसर पर बोल रहे थे। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने घुमारवीं विकासखंड के तहत अपनी गृह पंचायत पन्नौल मतदान केंद्र में पंचायत चुनाव के लिए मतदान किया। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश की उन्नति के लिए जनता के प्रति समर्पित उम्मीदवारों का चयन जरूरी है। FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7।
1: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला का प्रसारण। प्रातः के 7 बजने को हैं। अब आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने

0: मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। 7:05 हुए हैं। लीजिए पेश है चिंतन, प्रस्तुति डॉक्टर हुकम शर्मा की।
2: गौतम नाम का एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण वो केवल इस अर्थ में था कि ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न हुआ था। वन में पशु पक्षियों का आखेट करना ही उसकी जीविका हो गई। संयोगवश उधर एक विद्वान ब्राह्मण आ निकले। उन्होंने गौतम को समझाया कि ये पाप कर्म छोड़ दे। उनके उपदेश से गौतम भी धन कमाने का दूसरा साधन ढूंढने निकल पड़ा। उसने पहले व्यापारियों के एक यात्री दल का साथ पकड़ा, किंतु वन में मतवाले हाथियों ने उस दल पर आक्रमण कर दिया। प्राण बचाने के लिए गौतम अकेला भागा। वो भटकता हुआ एक ऐसे वन में पहुंच गया जिसमें पके हुए मधुर फलों वाले कुछ वृक्ष थे। उसी वन में महर्षि कश्यप के पुत्र राजधर्मा नामक बगुले का निवास था। ब्राह्मण गौतम संयोगवश उसी वन में उसी विशाल वृक्ष के नीचे जा बैठा जिस पर राजधर्मा का विश्राम स्थान था। संध्या के समय चमकीले पंखों वाले राजधर्मा ब्रह्मलोक से अपने स्थान पर आए तो उन्होंने देखा कि उनके यहाँ एक अतिथि आया है। उन्होंने मनुष्य भाषा में गौतम को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। गौतम के लिए उन्होंने कोमल पत्तों तथा सुगंधित पुष्पों की शैया बना दी, उसे भोजन कराया। भोजन करके जब ब्राह्मण लेट गया तब राजधर्मा अपने पंखों से उसे हवा करने लगी। जब राजधर्मा को पता लगा कि ब्राह्मण दरिद्र है और धन पाने के लिए यात्रा कर रहा है, तब उन्होंने उसे वहां से 3 योजन दूर अपने मित्र विरूपाक्ष नामक राक्षस के यहाँ जाने को कहा। दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण वहां चला गया। जब राक्षस राज ने सुना कि उसके मित्र राजधर्मा ने गौतम को भेजा है, तब उन्होंने गौतम का खूब सत्कार किया और उसे बहुत अधिक धन दे दिया। राक्षस राज से विदा होकर गौतम फिर उसी वन में आया। राजधर्मा ने उसका फिर सत्कार किया। रात्रि में राजधर्मा भी भूमि पर ही सो गए। वहां उन्होंने पास में अग्नि जला दी जिससे वन्य पशु रात्रि में ब्राह्मण पर आक्रमण ना करे। रात्रि में ही ब्राह्मण की निद्रा भंग हुई। वो सोचने लगा, मेरा घर यहाँ से दूर है, लोभवश मैंने धन भी बहुत ले लिया, मार्ग में भोजन के लिए कुछ मिलेगा नहीं और मेरे पास कुछ है भी नहीं, इस मोटे बगुले को मारकर साथ ले लूं तो मेरा काम चल जाएगा। ये विचार कर उस क्रूर ने सोते हुए राजधर्मा को मार डाला। उसके पंख नोचकर जलती अग्नि में उनका शरीर भून लिया।

0: और धन की गठरी लेकर वहां से चल पड़ा। इधर राक्षस विरूपाक्ष ने अपने पुत्र से कहा, बेटा मेरे मित्र राजधर्मा प्रतिदिन ब्रह्मा जी को प्रणाम करके ब्रह्मलोक जाते हैं और लौटते समय मुझसे मिले बिना किसी भी दिन घर नहीं जाते। आज तो दो रातें बीत गईं, वो मुझसे मिलने नहीं आए। मुझे उस गौतम ब्राह्मण के लक्षण अच्छे नहीं लगते थे। मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। तुम पता तो लगाओ कि मेरे मित्र किस अवस्था में है। राक्षस राज का कुमार दूसरे राक्षसों को साथ लेकर राजधर्मा के निवास स्थान पर पहुंच गया। वहां उसने उन पक्षी श्रेष्ठ के नोचे हुए पंखों को इधर उधर बिखरे देखा। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। शोक और क्रोध के मारे उसने उस ब्राह्मण को ढूंढना प्रारंभ किया। थोड़ी ही देर में राक्षस राज ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। उसे लेकर वे राक्षस राज के पास पहुंचे। अपने मित्र बबुले का झुलसा हुआ शरीर देखकर राक्षस राज शोक से मूर्छित हो गए। मूर्छा दूर होने पर राक्षस राज ने कहा, राक्षसों इस दुष्ट ब्राह्मण को मारकर इसका मांस खा लो। हाथ जोड़कर राक्षसगण बोले, राजन इस पापी को हम लोग नहीं खाना चाहते। इस कृतघ्न का मांस खाकर हम भी पापी बनेंगे। इसे आप चांडालों को दे दें। परंतु जब राक्षस राज ने राक्षसों द्वारा गौतम के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके वो मांस चांडाल को देना चाहा, तब वे भी उसे लेने को तैयार नहीं हुए। बोले, ये तो कृतघ्न का मांस है, इसे तो पशु पक्षी और कीड़े तक नहीं खाना चाहेंगे, हम इसे नहीं ले सकते। फलतः वो मांस यूं ही एक खंदक में फेंक दिया गया। अब राक्षस राज ने सुगंधित चंदन की चिता बनवाई और उस पर बड़े सम्मान से अपने मित्र राजधर्मा का शरीर रखा। परंतु उसी समय देवराज इंद्र के साथ कामधेनु आकाश मार्ग से वहां पधारी। कामधेनु के मुख से अमृतमय झाग चिता पर रखे राजधर्मा के शरीर पर गिर गया। इससे राजधर्मा जीवित हो गए। जीवित होने पर धर्मात्मा राजधर्मा ने उस ब्राह्मण को भी जीवित कर देने का अनुरोध इंद्र से किया। देवराज की कृपा से वो ब्राह्मण भी जीवित हो गया। यूं बुरा करने वाले को भी आपने जीवन दान दिया, यही साधुता है।
1: चिंतन अभी आपने सुना।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला का प्रसारण। 7:10 हुए हैं। आइए अब आपको एफएम शिमला पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता दें। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:15 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग शिमला। एफएम न्यूज़ हेडलाइंस आप सुनेंगे 7:57 पर, 8:30 पर और 9:57 पर। समाचार प्रभात आप सुन सकते हैं प्रातः 8 और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़। समाचार संध्या का समय रहेगा रात्रि 8:45 पर और रात्रि 9 आप सुनेंगे न्यूज़ एट 9। आठ पर आप सुनेंगे लोक संगीत। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं 8:45 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे प्रातः 9:20 पर, 10:45 पर, 3 शाम 6 और 7:45 पर। कुदरत किरण कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 9:30 पर। 10 का समय रहेगा कार्यक्रम साहित्य दर्पण का। मन की बात कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 11:00। महिला सम्मेलन कार्यक्रम का समय रहेगा 12:20 पर। 1:10 पर आप सुनेंगे म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम।

2 बजे आप सुनेंगे सबरंग कार्यक्रम, 2:15 का समय रहेगा दोपहर हिंदी समाचारों का, 2:30 पर आप सुनेंगे शिखरों के स्वर कार्यक्रम, ओल्ड हिट्स पर आधारित फिल्म

सिरमौरी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 4:20 पर। महासुई कार्यक्रम का समय रहेगा 4:50 पर। 5:20 पर आप सुनेंगे किन्नौरी कार्यक्रम। 6:06 पर बिलासपुरी कार्यक्रम और लाहौली कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 6:35 पर। सात बजकर 10 पर आप सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम। 8 का समय रहेगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का। 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 1 फिल्म से कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 9:15 पर। 9:30 का समय रहेगा दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम का। 10 आप सुनेंगे गज़लें और 10:30 का समय रहेगा सदाबहार नगमे कार्यक्रम का।

0: ये सभी कार्यक्रम आज आप FM शिमला पर सुन सकते हैं।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 MHz FM शिमला।

103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का FM शिमला पर। 7:15 हुए हैं FM शिमला पर। वक्त है गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम का। देवभूमि हिमाचल की राजधानी शिमला की खूबसूरत वादियों और पहाड़ों की ठंडी और ताजगी भरी हवाओं के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला में। मेहनत एक ऐसी शक्ति है जो हमें कामयाबी की ओर ले जाती है। कामयाबी एक ऐसी उपलब्धि है जो मेहनत के बाद मिलती है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है, क्योंकि मेहनत का रास्ता ही कामयाबी का रास्ता है।

FM शिमला पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम। आइए अब बात कर लेते हैं इतिहास के पन्नों में क्यों है खास आज का दिन। सन 1774 में पहला डाक सेवा कार्यालय आज ही के दिन खोला गया। आज ही के दिन सन 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। सन 1959 में आज ही के दिन बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण दी गई। 1964 में बंबई में इलेक्ट्रिक ट्राम अंतिम बार आज ही के दिन चली।

2010 में भारत में मान्यता प्राप्त हर प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का कानून आज ही के दिन बनाया गया था।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम। आज विश्व धूम्रपान निषेध दिवस है। हर वर्ष 31 मई को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू से होने वाले नुकसान को देखते हुए हर साल 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के सदस्यों देशों ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके द्वारा 7 अप्रैल 1988 से इस दिवस को मनाने का फैसला किया गया। इसके बाद हर 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार समूचे विश्व में प्रतिवर्ष 50 लाख से अधिक व्यक्ति धूम्रपान के सेवन के कारण अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। यदि इस समस्या को नियंत्रित करने की दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया तो वर्ष 2030 में धूम्रपान के सेवन से मरने वालों की संख्या प्रतिवर्ष 80 लाख से अधिक हो जाएगी। इस दिन लोगों को तंबाकू और धूम्रपान से होने वाले खतरों और हानियों के बारे में जागरूक किया जाता है। भारत की बात करें तो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध है। धूम्रपान छोड़िए और जीवन से नाता जोड़िए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए FM शिमला।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम। आइए अब बात करते हैं उस अभियान के बारे में जो सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारी जिम्मेदारी और हमारे शहर के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वच्छ शिमला अभियान की, जिसे शिमला नगर निगम द्वारा लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। नगर निगम का उद्देश्य केवल कचरा उठाना नहीं, बल्कि लोगों में ये भावना विकसित करना है कि सार्वजनिक स्थान भी उतने ही अपने हैं जितना हमारा घर। आइए हम सब मिलकर अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं।

आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम। शिमला का मौसम केवल तापमान का हाल नहीं बताता, बल्कि ये प्रकृति के रंगों, पहाड़ की खूबसूरती और जीवन की ताजगी का एहसास भी करवाता है। कभी धूप की सुनहरी किरणें, कभी बादलों की चादर, तो कभी ठंडी हवाओं का मधुर स्पर्श। आज के मौसम की बात करें तो आज सुबह से ही हल्की बारिश जारी है, जिससे शिमला का मौसम सुहाना हो गया है। बारिश की बूंदें जब देवदार और चीड़ के वृक्षों पर गिरती है तो प्रकृति का संगीत सुनाई देने लगता है। यही तो है शिमला के मौसम की खासियत।

सड़क पर सुरक्षित यात्रा केवल नियमों से नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी और जागरूकता से भी सुनिश्चित होती है। ट्रैफिक नियम हमारी सुरक्षा के लिए है। गति सीमा का पालन करें, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें। सड़क पर एक गलती न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बन सकता है, इसलिए जिम्मेदार नागरिक बने और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।

गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप यूं ही सुनते रहिए एफएम शिमला का प्रसारण। सात बजकर 55 मिनट हुए हैं और वक्त है एफएम हाइलाइट्स का। प्रातः 8:32 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं 8:45 पर।

9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कुदरत किरण कार्यक्रम का समय रहेगा 9:30 पर। 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम साहित्य दर्पण।

0: प्रातः 11 बजे आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। 7:57 होने को हैं। लीजिए पेश है FM न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं गोदावरी वर्मा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले अभ्यर्थियों का डोप टेस्ट अनिवार्य करने और इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित बैठक में उन्होंने चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित ग्रेच्युटी व अवकाश नकदीकरण के भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में तूफान के कारण वन भूमि पर गिरे और उखड़े पेड़ों को हटाने के लिए 1 जून से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान कल शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। तीसरे चरण के तहत प्रदेश की 1189 पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान, वार्ड सदस्य और जिला परिषद व ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव के लिए वोट डाले गए। मतदान करीब 80% दर्ज किया गया। पंचायतों में तीसरे चरण के मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। प्रदेश में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों और 4 नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में हुए चुनाव के लिए हुए मतदान की आज गणना की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश के 91 विकासखंड मुख्यालयों में अब से कुछ देर बाद ठीक 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने दावा किया है कि प्रदेश के 4 नगर निगमों मंडी, धर्मशाला, पालमपुर व सोलन के चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। कल शिमला में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, जबकि भाजपा

0: भाजपा का प्रदेश विरोधी चेहरा पूरी तरह उजागर हो गया है। विनय कुमार ने भाजपा पर आरडीजी बंद करवाने का आरोप भी लगवाया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने घुमारवी विकासखंड के तहत अपनी गृह पंचायत पन्नौल मतदान केंद्र में पंचायत चुनाव के लिए मतदान किया। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश की उन्नति के लिए जनता के प्रति समर्पित उम्मीदवारों का चयन जरूरी है। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। प्रातः के 8 बजने को हैं। अब आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
6: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी।
5: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल

0: शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब ₹1.50 प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर ₹13.50 प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो

0: उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
1: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष 2 में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले 2 दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस

0: रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of the Nausena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor. The Defence Minister said Indian Navy was deployed in the Arabian Sea with full preparedness and strength, maintaining constant pressure on the adversary. He said as a result, Pakistan's entire Navy remained confined to its ports.
3: The cowardly terrorist attack in Pahalgam last year outraged the entire nation and stirred deep emotions across the country. In response, all three branches of the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, targeting and neutralizing terrorist infrastructure in Pakistan. While the Indian Army and the Indian Air Force played crucial operational roles in the mission, the Indian Navy remained strategically deployed in the Arabian Sea with full combat readiness, ensuring comprehensive support and preparedness throughout the operation.
2: Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi also said that Indian Navy's immediate deployment of a carrier battle group and its forward operational posture in the Northern Arabian Sea forced the Pakistan Navy to remain confined to harbour or close to the Makran coast. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived in New Delhi last evening. Union Minister of State for External Affairs Keerti Vardhan Singh received him at the airport. External Affairs Minister

0: Down treads the middle path. Less than half of new launches likely to be electric, as car makers unsure of transition best with multi-powertrain portfolio. Times of India cites Google fined for misdirecting searches to rivals' products. And finally, Times of India in a photo caption, Dhool Andar sweeps Rajasthan. Reports on the massive dust storm that barreled through several parts of Rajasthan, plunging several towns into darkness around 2 p.m. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a five-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। 8:30 हुए हैं। लीजिए पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस।
3: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं गोदावरी वर्मा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल देर सायं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत लंबित भुगतान को चुकाने के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को उनके घर के निकट बेहतर और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके दृष्टिगत पिछले 3.5 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कल नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान ऐप के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। इस डिजिटल एप्लीकेशन का उद्देश्य देशभर के स्कूलों और कॉलेजों को तंबाकू मुक्त बनाना है। श्रीवास्तव ने कहा कि तंबाकू का सेवन कैंसर, हृदय रोग, आघात और श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रजातंत्र की मजबूती जनता की सहभागिता से ही संभव है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। वे कल अपने गृह जिला बिलासपुर के झंडुता विधानसभा क्षेत्र की विजयपुर सुंगला पंचायत चुनाव में मतदान करने के अवसर पर बोल रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल कल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पूर्ण मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति के मार्गदर्शन में शिमला जिला के न्यायालयों में मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन चालान मामले, घरेलू हिंसा मामले, ऋण वसूली विभाग व बेदखली के मुकदमे और भूमि अधिग्रहण सहित अन्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज सुबह से रुक रुक कर हल्की वर्षा होने से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वे पिछले कल राज्य के कई स्थानों पर ओलावृष्टि का समाचार भी है, जिससे सेब सहित अन्य फसलों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। विभाग ने कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि व 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला का प्रसारण। लीजिए पेश है लोक संगीत।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। 8:45 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में तकदीर फिल्म का गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

लीजिए सुनिए मुकेश की आवाज़ में मिलन फिल्म का गीत, गीत की बोल आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में शागिर्द फिल्म का गीत, गीत के बोल मजरूह के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गीत अभी आपने सुना। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में वासना फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में लीजिए सुनिए लोफर फिल्म का गीत, गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म संगीत अभी आपने सुना। एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। 9:15 हुए हैं। आइए अब आपको आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता दें। प्रातः 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। सुरबेला कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 9:30 पर। दस बजे आप सुनेंगे साहित्य दर्पण कार्यक्रम। 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 11 का समय रहेगा मन की बात कार्यक्रम का। 12:20 पर आप सुनेंगे महिला सम्मेलन कार्यक्रम। 1:10 पर आप सुन सकते हैं सैनिकों के लिए कार्यक्रम।

2 बजे सुनहरी किरणें कार्यक्रम पेश किया जाएगा। बाल सभा कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:30 पर। 3 बजे का समय रहेगा प्रादेशिक समाचार का। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 4:20 से। सबसे पहले आप सुनेंगे सिरमौरी कार्यक्रम। 4:50 पर आप सुनेंगे महासुई कार्यक्रम। किन्नौरी कार्यक्रम का समय रहेगा 5:20 पर। 6:06 पर आप सुनेंगे बिलासपुरी कार्यक्रम। और लाहौली कार्यक्रम का समय रहेगा 6:35 पर। सात बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम। आठ बजे आप सुनेंगे धारारे गीत कार्यक्रम। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं 8:15 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। 9:15 पर आप सुनेंगे गजलों पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला, DTH और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों और चार नगर निगमों में हुए चुनावों की मतगणना जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत लंबित भुगतान को चुकाने के लिए 100 करोड़ रुपए किए जारी। और चंबा जिला में पर्यटक वाहन दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों और चार नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में हुए चुनावों के मतों की गणना आज सुबह 9 बजे शुरू हुई। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। जिला कांगड़ा के 54 जिला परिषद वार्डों के लिए डाले गए मतों की गिनती जिले के 18 ब्लॉक मुख्यालयों में स्थापित मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। इसी दौरान जिला परिषद व ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता से।
1: मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला कांगड़ा के 54 जिला परिषद वार्डों के लिए डाले गए मतों की गिनती जिले के 18 ब्लॉक मुख्यालय में स्थापित मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। इसी दौरान ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। वहीं नगर निगम धर्मशाला और नगर निगम पालमपुर के चुनावों की मतगणना भी सुबह 9 बजे से आरंभ होगी। दोनों नगर निगमों में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से हुआ था, इसलिए मतगणना भी ईवीएम के जरिए ही करवाई जाएगी। प्रशासन ने इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं। मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी मतगणना केंद्रों पर डबल टीयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। सुरक्षा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतगणना केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन, वीडियो कैमरा तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल अधिकृत अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रत्याशियों और उनके अधिकृत मतगणना अभिकर्ताओं को ही निर्धारित नियमों के तहत प्रवेश दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: सिरमौर जिला में सभी विकास खंड मुख्यालयों पर मतगणना की जा रही है। मतगणना के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिला में आज जिला परिषद के 54 और पंचायत समिति के 312 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। विस्तृत जानकारी के साथ सिरमौर जिला संवाददाता।
2: सिरमौर जिला में सभी विकासखंड मुख्यालयों पर मतगणना की जा रही है। जिला में कुल 365 उम्मीदवार जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए चुनावी मैदान में है, जिनमें से पंचायत समिति के 143 पदों के लिए 312 और जिला परिषद के 17 पदों के लिए 54 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। मतगणना के लिए कुल 12 टेबल जिला मुख्यालय नाहन में लगाए गए हैं, जहां जिला परिषद के 2 वार्डों के अलावा पंचायत समिति के 12 वार्डों की मतगणना की जानी है। आकाशवाणी समाचार के लिए नाहन से सतीश शर्मा।
0: इधर सोलन नगर निगम व जिला परिषद सोलन तथा पंचायत समिति सदस्यों के वोटों की गिनती भी जारी है। मंडी जिले में जिले के सभी 36 जिला परिषद वार्डों, 14 विकास खंडों के अंतर्गत आने वाले 240 से अधिक पंचायत समिति वार्डों तथा मंडी नगर निगम के 15 वार्डों के लिए मतगणना जारी है। विस्तृत जानकारी हमारे मंडी जिला संवाददाता।
3: जिले के सभी 36 जिला परिषद वार्डों, 14 विकास खंडों के अंतर्गत आने वाले 240 से अधिक पंचायत समिति वार्डों तथा मंडी नगर निगम के 15 वार्डों के लिए मतगणना जारी है। जिला परिषद की 36 सीटों और जिला भर के 240 से अधिक बीडीसी वार्डों के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। वहीं मंडी नगर निगम के सभी 15 वार्डों में चुनाव लड़ रहे 42 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला भी आज होना है। मंडी नगर निगम में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और कई वार्डों में प्रभावशाली निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच सिमट गया है। नगर निगम मंडी में 15 वार्डों में इस बार कुल 42 उम्मीदवार मैदान में हैं। विभिन्न वार्डों में आरक्षण

0: के तहत अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। जिले भर में मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और शुरुआती रुझानों के साथ ही समर्थकों व प्रत्याशियों की नजरें परिणामों पर टिकी हुई हैं। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल देर सायं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत लंबित भुगतान को चुकाने के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को उनके घर के निकट बेहतर और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके दृष्टिगत पिछले 3.5 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज़ चमियाणा, IGMC शिमला और टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में आधुनिक ऑटोमेटेड लैब स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इन प्रयोगशालाओं में खून के एक ही नमूने से कई तरह की जांच की जा सकेगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इसका उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान दिलाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 1987 से विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कल नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान ऐप के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। इस डिजिटल एप्लीकेशन का उद्देश्य देश भर के स्कूलों और कॉलेजों को तंबाकू मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन कैंसर, हृदय रोग, आघात और श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। सचिव ने बताया कि देश भर में अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, आयुष संस्थानों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं में 2000 से अधिक तंबाकू मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। चंबा जिले के बैरागढ़ पांगी वाया साच पास मार्ग पर एक पर्यटक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें 7 पर्यटक व 1 चालक शामिल है। बेंगलुरु के ये सैलानी 29 मई को पर्यटन स्थल डलहौजी से साच पास बर्फ देखने निकले थे। अचानक कालावन के पास उनका वाहन गहरी खाई में जा गिरा। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया कि इस दुर्घटना का पता 30 मई को लगा और दुर्गम इलाके में पुलिस और राहत दल का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त उपायुक्त चंबा मौके पर मौजूद हैं और राहत व बचाव कार्यों को संपन्न करवाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से कल से 15 जून तक प्रदेश में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जिला किन्नौर में भी कृषि विभाग तथा आत्मा परियोजना के माध्यम से विभिन्न जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिक ब्यौरा हमारे किन्नौर जिला संवाददाता से।
2: परियोजना निदेशक जिला किन्नौर डॉक्टर रमेश लाल ने बताया कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता तथा जैविक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति है जो स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कृषि ज्ञान पर आधारित है तथा खेती की लागत कम करने के साथ भूमि की गुणवत्ता सुधारने में भी सहायक है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान जिले की विभिन्न पंचायतों और कृषि क्षेत्रों में किसान जागरूकता शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम, खेत प्रदर्शन और समूह चर्चाओं का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, बारिश के बीच तीसरे चरण में सर्वाधिक 80.81% मतदान। नगर निगमों, जिला परिषद, BDC के नतीजे आज। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, अंतिम चरण में रिकॉर्ड 81% मतदान। पंजाब केसरी की सुर्खी है, ऊना में मोबाइल की रोशनी में मतदान, प्रदेश को मिले 1189 और जनप्रतिनिधि। जबकि दैनिक जागरण के मुताबिक, वर्षा के बीच जमकर बरसे वोट। अमर उजाला की एक अन्य खबर है, चंबा घूमने आए पर्यटकों की गाड़ी खाई में गिरी, चालक समेत 8 लापता। दिव्य हिमाचल लिखता है, चुराह के कालाबन में 8

0: पर्यटकों की मौत की आशंका। मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है, बारिश से 14 डिग्री तक गिरा पारा, आज भी तूफान और ओले गिरने का अलर्ट, ओलों से ऊपरी शिमला में सेब की 40 डिग्री फसल बर्बाद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों और 4 नगर निगमों में हुए चुनावों की मतगणना जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। प्रदेश सरकार ने हिम केयर योजना के तहत लंबित भुगतान को चुकाने के लिए 100 करोड़ रुपए किए जारी। और चंबा जिला में पर्यटक वाहन दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 10:45 पर। नमस्कार।
1: अभी आपने सुने प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी। माटी की महक है जहां, खेतों खलियानों की वही आवाज घाटियों में गूंजती है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, FM

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। 9:30 हुए हैं। एफएम शिमला पर वक्त है कुदरत की रंग कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश की उस अद्भुत प्राकृतिक धरोहर के पास, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो धरती ने आसमान का आईना अपने आंचल में सजा लिया हो। हम बात कर रहे हैं चंद्रताल झील के बारे में, जिसे चंद्रमा की झील यानी मून लेक भी कहा जाता है।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं कुदरत किरण कार्यक्रम। समुद्र तल से लगभग 4,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की ठंडी रेगिस्तान वादियों में बसी हुई है। इसकी अर्धचंद्राकार आकृति के कारण ही इसे मून लेक भी कहते हैं। दूर दूर तक फैले बर्फ से ढके पहाड़, नीला आसमान और बीच में चमकती हुई चंद्रताल झील, ये दृश्य किसी सपने से कम नहीं लगता। इस झील की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसका रंग बदलता रहता है। सुबह की सुनहरी किरणों में ये झील हल्की नीली दिखाई देती है, दोपहर में फिरोजी रंग में चमकती है और शाम होते होते ये गहरे नीले रंग का रूप धारण कर लेती है। प्रकृति का ये अनोखा दृश्य सैलानियों और फोटोग्राफर्स के लिए स्वर्ग सा अनुभव देता है।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

FM शिमला पर आप सुन रहे हैं कुदरत किरण कार्यक्रम और आज बात हो रही है चंद्रताल झील के बारे में। चंद्रताल केवल सुंदरता का प्रतीक ही नहीं बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2005 में इसे रामसर साइट यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया है। यहाँ कई दुर्लभ वन्य जीव और पक्षियों का निवास भी है। इनमें हिम तेंदुआ, हिमालयी आईबैक्स, ब्लू शीप, गोल्डन ईगल और अनेक प्रवासी पक्षी शामिल हैं। जब हवा की सरसराहट झील की लहरों से टकराती है और जब बर्फीली चोटियाँ पानी में अपना प्रतिबिंब बनाती है तब ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं को मधुर गीत गुनगुना रही हो।

झील की लहरों से टकराती है और जब बर्फीली चोटियां पानी में अपना प्रतिबिंब बनाती है तब ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं को मधुर गीत गुनगुना रही हो।

यहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले मनाली आना होगा। मनाली से लगभग 100 किलोमीटर दूर मनाली काजा मार्ग पर टैक्सी या बाइक से यहाँ पहुँचा जा सकता है। मुख्य पार्किंग स्थल से झील तक पहुंचने के लिए लगभग 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। इन सर्दियों के बाद प्रशासन ने इसे फिर से सैलानियों के लिए खोल दिया है। यहां आने का सबसे बढ़िया समय जून से सितंबर के बीच का होता है। ऐसे स्थानों पर कूड़ा या कचरा फेंकने से बचें। प्रकृति की इस अमूल्य धरोहर को स्वच्छ और सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें।

0: कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 9:57 होने को हैं। लीजिए पेश है FM न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं गोदावरी वर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल देर सायं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत लंबित भुगतान को चुकाने के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को उनके घर के निकट बेहतर और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में आज जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों और 4 नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में हुए चुनाव के मतों की गणना आज सुबह 9 बजे शुरू हुई। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। जिला कांगड़ा के 54 जिला परिषद वार्डों के लिए डाले गए मतों की गिनती जिले के 18 ब्लॉक मुख्यालयों में स्थापित मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। इसी दौरान ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। मंडी जिले में जिले के सभी 36 जिला परिषद वार्डों, 14 विकास खंडों के अंतर्गत आने वाले 240 से अधिक पंचायत समिति वार्डों तथा मंडी नगर निगम के 15 वार्डों के लिए मतगणना जारी है। सिरमौर जिला में सभी विकास खंड मुख्यालय पर मतगणना की जा रही है। मतगणना के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिला में आज जिला परिषद के 54 और पंचायत समिति के 312 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इसका उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान दिलाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 1987 से विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। चंबा जिले के बैरागढ़ पांगी वाया साच पास मार्ग पर एक दर्दनाक हादसे से एक पर्यटक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें 7 पर्यटक व एक चालक शामिल है। बेंगलुरु के ये सैलानी 29 मई को पर्यटन स्थल ढलौजी से सांच पास बर्फ देखने निकले थे। अचानक कालाबन के पास उनका वाहन गहरी खाई में जा गिरा। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया कि इस दुर्घटना का पता 30 मई को लगा और दुर्गम इलाके में पुलिस और राहत दल का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। FM न्यूज हेडलाइंस में आज बस इतना ही। नमस्कार।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला का प्रसारण। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला का प्रसारण। प्रातः के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है साहित्य दर्पण कार्यक्रम।

0: नमस्कार, साहित्य दर्पण कार्यक्रम के आज के संक में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष पर आकाशवाणी के स्टूडियो में आयोजित कवि गोष्ठी की दूसरी कड़ी। इस कड़ी में आइए सुनते हैं कविताओं के साथ कवियों की यादें और अनुभव जो समर्पित हैं आकाशवाणी के लिए। क्या खोजते हो दुनिया में जब सब कुछ तेरे अंदर है, क्यों देखते हो औरों में जब तेरा मन ही दर्पण है। तो आइए शुरुआत करते हैं रोशन जसवाल जी से।
1: पूरे आकाशवाणी परिवार को हृदय के अंतःकरण से मैं आभार देता हूँ। आकाशवाणी शिमला से एक लंबे समय तक जुड़ाव रहा है और मुझे अवसर मिल रहा है कि मैं उन सभी लोगों को याद करूं जिनके साथ मैंने काम किया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज मैं मन से याद करना चाहता हूँ, जिनके नाम नहीं भी आए वो भी इस रचना में शामिल है। देवभूमि हिमाचल में गूंजे आकाशवाणी की शान, देवभूमि हिमाचल में गूंजे आकाशवाणी की तान, शिमला से कांगड़ा तक महकता इसका मान। बर्फीले इन ऊंचे शिखरों पर तूने रोशनी जगाई है, जहां ना पहुंचती राहें तेरी आवाज आई है। शिमला के माल रोड से हमीरपुर की छांव तक, शिमला के माल रोड से हमीरपुर की छांव तक तूने जोड़ा दिल का रिश्ता दूर दराज के गाँव तक। कुल्लू मंडी चंबा गाते सोलन की हर बोली, कुल्लू मंडी चंबा गाते सोलन की हर बोली, हर सुर में अपनापन हर दिल की हमजोली। आज भी कुछ यादें मन में धीरे धीरे आती है, आज भी कुछ यादें मन में धीरे धीरे आती है, पुराने स्वर वो अपने लोग आंखें नम हो जाती। राम कुमार काले हंसा गौतम के समाचार गूंजते थे, राम कुमार काले हंसा गौतम के समाचार गूंजते थे शाम, सच की धारा बहती थी जैसे पावन कोई धाम। दीपक भंडारी की आवाज़, दीपक भंडारी की आवाज़, बी आर मेहता का अंदाज, अक्षर सिंह की अनाउंसमेंट जैसे सुरों का ताज। जानकी और लता बोबो, जानकी यानी कला ठाकुर, उनका रेडियो का नाम जानकी था। लोग ढूंढते थे उनको यहाँ आके, गेट पर पूछते थे जानकी जी कौन है। जानकी जी तो कोई थे नहीं, कला ठाकुर जी थे। और लता जी, वनिता मंडल जिन लोगों ने सुना होगा वो जानते हैं। जानकी और लता बोबो की बातें मीठे जैसे पहाड़ी गीत, जानकी और लता बोबो की बातें मीठे जैसे पहाड़ी गीत, उनकी हंसी में बसता था अपनापन और प्रीत। डायलेक्ट की तरफ आते हैं थोड़ा सा। अमर सिंह चौहान, अमर सिंह चौहान, कृष्ण कालिया हीरा नेगी शांता वालिया कमान, शांति स्वरूप गौतम, जेसी पठानिया की वाणी जैसे सजीव पहचान। पुराने स्वर थम गए गूंज अभी बाकी है, पुराने स्वर थम गए गूंज अभी बाकी है, यादों की वो गर्माहट दिल में आज अभी बाकी है। नए मित्रों तुम उनकी सीख लेकर चलना, सिर्फ आवाज न बनना दिल से दिल तक पहुंचना। देवभूमि के हर आंगन में तेरी गूंज निराली है, आकाशवाणी के बिना हर सुबह अधूरी और खाली है। सुरो बोलियों का ये संगम जैसे गंगा की अविरल धारा है, हिमाचल की वादियों में गूंजता रहे आकाशवाणी प्यारा है। धन्यवाद।
2: बहुत बढ़िया जसवाल जी, आपने आकाशवाणी की यात्रा में इस आकाशवाणी को सुसज्जित, परिमार्जित और लोगों के हृदय में जगह बनाने में जिन वक्ताओं का योगदान रहा है उनको भी आपने स्मरण किया, और ज़रूरी था, स्मरण किया जाना भी ज़रूरी था। अभी हम इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कविता शब्दों के तर्कश से निकली ऐसी वानगी होती है जिसमें एक रूह होती है। जहां बंद होती है आदमी की जुबान, वहां कविता बोलती है। शायद इस सम्मेलन में कदाचित जो आप सोच रहे होंगे कि भाई जो हम वैसे बयां नहीं कर पा रहे, हमारे कवि लोग इस कविता के अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और मैं दाद दे रहा हूँ, समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर है कवि आत्मरंजन। कविता में जो पहचान बनाई है राष्ट्रीय स्तर पर, आज कई विश्वविद्यालय में पढ़ाए जा रहे हैं, शोध कार्य इनकी कविताओं पर हो रहा है। वर्तमान में ये शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य का दायित्व

0: संभाल रहे हैं और आकाशवाणी से लंबे अरसे तक युववाणी के माध्यम से एक नैमित्तिक उद्घोषक के रूप में कार्य किया है और आज एक कवि के रूप में और विषय विशेषज्ञ तदुपरि एक वार्ताकार के रूप में आकाशवाणी से लगातार जुड़े हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं कवि आत्मारंजन जी से।
1: नमस्कार मित्रों, स्नेही जी ने बहुत लंबी भूमिका बांधी। मैं आकाशवाणी पर कोई विशेष कविता तो लेकर के नहीं आया हूँ, लेकिन आकाशवाणी के साथ बहुत आत्मीय, बहुत संवेदनशील अनुभव मेरे जुड़े हैं। दो चार पंक्तियों में उनकी बात मैं ज़रूर करूँगा और दूसरे दौर में एक आध कविता में सुनाऊँगा। आकाशवाणी से बहुत गहरी, बहुत आत्मीय संपृक्ति रही है, जुड़ाव रहा है। और मैं याद कर रहा हूँ कि एक श्रोता के रूप में तो स्वाभाविक है, उस दौर में सभी ने बचपन से ही इस माध्यम को अपना माना है श्रोता के रूप में, लेकिन कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के रूप में भी मेरी गहरी संपृक्ति, गहरा जुड़ाव आकाशवाणी से रहा है। लगभग 90 के आसपास मैं आकाशवाणी से युववाणी कार्यक्रम के उद्घोषक के रूप में जुड़ा और एक लंबी वो यात्रा रही। उसके बाद आकाशवाणी से नैमित्तिक उद्घोषक के रूप में, जैसे जसवाल जी भी कह रहे थे, हमारा बहुत आत्मीय लगाव, जुड़ाव रहा। और दीपक जी यहाँ बैठे हैं, वर्मा जी यहाँ बैठे हैं, इन सब लोगों के सपना जी हैं, तो मुझे बहुत आत्मीयता से मैं याद कर रहा हूँ कि दीपक जी ड्यूटी रूम में होते थे और रिपोर्ट लिखी जाती थी कार्यक्रम की, जब उद्घोषक अपना कार्यक्रम पूरा करता था और रिपोर्ट लिखी जाती थी कभी कभी विशेष अवसरों पर। तो मुझे अच्छे से याद है कि दीपक जी ने कई बार, बहुत आत्मीयता से मैं याद करता हूँ और कवि के रूप में या लेखक के रूप में उसके बाद मेरी पहचान बनी, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है क्योंकि भाषा का जो बर्ताव हम आकाशवाणी में सीखते हैं और भाषा के अर्थ ध्वनियों, उन संवेगों को संप्रेषित करने का एक बर्ताव, शऊर जो है वो हमने सीखा आकाशवाणी में रहते हुए। और वो एक तरह से कहना चाहिए युवावस्था का दौर था, जिस दौर में व्यक्ति की रुचियां आकार लेती हैं, तो जो संगीत से, साहित्य से गहरा जुड़ाव बना, उसमें आकाशवाणी के साथ जुड़ाव का भी बहुत बड़ा रोल या उसकी भूमिका रही है, इसको मैं बहुत विनम्रता से स्वीकार करता हूँ। उसके बाद नैमित्तिक उद्घोषक और समाचार एकांश में भी एक उद्घोषक के रूप में या समाचार वाचक के रूप में मैंने अपना दायित्व तो संभाला, लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मेरा नैमित्तिक उद्घोषक के रूप में और आकाशवाणी से दूसरे कार्यक्रमों के रूप में जुड़ाव रहा। उसके बाद पहले साहित्य बेला हुआ करता था, अब आज के दौर में उसका नाम साहित्य दर्पण है, तो उससे मैं लगातार जुड़ा रहा। जौहल जी ने मेरी पहली किताब का पूरा धारावाहिक प्रसारण, पगडंडियां गवाह है को मेरी आवाज़ में वो गया और उसकी प्रोडक्शन जो है वो सपना जी ने उस कार्यक्रम की प्रोडक्शन की थी। आकाशवाणी मुझे इसलिए भी प्रिय है, ये माध्यम मुझे इसलिए भी प्रिय है, अभी कह रहे थे सभी लोग कि ये जनसंचार माध्यम है, वास्तव में जनसंचार माध्यम है, आम जनता से जुड़ा हुआ माध्यम है। और एक तो इसकी पहुँच बहुत दूर तक है, खेत खलिहान श्रम करता हुआ कोई व्यक्ति, वहाँ तक रेडियो की आवाज़ पहुँचती है। और एक तो पहुँच और दूसरा रेंज बहुत अच्छी है, कार्यक्रमों की रेंज की अगर हम बात करें तो पॉपुलर या लोकप्रिय गीत संगीत के कार्यक्रमों से लेकर के शास्त्रीय जो विधाएं हैं, उन शास्त्रीय विधाओं में मैं समझता हूं आकाशवाणी की जितनी बड़ी भूमिका रही है किसी और माध्यम की नहीं रही है। शास्त्रीय विधाओं को सहेजने संवारने में, चाहे नाटक है चाहे संगीत है, तो जो शास्त्रीय विधाएं हैं उनको सहेजना, उनको प्रस्तुत करना, सलीके से प्रस्तुत करना, और समाचार का तो है ही है, विश्वसनीय आधार है ही है, लेकिन जो एक सुरुचि संपन्न तरीके से जो विधाओं को प्रस्तुत करना, तो ये भी एक वजह है कि मुझे आकाशवाणी बहुत प्रिय रहा है। क्लासिकल या शास्त्रीय विधाएं हैं, गहन विधाएं हैं, उसका जो संधान परक प्रस्तुति है वो अद्वितीय विरल ढंग से आकाशवाणी करता है। और उसके पीछे, क्योंकि हम आकाशवाणी और दूरदर्शन की जो शीर्षस्थ पद है उसमें बहुत इंटेलेक्चुअल लोग बैठे होते हैं, चित्रा मुद्गल जैसे लोग रहे हैं वहाँ, लीलाधर मंडलोई जैसे लोग रहे हैं वहाँ, बहुत अच्छे जो अपनी विधाओं में, सृजनात्मक विधाओं में भी गहरी पैठ रखते हैं, ऐसे लोग रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता से, बहुत आत्मीयता से आकाशवाणी के 90 वर्ष हम पूरे कर रहे हैं, श्रोता के रूप में भी, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के रूप में भी, और अब विभिन्न जो सृजन विधाएं हैं उनके साथ जुड़े हुए एक स्रोतविद के रूप में भी मैं आकाशवाणी के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। हम सब जो आकाशवाणी से जुड़े हैं, इस विधा की गरिमा को, इस माध्यम की गरिमा को हम जानते समझते हैं और ये अपने आप में विरल और अद्वितीय माध्यम है। आप सबको 90

0: वर्ष के आकाशवाणी की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं।
1: बहुत बढ़िया रंजन जी, आपने जो एक महत्वपूर्ण बात कही, मुझे लगता है उसको पुनर्उच्चारित किया जाना जरूरी है। आकाशवाणी ने सिर्फ पहचान नहीं दी, आकाशवाणी ने हमें भाषा को व्यक्त करने का एक तरीका सिखाया। जो हम भाषा विज्ञान में काव्य शास्त्र में पढ़ते हैं, उदात, अनुदात और स्वरित, कि गद्यात्मक भाषा को किस प्रवाह के साथ बोला जाना चाहिए जो वो कर्णप्रिय हो और संप्रेषणीय हो, वो कर्णप्रियता और संप्रेषणीयता का अगर सर्वाधिक विकास कहीं होता है तो आकाशवाणी में होता है। ये मेरा भी अपना अनुभव है, मैं इस बात को आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ। और हम आगे बढ़ते हैं, हमारे मध्य है कविता, कहानी और समीक्षा के साथ साथ फिल्म निर्माण में से जुड़ी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है डॉक्टर देवकन्या ठाकुर। आकाशवाणी शिमला से अनेक कार्यक्रमों से जुड़ी रही है और जहां लेखन को लेकर के इनकी एक अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई है, वहीं ये अभिवाचन के क्षेत्र में भी इनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है समाज में आज की तारीख में। और भिन्न भिन्न भूमिकाओं के माध्यम से आकाशवाणी शिमला में इन्होंने अपनी प्रतिभा और क्षमता को प्रमाणित किया है। मैं आग्रह कर रहा हूँ डॉक्टर देवकन्या ठाकुर जी से कि वो आप अपनी बात रखें।
2: धन्यवाद स्नेही जी। और मैं सोच रही थी अभी थोड़ी बीच में, जब यहाँ कविता पाठ हो रहा था बीच में, कि कविता तो इस फूल की तरह है जो किसी को देखकर, मतलब कि मुझे अपनी खुशबू, मुझे अपनी सुंदरता, अपनी सुगंध किसी एक तक सीमित नहीं रखनी है। कविता वो है, जीवन इतना सुंदर है और क्षण भंगुर है, सुबह फूल खिला है शाम को मुरझा जाएगा, जीवन भी ऐसा ही है। पहले मैं अपने अनुभवों की बात करती हूँ, पहले मैं एक श्रोता के तौर पर बात करती हूँ। मुझे अपने, मतलब मुझे अपना बचपन याद है कि मैं शायद सेकेंड या थर्ड क्लास में रही होंगी और मेरे पिताजी रेडियो रोज सुनते थे, जैसे न्यूज का पहले तो यही होता था ना, और एक डायलॉग भी था कि आकाशवाणी एक ही बार बोलता है तो न्यूज बड़े ध्यान से सुननी पड़ती थी। आज की तरह नहीं है कि हम बार बार सुने। हमने जो एक ट्रांजिशन वाला फेज देखा है आकाशवाणी दूरदर्शन से, उसके बाद जब जी और बाकी मीडिया में जो बूम आया और आज इंटरनेट का समय है, तो उस समय ऐसा था कि दूरदर्शन था, सैटरडे संडे हम लोग देखते थे। और मुझे याद है कि मैंने अपने पिताजी से एक बार सवाल पूछा था कि जब हम न्यूज़ सुनते थे तो बड़ा मजा आता था उन्हें सुनने में, उनकी भाषा इतनी अच्छी होती थी और दूरदर्शन में भी देखते थे। तो मैंने अपने पिताजी से अपने पहाड़ी में पूछा कि ये की पौड़ा सी जो है टीवी ने जैसी या उसमें रेडियो से बोलते हैं ना, क्या पढ़ते होंगे ये? तो मेरे पिताजी को भी पता नहीं था, उस टाइम ऐसा एक्सपोजर नहीं था। तो वो बोलते हैं ना, बड़े भारी पड़ोसी, कितने पड़ोसी की पड़ी, बड़े भारी पड़ोसी। तो मुझे ना आज भी याद आता है कई बार, वो कितने पड़ोसी, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। एक किसी संस्थान की जो प्रतिष्ठा होती है तो वो एक आकाशवाणी दूरदर्शन की, प्रसार भारती की रही है। और आज भी मैं महसूस करती हूँ, और मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ कि हाँ, मैं भी इस संस्थान से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़ी रही। एक और बात कहना चाहूंगी, जैसे न्यूज़ की बात की, उसकी क्रेडिबिलिटी की बात हुई, कि आज के समय में भी आकाशवाणी की क्रेडिबिलिटी बनी हुई है। 2009 से मैं आकाशवाणी से लगातार जुड़ी रही, 2017 तक, उसके बाद कभी कभी आना हुआ। हाँ, मतलब आकाशवाणी दूरदर्शन अगर कभी हमें बुलाता है, एक आत्मीयता सी महसूस होती है हमें। और जब हम कार्यक्रम सुनते हैं, सपना मैम को सुनते हैं, हुकुम सर को सुनते हैं, और सुबह जब चिंतन कार्यक्रम आता है सर सुबह 7 बजे, तो मेरे बच्चे भी बोलते हैं, मैं उन्हें बोलती हूँ, कौन बोल रहे हैं? ये हुकुम सर बोल रहे हैं। तो वो भी कहते हैं हुकुम सर। तो हुकुम सर से मैंने बहुत कुछ सीखा, नील वर्मा सर है यहाँ। 2006 से मैं SJVN में हूँ, वहाँ से कार्यक्रम करती थी, बल्कि दूसरी तरह से कार्यक्रमों में भी जुड़ी रही। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो सीखा, मैंने यहीं पे सीखा, भाषा को लेकर भी, जैसा कि आत्मरंजन जी ने कहा कि अपनी भाषा को परिष्कृत करने में और उससे किस तरह से आपने प्रेजेंट करना है, वो यहाँ पर, क्योंकि बाहर हमें पता होता था कि बाहर कोई खड़ा है जो आपको सुन रहा है, मॉनिटर कर रहा है। और वही वाली बात कि एक बार आप ऑन एयर हो गए तो आपकी गलती चली गई। और मैं तो इतना प्रभावित हुई कि मैंने अपना रेडियो स्टेशन शुरू कर दिया और विविध भारती सुनते हैं। एक प्रोग्राम आता है जिसमें इंटरव्यू होते हैं पुराने एक्टर्स के, आर्टिस्ट के, तो बहुत सारे आर्काइवल वैल्यू के जो प्रोग्राम आकाशवाणी के पास है, मुझे लगता है उससे अच्छा खजाना कुछ हो ही नहीं सकता। ममता सिंह, यूनुस खान, और इनको तो हमने नाम ही सुना हुआ है, बड़ा अच्छा सा लगता है। और हम तो ऐसे पागल हैं, फ़ोन भी कर लेते हैं विविध भारती में, मैं कई बार करती हूँ, और यहाँ भी आकाशवाणी में कई बार हम लोग फ़ोन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज अगर डिजिटाइजेशन का ज़माना है तो इन चीज़ों की गरिमा ख़त्म होती है। मुझे लगता है कि जो संस्थागत जो 90 वर्ष का जो साल था, ये ऐसा नहीं है कि 5-10 सालों से डिजिटल गाया है, लेकिन जो एक अपनी प्रतिष्ठा जो स्थापित की है आकाशवाणी ने, वो पिछले 90 सालों में जो क्रेडिबिलिटी बनी है, वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी।

0: हमेशा बनी रहेगी। किसी संस्थान के साथ जुड़ना और आकाशवाणी जैसे संस्थान के साथ जुड़ना, मैं बड़ा गौरव महसूस करती हूँ अपने आप में, और मैं धन्यवाद करती हूँ भगवान का भी और आकाशवाणी का भी कि हमें ऐसा मौका दिया। कविता मैं सुनाती हूँ, बहुत व्यक्तिगत भावना है, तो मैं छोटी सी एक मैंने आकाशवाणी के लिए लिखी है। तुम्हारे मधुर स्वरों की सुंदरता से मेरा मन जगमगाता है हर बार बार बार। तुम्हारे विविध भावों की रंजक रंगीन छटा मेरे हृदय और चित्त के पुष्पों को खिला देती है। प्रेम और ज्ञान देने वाले तुम अपनी मधुर ध्वनि से जग को करते हो प्रेमाधीन। सूचना ज्ञान और मनोरंजन की सलिल रचना कर हिमालय श्रृंग से अरब महासागर तक जग को सुंदर और विचित्र बनाने वाले, समभाव से प्रतिध्वनित होने वाले लोक चक्षु, कौन कर सकता है स्तुतिगान तुम्हारी महिमा का। अखिल भारत को प्रेम की डोर से बांध लिया है तुमने आकाशवाणी। धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया देवकन्या ठाकुर जी, जो अगली दाद दे रहा हूँ वो कवित्री उमा ठाकुर को। मैं और उमा ठाकुर ने कई कार्यक्रम युववाणी के एक साथ किए हैं, उन दिनों को भी मैं याद कर रहा हूँ, करीब 15 वर्ष पहले की बात होगी। उमा ठाकुर कविता कहानी और लोक संस्कृति, विशेषकर पहाड़ी काव्य में अपनी विशेष पहचान बनाए हैं, और नैमित्तिक उद्घोषक युववाणी से प्रारंभ होकर के आज आकाशवाणी के अलग अलग कार्यक्रमों में अपनी वाणी से प्रसारित कर रहे हैं, और आज इस कवि गोष्ठी में हमारे बीच में जो अंतिम कवित्री है हमारे मध्य है कवित्री उमा ठाकुर।
2: धन्यवाद सर। सभागार में उपस्थित सभी का स्वागत अभिनंदन। आज हम यहाँ पर आकाशवाणी के 90 वर्षों का जो स्वर्णिम सफर है उसके उपलक्ष्य में जो कवि गोष्ठी आयोजित की जा रही है उसमें हम सभी यहाँ शामिल हुए हैं, तो मैं अपने आप को सच में बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ आकाशवाणी से जुड़कर। जैसा कि सभी साहित्यकारों ने अपने अपने अनुभव साझा किए, तो मैं भी बचपन की कुछ स्मृतियाँ आपसे साझा करना चाहूँगी। आकाशवाणी का जो सफ़र है वो तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं, सुबह की जो सिग्नेचर ट्यून से लेकर रात को जो 11 बजे तक, तब तक हमारा रेडियो ऑन रहता था। और वर्ष जो 1990 के दशक की अगर मैं बात करूं तो मेरा 16वां जब जन्मदिन था तो मैं अंतर्देशीय पत्र लिखा करती थी रेडियो के नाम पर, तो मुझे आज भी याद है कि डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू ने वो पत्र पढ़ा था और मेरे लिए गाना डेडिकेट किया था। वो मैं यादें जो है, जो स्वर्णिम यादें हैं, आज भी याद करके अभिभूत होती हूँ। और उसी के साथ एक श्रोता के तौर पर, उसके बाद एक नैमित्तिक उद्घोषक के तौर पर वर्ष 2010 में मैंने आकाशवाणी से मैं जुड़ी, और पहले युवाणी में, उसके बाद महिला सम्मेलन में मुझे सौभाग्य मिला काम करने का। और साथ ही साथ मेरे जो महाश्री लोक संस्कृति है, महाश्री लोक संस्कृति पर मेरे 13 एपिसोड जो है प्रसारित हुए आकाशवाणी से, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और जर्नलिज्म में भी मेरा जो सब्जेक्ट रहा है, मैंने जो लघु शोध किया वो भी रेडियो पर किया, तो ये जुड़ाव जो है कहीं ना कहीं बचपन से है। और आज तक श्रोता से लेकर यहाँ पे उद्घोषक के तौर पर जो यात्रा है वो सच में बहुत ही, रेडियो हम कहते हैं कि रेडियो तो हमारे मन में बसता है, वो कहीं दिखता नहीं है, बल्कि जो ध्वनि है वो हमारे अंदर अंदर कहीं ना कहीं आत्मसात कर जाती है। और इस बात को हम यही देख सकते हैं कि जो भी साहित्यकार है, जो भी कवि है, लेखक है या कोई जनमानस है, अगर जो अपना जीवन परिचय होता है उसमें रेडियो में उनकी जो कविताएं हैं, कहानियां हैं जो शामिल हुई होती है, उसको बड़े गौरव से लिखते हैं, ये हमारी प्रसारित हुई है। आकाशवाणी से जुड़ना मुझे लगता है एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। अनिल सर हैं, उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, युवाणी में भी सिखाया कि किस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ जो है बोलना है। आज हम यहाँ हैं तो मुझे लगता है आकाशवाणी का उसमें बहुत बड़ा सहयोग है। वैसे तो माँ और जो आकाशवाणी जो शब्द है उसको शब्दों में कहीं ना कहीं नहीं भिरोया जा सकता, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है जो आकाशवाणी के 90 वर्षों का स्वर्णिम सफर है उसको अपने शब्दों में पिरोने की, तो आपके समक्ष कविता प्रस्तुत करती हूँ। 90 वर्षों से एक आवाज़ समय की धूल से गुजरती हुई मनुष्यता के भीतर अपना घर बनाती रही। वो केवल ध्वनि नहीं विश्वास की वो डोर है जिससे दूरियों को संवाद में बदला। जब सीमाओं पर बारूद की गंध तैरती रही तब तुमने साहस की भाषा बोली। जब आपदाएं आई तुमने भय नहीं विश्वास का हाथ थामा।

0: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय केवल आदर्श स्वर नहीं रहा, जन जीवन की जीती जागती साधना बनकर तुमने भाषाओं को सम्मान, लोक धुनों को समृद्धि, बोलियों को पहचान और उन आवाज़ों को मंच दिया जो अक्सर इतिहास के हाशिए में दफन हो जाती है। 90 वर्षों का ये स्वर्णिम सफर केवल प्रसारण का इतिहास नहीं, ये भारत के जन का श्रव्य महाकाव्य है। एक ऐसी स्मृति जो देश को उसकी विविधता में एकता का अर्थ देती है। आकाशवाणी तुम केवल प्रसारण नहीं, राष्ट्र की सांस्कृतिक स्मृतियों का चलता फिरता अभिलेख हो, क्योंकि रेडियो केवल सुना नहीं जाता, वो भीतर बजता है। खेतों की मिट्टी में, पहाड़ों की प्रतिध्वनियों में, दूर गांव की सांझ में, माँ की लोरी चूल्हे की आंच में, शहरों की भागती सुबह में, उस बूढ़े किसान की जेब में जो मौसम समाचार सुनकर बीज बोता है, वो हर उस विद्यार्थी की आंखों में है जो प्रतियोगिता कार्यक्रम सुनकर अपने सपनों को आकार देता है। आज मोबाइल स्क्रीन पर दुनिया उंगलियों में फिसलती है, रील्स के कोलाहल में संबंधों की उम्र छोटी हो गई है। तिरंगे डिजिटल स्टूडियो आधुनिक आवाजें पॉडकास्ट बन गई, सूचनाएं तेज हैं पर संवाद संवेदनाएं थकी हुई है। आज भी हम सब की तलाश एक जगह आकर टिकती है, वो है आकाशवाणी। मानवीय भीड़ में तुम्हारी आवाज़ आज भी उतनी ही मानवीय लगती है जैसे कोई दूर बैठा अपना धीरे से हाल पूछ रहा हो। आकाशवाणी तुम केवल ध्वनि नहीं, जनमानस का स्पंदन हो। तुम्हारी तरंगों में पीढ़ियों को जोड़ा है, तुम्हारी तरंगों ने पीढ़ियों को जोड़ा है। तुम यूं ही गूंजती रहो सीमाओं से परे, पहाड़ों से समुद्र तक, गांव से महानगरों तक, बचपन की स्मृतियों से भविष्य की उड़ान तक। क्योंकि जब तक मनुष्य के भीतर सुनने की संवेदना जीवित रहेगी, तब तक तुम्हारी आवाज़ मानवता के पक्ष में एक उजला हस्ताक्षर बनी रहेगी, एक विश्वास, एक संस्कृति, एक आत्मीय स्वर बनकर। धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया। रेडियो सुनाई नहीं देता, भीतर से बोलता है। उमा जी बहुत बढ़िया।
2: डॉक्टर सत्यनारायण स्नेही हमारे बीच में बैठे हैं। सत्यनारायण स्नेही जी हिंदी साहित्य में, कविता में, आलोचना में बराबर सक्रिय है, काफी वर्षों से सक्रिय है और बड़ी, जिसको हम कहते हैं कि सशक्त उपस्थिति अपनी बनाए हुए हैं। स्नेही जी प्राध्यापन कार्य में इन दिनों रत हैं और इसके साथ ही साथ कविता और आलोचना में बराबर सक्रिय रहे हैं, साथ ही साथ दूरदर्शन और आकाशवाणी से इनका जुड़ाव रहा है। आकाशवाणी में जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, सभी की कोई ना कोई किसी न किसी तरह की संपृक्ति या जुड़ाव रहा है आकाशवाणी से, तो स्नेही जी भी एक लंबे समय तक आकाशवाणी से जुड़े रहे। तो मैं स्नेही जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, आप आए और अपने अनुभवों को साझा करें, आत्मीय स्मृतियों को साझा करें या कविता, ये आप पर निर्भर।
1: इस वक्त जो हमारी स्मृतियां हैं वो इतनी ज्वलंत हो गई है कि वैसे भी मैं जब कभी आकाशवाणी की बात या आकाशवाणी से मुझे जब फ़ोन आता था तो वैसे ही मैं रोमांचित हो जाता हूं आज। लेकिन ये रोमांच आज का नहीं है, ये 1981-82 से लेकर के है, जब मैं 7-8 साल का होऊंगा। 1983 का मैं दो दौर की बात ज़रूर करना चाहूँगा। 25 जून 1983 को खेला गया भारत ने जो जीता विश्व कप है, और रामायण काल जो दूरदर्शन में हमने देखा है, जिस तरह से 1983 के विश्व कप की मुझे वो क्षण याद है करीब, जैसे हम आप सब बैठे हैं, सब लोग आकाशवाणी से उस विश्व कप की कमेंट्री सुन रहे थे और हमें पता लग रहा था कि लॉन्ग ऑन कौन सा है, लॉन्ग ऑफ कौन सा है, फाइन लेग कौन सा है। वो कल्पना, वो चिंतनशीलता उस काल से हमारे जहन में आकाशवाणी ने डाली। रामायण के दौर में भी ऐसे ही एकत्रित होकर के हम दूरदर्शन पर रामायण देखा करते थे। आकाशवाणी का दौर था, ये दूरदर्शन का दौर आया। लेकिन मेरे घर में पिछले 50 वर्षों से आकाशवाणी शिमला ही बजता है। मेरे पिताजी और मेरी माँ आज भी, हम सुने ना सुने, वो आकाशवाणी शिमला से समाचार अवश्य सुनती है, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता इसी

0: आकाशवाणी पर है, और आकाशवाणी जो कहती है उनके लिए वही सत्य है। ये जो सत्यता को, सत्य की जो पहचान आकाशवाणी ने करवाई है, वही पहचान हमें रोमांचित कर देती है। मैं साहित्य या शिक्षा के माध्यम से प्रदेश भर में या प्रदेश से बाहर जहाँ जहाँ भी गया हूँ, बीसियों बार मुझसे ये कहा गया है कि आप वही सत्यनारायण स्नेही है जिसको हमने युवाणी कार्यक्रम में सुना है। तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है कि मुझे लोग आकाशवाणी की वजह से पहचानते हैं। जो पहचान मुझे आकाशवाणी ने दी है, शायद वो पहचान मुझे दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं मिली। हजारों विद्यार्थी हैं जिनको हमने शिक्षा दी है, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं। आकाशवाणी ने असीमित पहचान दी है जो दूसरा कोई भी माध्यम हमें नहीं दे सकता। और आज 90 वर्ष के इस सफर में हमें फिर एकत्रित होकर के इन अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया, इसके लिए आकाशवाणी शिमला के तमाम अधिकारियों और कार्यक्रम निष्पादकों का बहुत बहुत आभार। मैं 3-4 नामों को जरूर स्मरण करना चाहूँगा जिनके माध्यम से मैं आकाशवाणी में जुड़ा। डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू, रवि श्रीवाला, जय भगवान, इंद्रजीत दुग्गल, अक्षर सिंह परमार, बी आर मेहता जी और दीपक भंडारी जी, और इनके साथ दो वो नाम जिनको मैंने सुना और उनसे मिलने की मेरी बड़ी उत्कंठा रही, जिसमें शांता वालिया से मैं नहीं मिल पाया, लेकिन हंसा गौतम से मिला। तो मैं वो भी अनुभव साझा जरूर करना चाहूँगा कि मैंने हंसा गौतम को बचपन से लेकर सुना। जब हंसा गौतम से मैं मिला, मेरे जो उद्गार थे उसको मैं साझा कर रहा हूँ कि मैं आपको बचपन से सुन रहा हूँ, फिर आज मैं पहली बार मिला हूँ। आपकी आवाज़ से जो तस्वीर मेरे मन मस्तिष्क में थी, आप वैसी ही सुंदर है। मैं साझा करना चाहूँगा हुकम शर्मा जी, सपना जी और अनिल जी और दीपक जी, जिनके साथ जो मेरे पैक्स रहे और जिनके साथ मैं आकाशवाणी के अनेक कार्यक्रमों से जुड़ा। आपने आज आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत आभार।
1: इसी के साथ साहित्य दर्पण कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। साहित्य दर्पण कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य पर आकाशवाणी के स्टूडियो में आयोजित कवि गोष्ठी की दूसरी कड़ी। अगली कड़ी आप सुनेंगे अगले रविवार इसी कार्यक्रम में प्रातः 10:30 बजे। तो अब सपना ठाकुर को साहित्य दर्पण कार्यक्रम संपन्न करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: साहित्य दर्पण कार्यक्रम अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण।
1: सुरीला सफर संगीत का साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो क्या कहना उस प्रीत का।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दे। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। 10:30 हुए हैं, लीजिए पेश है फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में इम्तिहान फिल्म का गीत के बोल मजरूह के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का

लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जीने की राह फिल्म का गीत, गीत के बोल आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

FM शिमला पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में झुक गया आसमान फिल्म का गीत। गीत के बोल हसरत जयपुरी की, संगीत शंकर जयकिशन का।

फिल्म संगीत अभी आपने सुना। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए एफएम शिमला का प्रसारण। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों और चार नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में हुए चुनाव के मतों की गणना जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। जिला कांगड़ा के 54 जिला परिषद वार्डों के लिए डाले गए मतों की गिनती जिले के 18 ब्लॉक मुख्यालयों में स्थापित मतगणना केंद्रों पर की जा रही है। इसी दौरान जिला परिषद व ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। विस्तृत ब्यौरा हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता से।
1: मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला कांगड़ा के 54 जिला परिषद वार्डों के लिए डाले गए मतों की गिनती जिले के 18 ब्लॉक मुख्यालय में स्थापित मतगणना केंद्रों पर की जाएगी।

0: एक समाचार सुनिए। प्रदेश में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों और चार नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में हुए चुनाव के मतों की गणना जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। जिला कांगड़ा के 54 जिला परिषद वार्डों के लिए डाले गए मतों की गिनती जिले के 18 ब्लॉक मुख्यालयों में स्थापित मतगणना केंद्रों पर की जा रही है। इसी दौरान जिला परिषद व ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। विस्तृत ब्यौरा हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता से।
1: मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला कांगड़ा के 54 जिला परिषद वार्डों के लिए डाले गए मतों की गिनती जिले के 18 ब्लॉक मुख्यालय में स्थापित मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। इसी दौरान ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। वहीं नगर निगम धर्मशाला और नगर निगम पालमपुर के चुनावों की मतगणना भी सुबह 9 बजे से आरंभ होगी। दोनों नगर निगमों में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से हुआ था, इसलिए मतगणना भी ईवीएम के जरिए ही करवाई जाएगी। प्रशासन ने इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं। मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी मतगणना केंद्रों पर डबल टीयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। सुरक्षा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतगणना केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन, वीडियो कैमरा तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल अधिकृत अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रत्याशियों और उनके अधिकृत मतगणना अभिकर्ताओं को ही निर्धारित नियमों के तहत प्रवेश दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: इस बीच नगर निगमों के चुनाव परिणाम आने शुरू हो गए हैं। धर्मशाला नगर निगम के कुल 17 वार्डों में 11 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इनमें 6 सीटें भाजपा तथा 4 वार्डों में कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए हैं, जबकि 1 में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 1 में भाजपा की रेखा देवी ने कांग्रेस की हिमांशी, वार्ड नंबर 2 में भाजपा के शमशेर सिंह ने कांग्रेस के ओंकार चंद को, वार्ड नंबर 3 में भाजपा की आशा देवी ने कांग्रेस की सुदर्शना देवी को पराजित किया। वार्ड नंबर 4 में कांग्रेस की नीनू शर्मा तथा वार्ड नंबर 5 में कांग्रेस की शैलजा विजयी घोषित किए गए हैं। वार्ड नंबर 6 में भाजपा की करिश्मा, वार्ड नंबर 7 में भाजपा की आशु, वार्ड नंबर 8 में भाजपा की प्रेरणा ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 9 में आजाद प्रत्याशी, जबकि वार्ड नंबर 10 में कांग्रेस के प्रत्याशी सुदेश शास्त्री ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 11 में कांग्रेस प्रत्याशी अनुराग विजयी घोषित किए गए हैं। नगर निगम मंडी के कुल 14 वार्डों में 10 के नतीजे आ गए हैं, जिनमें 8 में भाजपा तथा 1 वार्ड में कांग्रेस तथा 1 में निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से कल से 15 जून तक प्रदेश भर में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जिला किन्नौर में भी कृषि विभाग तथा आत्मा परियोजना के माध्यम से विभिन्न जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिक ब्यौरा हमारी किन्नौर जिला संवाददाता से।
2: परियोजना निदेशक जिला किन्नौर डॉक्टर रमेश लाल ने बताया कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता तथा जैविक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति है, जो स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कृषि ज्ञान पर आधारित है तथा खेती की लागत कम करने के साथ भूमि की गुणवत्ता सुधारने में भी सहायक है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान जिले की विभिन्न पंचायतों और कृषि क्षेत्रों में किसान जागरूकता शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम, खेत प्रदर्शन और समूह चर्चाओं का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल देर सायं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत लंबित भुगतान को चुकाने के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को उनके घर के निकट बेहतर और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके दृष्टिगत पिछले 3.5 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं। चंबा जिले के बैरागढ़ पांगी वाया साच पास मार्ग पर एक पर्यटक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें 7 पर्यटक व 1 चालक शामिल है। बेंगलुरु के ये सैलानी 29 मई को पर्यटन स्थल डलहौजी से साच पास बर्फ देखने निकले थे। अचानक कालावन के पास उनका वाहन गहरी खाई में जा गिरा। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया कि इस दुर्घटना का पता 30 मई को लगा और दुर्गम इलाके में पुलिस और राहत

0: का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त उपायुक्त चंबा मौके पर मौजूद हैं और राहत व बचाव कार्य को संपन्न करवाया जा रहा है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इसका उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान दिलाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कल नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान ऐप के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

देशगान अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। इस कार्यक्रम को आप FM शिमला पर भी सुन सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
5: चले
6: ले, आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: पर्सनल लोन ऑफर
9: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
8: फ्री ट्रिप टू दुबई,
9: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
10: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
9: तो क्या करूं?
10: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
9: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
10: हाँ, रिपोर्ट मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
11: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे

0: सुनकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ, एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड ख़त्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया, एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है, एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ, और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया, तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था, तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा, तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरी टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है, तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
3: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर, फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो

0: उसने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियाँ करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी। मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला, और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। 100 मीटर रेस में दौड़ना

0: एक साल बुरा चला गया तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो सब 10 या सब 10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है। बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा। क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहाँ पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जब तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा,
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी

परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी। दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड

करने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नेदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर

कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा

0: फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला।
1: आइए जानते हैं हमारे अगले कार्यक्रमों के बारे में। कुछ ही पलों में आप 12:20 पर सुनेंगे महिला सम्मेलन कार्यक्रम। 1:10 पर सुनेंगे आप सैनिकों के लिए।

कृषि जगत कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 7:10 पर। धारावी गीत कार्यक्रम रात 8:00, फिल्म संगीत 8:15 पर और सुगम संगीत कार्यक्रम का समय होगा रात 8:30।

0: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। बारह बजकर 10 मिनट हुए हैं एफएम शिमला पर। यह समय है फिल्म संगीत का।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं फिल्म शिमला पर।

ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप FM शिमला पर भी सुन सकते हैं।

0: जब तक मन और तन स्वस्थ रहते हैं, हम तब तक ही धन और सुख सुविधाओं का आनंद ले पाते हैं। इसलिए तन और मन को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। तो बहनों, स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपका आज के इस महिला सम्मेलन कार्यक्रम में। आज मैं आपके साथ हूँ दीपिका,
1: और मैं प्रोमिल।
0: आप सभी को हमारा
1: नमस्कार। बहनों, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष

0: वर्ष 31 मई यानी आज ही के दिन मनाया जाता है और इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें इसके सेवन से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है।
1: जी, और आज के समय में तंबाकू का जो सेवन है बहनों, वो एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्या बन चुका है। बहनों, तंबाकू के सेवन से कैंसर, फेफड़ों की बीमारी, हृदय रोग और सांस संबंधी कई समस्याएं हो सकती है। कई युवा केवल फैशन या दोस्तों के दबाव में आकर इसकी शुरुआत कर देते हैं, जो आगे चलकर एक बुरी लत बन जाती है। इसलिए हमें शुरू से ही इसके नुकसान के बारे में जागरूक रहना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। और बहनों देखिए, इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस की जो थीम है वो है आकर्षण का पर्दाफाश, यानी निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला।
1: जी,
0: तो इस विषय का मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम जनता को तंबाकू और ई सिगरेट जैसे आधुनिक निकोटीन उत्पादों के जो भ्रामक प्रचार है ना, उनसे होने वाले गंभीर दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है।
1: बिल्कुल। और बहनों, हम सभी जानते ही हैं कि तंबाकू, शराब, गुटखे जैसे नशे से किसी का भला नहीं हुआ, तो हमारा कैसे हो सकता है? इसलिए हमारा फर्ज बनता है खुद को इन बुरे नशों से दूर रखें और लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए जागरूक भी करते रहें, तभी एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो सकता है।
0: जी, तो बहनों इसी विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर रविंद्र कुमार और उनसे बातचीत कर रही है सपना ठाकुर, तो आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ कार्यक्रम में हाजिर हुए हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो केवल एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे समाज के स्वास्थ्य से जुड़ा है। सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि आज युवा इसकी चपेट में आ रहा है। तंबाकू शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। इसमें मौजूद निकोटीन और जहरीले रसायन धीरे धीरे गंभीर बीमारियों को न्योता देते हैं। आज हम आपको सुनवा रहे हैं तंबाकू और स्वास्थ्य विषय पर ये बातचीत। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार। आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य कार्यक्रम अधिकारी हैं। डॉक्टर रविंद्र कुमार, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: डॉक्टर रविंद्र, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो 31 मई को मनाया जा रहा है, तो इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
3: विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है। इसकी सर्वप्रथम शुरुआत वर्ष 1987 से हुई थी और इसकी शुरुआत WHO के द्वारा की गई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को तंबाकू के नुकसान के बारे में जागरूक करना और तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। तंबाकू केवल एक बुरी आदत नहीं है बल्कि यह कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, टीबी जैसी गंभीर बीमारियों का बड़ा कारण है। इस दिन हम लोगों को स्वस्थ जीवन अपनाने का संदेश देते हैं।
2: डॉक्टर रविंद्र, तो इस वर्ष की थीम क्या रखी गई है?
3: जो इस वर्ष की थीम जो WHO ने रखी है वो है अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन, मतलब आकर्षण का पर्दाफाश निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। असल में बात यह है कि आजकल तंबाकू और निकोटीन कंपनियां रंगीन पैकिंग, फ्लेवर, सोशल मीडिया के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट, ई सिगरेट और वेपिंग जैसे तरीकों से युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। इस वर्ष के थीम का उद्देश्य टोबैको इंडस्ट्री की इन चालों को लोगों के सामने लाना और खासकर बच्चों और युवाओं को जागरूक करना है।
2: अब बात आती है कि तंबाकू के सेवन से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?
3: तंबाकू का सेवन बहुत ही खतरनाक है। इसके सेवन से शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचता है। इसमें हजारों जहरीले रसायन होते हैं और कई कैंसर पैदा करने वाले इसके अंदर तत्व होते हैं। तंबाकू के सेवन से फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, दमा, टीबी, इस तरह की कई गंभीर बीमारियां होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल दुनिया में 80 लाख से ज्यादा लोगों की मौत तंबाकू के कारण होती है। भारतवर्ष में ही ये आंकड़ा लगभग 13.5 लाख का है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका नुकसान धीरे धीरे होता है और कई बार बीमारी बहुत देर से पता चलती है।
2: डॉक्टर रविंद्र, तो अब अहम सवाल ये है, क्या तंबाकू का हर रूप स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है?
3: बिल्कुल, ना सिर्फ सिगरेट और बीड़ी नुकसान करती है बल्कि जिसको एक हम स्मोकलेस टोबैको बोलते हैं, गुटखा, खैनी या कई बार पान मसाला और जर्दा, ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। आंकड़ों के अनुसार भारत में 90% से ज्यादा मुंह के कैंसर होने

0: का कारण धूम्र रहित तंबाकू है, जिसको हम लोग स्मोकलेस टोबैको भी बोलते हैं। ना केवल कैंसर होता है, बल्कि दांत खराब होते हैं, मसूड़ों की बीमारियां, मुंह का ना खुलना और कैंसर जैसी गंभीर समस्या होती है। कहने का मतलब ये है कि तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं है।
1: हिमाचल प्रदेश में तंबाकू की स्थिति कैसी है इस समय?
0: अगर किसी भी राज्य में और किसी भी देश में ये देखना हो कि कितने लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, उसके लिए WHO ने एक सर्वे बनाया है, जिसका नाम है ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे पहले 2009 और 2010 में हुआ, उसके बाद ये सर्वे 2016 और 17 में हुआ। तो 2016 और 17 के सर्वे में हमें पता चला कि हिमाचल में 15 वर्ष से ज्यादा आयु के जो पॉपुलेशन है, उसमें से 16% किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं, जबकि 2009-10 में ये परसेंटेज 21% थी। पिछले कुछ सालों में जो टोबैको यूज करने वाले लोगों के नंबर में कमी आई है, और आज की डेट में ये सर्वे तीसरा राउंड चल रहा है, 3 या 4 महीने के बाद हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमें और कितना डिक्लाइन हुआ। अगर हम गेट सर्वे 2 को ही देखें तो इसके मुताबिक अभी भी कम से कम 6 से 7 लाख हिमाचली तंबाकू का किसी न किसी रूप में सेवन करते हैं। अगर आप नंबरों के हिसाब से देखें तो हाँ, नंबर ये अभी भी ज्यादा है, लेकिन डेफिनेटली डिक्लाइन जरूर हुआ है पिछले कुछ वर्षों में।
1: युवाओं और बच्चों में इतना ज्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है? क्या युवा ज्यादा चपेट में आ रहे हैं, बच्चे चपेट में आ रहे हैं?
0: जी, अगर हम ये देखें कि जो लोग टबैको का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उनसे पूछा जाए कि उन्होंने तंबाकू का सेवन कब किया, तो अधिकांश लोगों ने सेवन अपने बचपन में और युवावस्था में ही किया है, क्योंकि तंबाकू में निकोटीन होती है। निकोटीन बहुत तेजी से लत लगाता है और कम उम्र में लगी हुई आदत को छोड़ना भी मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल तंबाकू की कंपनियां अपने प्रोडक्ट में अलग अलग तरह के फ्लेवर डालती है, सोशल मीडिया के थ्रू उसको एडवर्टाइज करती है, और बहुत अच्छी आकर्षक पैकेजिंग की वजह से बच्चों और युवाओं को अपना निशाना बनाती है। अगर हम युवाओं को तंबाकू से बचा लें तो आने वाली पीढ़ियों को कई बीमारियों से बचाया जा सकता है, और इसी वजह से इस बार की वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम भी रखी गई है।
1: डॉक्टर रविंद्र, क्या पैसिव स्मोकिंग यानी दूसरों के धुएं से भी शरीर को नुकसान पहुंचता है?
0: बिल्कुल, ये देखा गया है कि जो एक व्यक्ति खुद स्मोकिंग करता है, उसमें जो जिस तरह की बीमारियां होती हैं, उसी तरह की बीमारियां उसके घर में या उसके कार्यस्थल में जो दूसरे व्यक्ति होते हैं, अगर वो सेकंड हैंड स्मोक एक्सपोजर में आते हैं, तो उनको भी उसी तरह की बीमारियां होती है। और खासकर ये सेकंड हैंड स्मोक बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और बुजुर्गों के लिए और भी खतरनाक है। इससे दमा, निमोनिया, हार्ट डिजीज, फेफड़ों की बीमारियों का खतरा बढ़ता रहता है, और यही वो वजह है कि कानून के अनुसार सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया हुआ है।
1: डॉक्टर रविंद्र, तो क्या तंबाकू नियंत्रण के लिए देश में कोई कानून भी है इस समय?
0: बिल्कुल, देश में जो कानून है वो 2003 में कोटपा एक्ट के नाम से पूरे प्रदेश में ये लागू है। इसके मुताबिक सार्वजनिक जगहों पे धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंध है, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू नहीं बेचा जा सकता, स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है, तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, और जो भी टोबैको के प्रोडक्ट्स होंगे उसके ऊपर एक स्टैंडर्डाइज पिक्टोरियल हेल्थ वार्निंग जो है वो लगाना अति जरूरी है। ये तो रहा भारत का कानून। इसके अंतर्गत हमारे राज्य में वर्ष 2016 से हिमाचल प्रदेश टोबैको रेगुलेशन एक्ट भी लागू है। इसके अंतर्गत बिना लाइसेंस कोई भी दुकानदार तंबाकू नहीं बेच सकता। प्रदेश में खुली सिगरेट और बीड़ी बेचने पे रोक है, और अगर ये नियम तोड़ेंगे तो इसमें भारी जुर्माने का प्रावधान है और इसमें कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ और एक्ट जो है वो भारत में है, पर मुख्यतः तंबाकू के लिए ये जो 2 एक्ट मैंने कहे ये हिमाचल प्रदेश में लागू है।
1: तंबाकू विक्रेताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: तंबाकू विक्रेताओं से मेरा अनुरोध है वो पूर्णतः कोटपा और हिमाचल प्रदेश टोबैको रेगुलेशन एक्ट का पूरी तरह से पालन करें। अगर आपने तंबाकू बेचना है तो लाइसेंस आप जरूर लीजिए। लाइसेंस जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत सचिव के यहाँ पे आवेदन करिएगा, शहरी क्षेत्रों में आप नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत कार्यालय में आवेदन कीजिए। मामूली सी इसकी फीस है, 3 वर्ष के लिए लाइसेंस बनता है। बिना लाइसेंस से बिक्री करेंगे भारी जुर्माना पड़ेगा। और दूसरा, लाइसेंस सभी विक्रेताओं को नहीं मिलेगा, स्कूल के 100 गज के दायरे में अगर कोई अप्लाई भी करता है उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। और दूसरी हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से टोबैको रेगुलेशन को पूर्णतः पालन कीजिएगा।
1: डॉक्टर रविंद्र, तंबाकू निषेध दिवस के अभियान के इस अवसर पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि टॉफिक गाइडलाइंस क्या है?
0: जी, सो टॉफिक गाइडलाइंस का मतलब है टोबैको फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सर्वप्रथम 2009 में भारत सरकार के द्वारा ये गाइडलाइंस निकली थी, उसके बाद इसका जो रिवाइज वर्जन है वो 2019 में आया, और हिमाचल स्वास्थ्य विभाग ने 2020 में इन टॉफी गाइड

0: लैंड्स को पूरी तरह से अपने राज्य में लागू किया। इसका मतलब है, इसका उद्देश्य है, हम अपने हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इवन कोचिंग सेंटर, इन हर एक इंस्टीट्यूशंस को हमें पूरी तरह से तंबाकू मुक्त बनाना है। इसके लिए हमने स्कूल परिसर में तंबाकू पदार्थों का लाना, उसका इस्तेमाल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे, 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थों की बिक्री नहीं होगी। लगातार जागरूकता गतिविधियां जो हैं वो चलाई जा रही हैं। और मुझे ये बात आपके साथ साझा करने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है, पिछले वर्ष हमने अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच में हिमाचल में टॉफी गाइडलाइंस के ऊपर काम किया शिक्षा विभाग के साथ मिलकर। करीब 9500 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को टॉफी सर्टिफिकेशन के द्वारा हमें जो है उनको टॉफी कंप्लाइंट किया। और आजकल वर्ल्ड नोट बैकवर्ड डे अभियान चला है और हमें पूरी उम्मीद है 14 जून तक जब यह अभियान खत्म होगा तो हम बाकी बचे हुए हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को टॉफी गाइडलाइन का सर्टिफिकेशन दे पाएंगे।
1: डॉक्टर रविंदर, तो सबसे अहम बात ये आती है कि आज के समय में तंबाकू के कौन कौन से रूप युवाओं में लोकप्रिय हो रहे हैं और ये कितने सुरक्षित हैं।
0: आज के समय में टोबैको इंडस्ट्री ने अलग तरह के प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचाना शुरू कर दिए हैं और जिसमें से एक प्रोडक्ट है ई सिगरेट, जिसको वेपिंग भी बोलते हैं। असल में ये केमिकल निकोटीन है जो अलग अलग रूप में, अलग अलग साइज में, मॉडल में ये मार्केट में पिछले 8-10 वर्षों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। इसका प्रचलन युवाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसमें निकोटीन भी है और कई तरह के जहरीले रसायन हैं और इसकी मार्केटिंग की जा रही है कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और इसका नुकसान जो है वो कन्वेंशनल सिगरेट से कम है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। इसमें भी स्वास्थ्य के ऊपर कुप्रभाव है और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। लेकिन ये हमें सुनने में आया है और बीच बीच में हमें मालूम भी चलता है कि एक कंपनी जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू इनको बेच रही है। इसके ऊपर कड़ा संज्ञान विभाग द्वारा लिया भी जा रहा है, लेकिन मैं युवाओं से ये रिक्वेस्ट करूंगा इसकी लत मत लगाइएगा, क्योंकि इसमें निकोटीन है, एक बार लत लगेगी तो उसको छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
1: बहुत से लोग मानते हैं कि हुक्का सुरक्षित होता है, क्या ये सही है? और आजकल हम ये भी देखते हैं कि हुक्का बार युवाओं में फैशन बन रहा है।
0: हमें एक अलग तरह का चैलेंज पिछले कुछ वर्षों में हुक्का की फॉर्म में देश भर में ये आना शुरू हो गया है। हुक्का बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सामान्य तौर के ऊपर देखा गया है कि एक हुक्का करीब आधा घंटा 45 मिनट जब उसको यूज करते हैं तो उसके अंदर सिगरेट से 25 गुना ज़्यादा निकोटीन का सेवन होता है। सो आप ये मान के चलिए कि हुक्का कन्वेंशनल सिगरेट से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसके धुएं में भी निकोटीन होती है, इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और इसमें भी कैंसर पैदा करने वाले रसायन होते हैं। और ज़्यादातर हमने जो हुक्का देखा है उसमें फ्लेवर्स डाले होते हैं, फ्लेवर के अंदर भी कैंसर पैदा करने वाले बहुत से कारक होते हैं, ये भी गंभीर बीमारियों का एक कारण बनता है। तो मैंने जैसे पहले ही कहा है, किसी भी प्रकार का तंबाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे जितना बचा जाए उतना ही बेहतर है।
1: डॉक्टर रविंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हिमाचल प्रदेश में क्या क्या गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं?
0: जी, सो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो है 31 मई को, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हम ये जागरूकता अभियान और अन्य गतिविधियां पूरा एक महीना इस अभियान को चला रहे हैं। 15 मई से लेकर 14 जून तक पूरे इस महीने में हम लोग स्कूलों और कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, रैलियां और प्रतियोगिताएं हो रही है। टॉफी अभियान के अंतर्गत हम स्कूलों और कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज को, हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को टॉफी कंप्लाइंट बनाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग टोबैको फ्री विलेज अभियान भी चला रहे हैं, जहां पे सामुदायिक सहभागिता के साथ पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर उस गांव में जागरूकता अभियान चला के उसको टोबैको फ्री विलेज सर्टिफिकेट करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून की पालना करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने फ्लाइंग स्क्वाड्स गठित की हुई हैं, राज्य स्तर में, जिला स्तर के ऊपर और ब्लॉक स्तर के ऊपर। सो इन एक महीने के अंतर्गत हम लोग इन वायलेशन को चेक करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो रेड भी कर रही है और इसमें जुर्माना भी कर रही है। सोशल मीडिया के अभियान के हम लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं और चूंकि ये तंबाकू को छुड़वाने के लिए हम लोग काउंसलिंग सेशन जो है अपने स्वास्थ्य के अलग अलग संस्थानों में चला रहे हैं। और ये अभियान अकेला स्वास्थ्य विभाग का नहीं है, हमें इसमें सहयोग मिल रहा है शिक्षा विभाग का, पुलिस विभाग का, पंचायती विभाग का और साथ में नगर निगम
1: काम,
0: हाँ, सबके साथ मिलकर काम करते हैं।
1: यानी समाज और सरकार दोनों का ही
0: बहुत जरूरी है, क्योंकि टोबैको जो है ये हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। टोबैको के साथ में

0: सभी विभाग अगर कार्य करेंगे तो हमें जो है निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे।
1: जी डॉक्टर रविंदर, हमें ये बताइए कि टबैको फ्री विलेज इनिशिएटिव क्या है, ये क्या कार्यक्रम चल रहा है?
0: जी जैसे मैंने पहले भी आपसे थोड़ी सी बात करी कि ये जो टबैको फ्री इनिशिएटिव है, ये एक सामुदायिक पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों को तंबाकू मुक्त बनाना है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि गांवों के हरेक सार्वजनिक स्थानों पे धूम्रपान को पूरी तरह से रोकते हैं, कानून की पालना भी करवाते हैं, साथ में लोगों को जागरूक करके जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर उन गाँव में जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे उसके आसपास बिक्री पूरी तरह से बंद करते हैं, ग्राम पंचायत की इसमें भागीदारी बढ़ाते हैं, इसमें एक विलेज लेवल की एक कमेटी बनती है जिसमें गांव के जो सरपंच है, मेम्बरान है, और वहां के जो टीचर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा है, वो उसके मेंबर्स होते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम अपने गांव को जो है टबैको फ्री बनाएंगे। इसके जो आईसी मटेरियल गाँव में डिस्प्ले किए जाते हैं और जिन लोगों ने तम्बाकू छोड़ना है उनको हम लिंकेज करते हैं जो हमारे टबैको एसोसिएशन सेंटर है उसके साथ में और एक नेशनल हेल्पलाइन के साथ। और मुझे अति प्रसन्नता हो रही है ये बात आपके साथ शेयर करते हुए, पिछले वर्ष जब हमने टबैको फ्री यूथ कैंपेन चलाया तो हिमाचल में ऐसे 574 गांव हैं जिनको हमने तंबाकू मुक्त घोषित किया है और इस वर्ष हमने ये आंकड़ा 1000 से ज्यादा का रखा है।
1: डॉक्टर रविंदर, यदि कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ देता है तो उसके शरीर में क्या बदलाव आते हैं, क्या इसके फायदे तुरंत शुरू हो जाते हैं?
0: बिल्कुल, जो भी व्यक्ति अगर तंबाकू छोड़ना चाहता है उसके फायदे तुरंत शुरू हो जाते हैं। समय के साथ शरीर खुद को धीरे धीरे ठीक करने लगता है। तंबाकू छोड़ने के बाद अगले 20 मिनट के बाद ही रक्तचाप और हृदय गति सामान्य हो जाती है। 8 से 12 घंटे के भीतर खून में ऑक्सीजन का स्तर सुधरने लगता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कम हो जाती है। 24 घंटे के बाद हार्ट अटैक का खतरा कम होना शुरू हो जाता है। 2 से 12 सप्ताह के भीतर रक्त संचार बेहतर होता है, सांस लेने में आसानी महसूस होती है। 1 से 9 महीने के अंदर खांसी, थकान, सांस फूलने जैसी समस्याएं कम होने लगती है, फेफड़ों की कार्यक्षमता भी बेहतर होती है और 1 वर्ष के बाद हृदय रोग का खतरा लगभग 50% तक कम हो जाता है। 5 वर्ष बाद स्ट्रोक का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है और 10 वर्षों के बाद फेफड़ों के कैंसर का खतरा लगभग आधा हो जाता है और 15 वर्ष के बाद हृदय रोग का खतरा लगभग एक सामान्य व्यक्ति जितना हो जाता है। इसके अतिरिक्त मैं ये कहूंगा, चूंकि ये तंबाकू का सेवन फाइनेंशियली तौर पे भी बहुत महंगा है तो आर्थिक बचत होती है, हम अपने परिवार को सेकेंड हैंड स्मोक से सुरक्षित करते हैं और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। हमें एक महत्वपूर्ण बात है, तंबाकू छोड़ने में कभी देर नहीं होती। हमने जितना भी आज तक स्मोकिंग की होगी, टबैको खाया होगा, अगर आप आज छोड़ना चाहते हैं तो आज छोड़िए, आपको फायदा आज से ही मिलना शुरू हो जाएगा।
1: डॉक्टर रविंदर, अगर कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ना चाहता है तो उसे कहाँ से सहायता प्राप्त हो सकती है?
0: कोई व्यक्ति अगर तंबाकू छोड़ना चाहता है उसके लिए सहायता सर्वत्र उपलब्ध है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, सभी नंबर को नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय तंबाकू क्विट हेल्पलाइन एक नंबर है, वो नंबर है 1800112356। मैं पुनः ये नंबर कह रहा हूँ, 1800112356 एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। कोई भी व्यक्ति तंबाकू छोड़ना चाहता है वो इसके ऊपर कॉल करे, वहां पर काउंसलर्स बैठे हैं और हर एक स्टेप को वो समझाते हैं और साथ में ये भी बताएंगे कि अगर आपको मेडिकल हेल्प चाहिए तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में आप कहाँ हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे हिमाचल के हर एक मेडिकल कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में और जो हमारे जिला अस्पताल है वहां पर ड्रग डिडिक्शन सेंटर है, वहां पर आपको टबैको सजेशन सेंटर्स में काउंसलिंग की और साथ में दवाइयों की भी सुविधा है। इसके अलावा हमारे करीब 110 नई दिशा केंद्र है जो हमारे हरेक CSC में और सिविल हॉस्पिटल में है, वहां पर भी ट्रेंड काउंसलर है, उनसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा तंबाकू छोड़ने के लिए एक NRT करके दवाई की एक थेरेपी है, वो भी हमारे सिलेक्टेड हॉस्पिटल में उपलब्ध है, इसको मार्केट से भी ले सकते हैं, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा बहुत महंगी है और तभी हम कई बार ये कहते हैं कि आदत लगाना आसान है, आदत लगने के बाद वो सिगरेट और बीड़ी का जो खर्चा है वो बहुत महंगा है और जब उसको छोड़ना है तो खर्चा फिर और बढ़ जाता है।
1: युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आकाशवाणी के माध्यम से?
0: जी, मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि तंबाकू की शुरुआत कभी ना करें। अक्सर लोग दोस्तों के दबाव, फैशन या मजाक में शुरुआत करते हैं लेकिन बाद में यह गंभीर लत बन जाती है। मैं युवाओं से रिक्वेस्ट करूंगा, युवाओं को चाहिए कि वो गलत संगति से बचें, सोशल मीडिया के भ्रम में ना आए और ये जो तंबाकू कंपनियां हैं ये नित नए नए रूप में नए नए फ्लेवर डाल के, नए नए कलरफुल पैकेजिंग करके ये जो है अपने प्रोडक्ट्स को

0: वो आप लोगों के लिए एडवर्टाइज कर रही है, आपको अट्रैक्ट कर रही है, उनसे बचें। आप जो है खेल, योग और पॉजिटिव एक्टिविटीज में भाग लें, तनाव होने पर स्वस्थ विकल्प अपनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि इससे कैसे बचा जाए, तो मैं सबसे एक ही बात करता हूं, नेवर स्टार्ट इट, क्योंकि तंबाकू शुरू करना आसान है लेकिन छोड़ना बहुत कठिन।
1: डॉक्टर रविंद्र कुमार, आज हमने तंबाकू और स्वास्थ्य पर इस विषय पर आपसे जानकारी हासिल की। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आपने सुनी तंबाकू और स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर रविंद्र कुमार और सपना ठाकुर की यही बातचीत। तो देखिए, जानकारी तो हो गई प्रोमिला, बहनों को एक गीत सुना दिया जाए।
3: जी बिल्कुल,
2: तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: बहनों, हमारे जीवन में विनम्रता ही असली धरोहर है। विनम्रता यानी सरल स्वभाव। बड़ी बातों से नहीं, अच्छे व्यवहार से पहचान होती है जिसके मन में विनम्रता होती है, उसका हर जगह सम्मान होता है ना?
1: बिल्कुल। देखिए बहनों, विनम्रता एक ऐसा गुण है जो हर रिश्ते को मजबूत बनाता है। और हमारे जीवन में कई अच्छे गुण होते हैं, जैसे हमें ईमानदारी होती है, हम मेहनत करते हैं दूसरों के लिए, हमारे मन में दया होती है, प्रेम होती है, सहनशीलता भी होती है। लेकिन इन सभी गुणों में जो सबसे विशेष स्थान रखता है वो है हमारी विनम्रता।
0: बिल्कुल प्रमिला, आपने कहा ना कि जो विनम्रता होती है उससे रिश्ते बनते हैं। वाकई रिश्ते विनम्र स्वभाव से ही जुड़े होते हैं। अगर आपका स्वभाव अच्छा है ना, तो आपके जो रिश्ते होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। फिर चाहे वो आपका दोस्ती का रिश्ता हो, पारिवारिक रिश्ता हो, या कहीं पर आप जॉब करते हैं वो वाला रिश्ता हो, ये सारे रिश्ते किस चीज़ पर निर्भर करते हैं? आपकी एक अच्छे स्वभाव पर, है ना?
1: बिल्कुल। और देखिए, दूसरों के प्रति हमारा जब स्वभाव नर्म होता है, नम्र होता है, तो हम मीठी बातें बोलते हैं, यानी कि हमारी जो भाषा है उसमें मीठापन आ जाता है, और हम घमंड से और गुस्से से बहुत दूर रहते हैं, है ना
0: जी।
1: लेकिन जो विनम्र व्यक्ति होता है, अपने इसी स्वभाव की वजह से वो हर किसी के दिल में अपनी एक अमिट छाप छोड़ देता है, या ये कहे कि वो दूसरों के दिल को जीत लेता है। इसलिए तो कहा भी जाता है कि विनम्रता ही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, जैसे आपने भी कहा था, है ना?
0: जी बिल्कुल। देखिए, वाकई बहुत बड़ी धरोहर है, और हमें इस धरोहर का सम्मान भी करना चाहिए और इसे बनाकर भी रखना चाहिए, है ना
1: जी।
0: विनम्रता केवल धीरे बोलने का नाम नहीं बहनों, सरल भाषा में कहें तो दूसरों की भावनाओं को समझना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, दूसरों का सम्मान करना। तो जो व्यक्ति विनम्र होता है ना, वो व्यक्ति कभी भी किसी का अपमान नहीं करता, बल्कि हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता है। कुछ लोगों को आदत होती है ना कि कोई छोटा सा गलत काम हो गया या किसी से छोटी सी भी गलती हो गई, उसको बहुत उछालते हैं, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। लेकिन एक जो अच्छा आदमी होता है, चाहे वो आपसे बड़ा है या आपका वो बॉस है, आपकी जो छोटी मोटी गलती होती है ना प्रमिला, उसको छुपा देता है और उस कोशिश करता है कि वो दोबारा से गलती ना करें, इस तरह से समझाता है। यानी कि ये जो स्वभाव है ना, ये असली स्वभाव है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, अगर हम बात करें विनम्र व्यक्ति की ना, तो जो उसकी वाणी होती है ना, वो बहुत शानदार होती है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि उसकी वाणी में एक मधुरता होती है, एक अपनापन होता है, दूसरों के प्रति हम बोले तो सम्मान होता है ना। और देखिए, जो व्यक्ति दूसरों को सम्मान देता है, जिसकी वाणी ही बहुत मधुर होती है, या जो शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करता है ना, तो ऐसा व्यक्ति हर जगह अपनी एक अमिट छाप छोड़ के जाता है, और दूसरे लोग उसको पसंद भी करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना। और अगर हम अपने आसपास ही देखें तो हम ऐसे व्यक्ति को बहुत पसंद करते हैं जो दूसरों को आदर देता है। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो हमेशा गुस्से में रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, या फिर जो कटाक्ष करता है, जिसकी वाणी मधुर नहीं है, तो वो किसी को भी पसंद नहीं आता है।
0: बिल्कुल।
1: और हम भी ऐसे लोगों से बातचीत करने में थोड़े से कतराते हैं कि आखिर क्यों बात करें, है ना?
0: बिल्कुल, है ना। गुस्से जो गुस्सा करने वाला इंसान होता है, उसे कोई भी पसंद नहीं करता। और आज के समय में अगर देखा जाए ना,

0: तो ये एक ऐसा समय है कि हर एक इंसान है जो उसे बहुत गुस्सा है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, हर बात पे चिढ़े रहना। हम अगर ध्यान से सोचें और देखें तो गुस्से का वो कारण होता नहीं है, लेकिन ये एकदम से हमें आ जाता है। तो हमें उन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए, उन चीज़ों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, और एक ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को ऐसे बनाएं कि हर एक आदमी आपसे बात करना चाहे, आप बिल्कुल सरल हो। आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपसे जो लोग हैं वो आपसे मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, दूसरा कहीं ना कहीं पर प्रमिला स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा है आपका सरल स्वभाव। जो सरल स्वभाव का इंसान होता है वो गुस्सा करेगा तो दिमाग पर कहीं ना कहीं तनाव रहता
1: जी
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: जिससे कई तरह की बीमारियां हो जाती है। इसीलिए हमेशा हमें एक तो सरल रहना चाहिए, एक खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और देखिए, आपने खुश रहने की बात की है, तो देखिए हर एक इंसान के लिए उसके जो परिवार होता है, उसके जो मित्र होते हैं, सबसे ज़रूरी है ना।
0: जी
1: तो अगर आपकी भाषा में मधुरता है और आप सबसे बड़े प्यार से अच्छे से मिलते हैं ना, तो देखिए परिवार के सभी सदस्य भी आपको पसंद करते हैं ना। और जो हमारे जो फ्रेंड सर्कल होता है, जो हमारा दोस्ती का जो दायरा होता है ना, वो सारे दोस्त भी हमें बहुत पसंद करते हैं। और जब हम कहीं बैठे हो तो उस महफिल में आपका इंतज़ार भी होता है
0: बिल्कुल।
1: ना।
0: देखिए ना, इंतज़ार उसी का होता है जो हंसमुख होता है। देखिए कहीं पर भी हम जाएंगे, किसी से बात करेंगे, अगर वहाँ का माहौल खुशनुमा है ना तो बहुत मज़ा आता है। हम भी कोशिश करते हैं ऐसी जगह जाने की जहाँ पर कि बहुत हंसी मजाक हो, खुशी का माहौल हो। तो ऐसी जगह पे अगर हमें इनवाइट किया जाता है तो दिल नहीं करता है जाने का, हम
1: बिल्कुल
0: काम छोड़कर भी जाते हैं ऐसी जगह पर, है ना। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ पर कि हमें मजबूरी में जाना होता है, कारण यही रहता है कि शायद माहौल का भी असर पड़ता है। इसीलिए बहनों, हमारे जीवन में विनम्रता का बहुत बड़ा महत्व है। ये हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है, और जब हम दूसरों से प्यार और सम्मान से बात करते हैं तो लोग भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं।
1: जी बिल्कुल। और देखिए, विनम्रता का अर्थ ये नहीं है बहनों कि हम कमज़ोर है
0: बिल्कुल
1: या वो व्यक्ति कमज़ोर है जो विनम्र है, लेकिन वास्तव में विनम्रता सबसे बड़ी ताकत होती है। जो व्यक्ति अपने गुस्से और अहंकार पे नियंत्रण कर लेता है ना, तो वो सच्चा और मजबूत इंसान वही कहलाता है।
0: जी,
1: तो विनम्र व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति में भी अगर अपने आप को शांत रखता है, उस परिस्थिति का सामना करता है ना, तो इससे बड़ी समझदारी की और कोई बात नहीं
0: जी।
1: होती।
0: और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना वो ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब भी होते हैं, और जो हमेशा विनम्र रहते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि विनम्र रहें, सरल रहें और हमेशा खुश रहें।
1: जी, तो बहनों को भी खुश करते हैं गीत, इस गीत के साथ।
0: चलिए आइए सुनते हैं बहनों के साथ ये गीत।
1: जी

0: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: प्रधानमंत्री

0: ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi says that the government is continuously making efforts to preserve priceless heritage sites in India. He informed about an important discovery made in Malhar, Chhattisgarh, under the Gyan Bharatam Abhiyan. Addressing the nation in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani today, Mr. Modi said that 3 rare copper plates have been found there related to Maharishi Balarjun of the Panduvanshi dynasty of the 6th and 7th centuries.
1: Gyan Bharatam Abhiyan ke tahat Chhattisgarh ke Malhar mein bhi ek mahatvapurna khoj hui hai. यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।

दिन के 1:10 हुए हैं, आप जानते ही हैं ये समय रहता है एफएम शिमला पर म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम का, जिसे लेकर आज मैं हूं आपके साथ शेफाली वर्मा। तो आइए आगाज करते हैं कार्यक्रम का 1-2 का 4 फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे कि गाया है लता मंगेशकर और सोनू निगम ने।

संगीत की कला दुनिया में सबसे बड़ा खजाना है। तो आइए सुनते हैं म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम में अगला गीत, मोहब्बतें फिल्म से लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ें हैं। गीतकार हैं जतिन ललित, संगीतकार आनंद बख्शी।

हर गीत में है प्यार की खुशबू और ये गीत यूं ही चलते रहेंगे एफएम शिमला पर। कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती में प्रोग्राम का अगला सॉन्ग लेकर आए हैं मिशन कश्मीर फिल्म से शंकर महादेवन की आवाज़ में।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण

जी हाँ, मोहब्बत है ही कुछ ऐसी, तो क्यों ना ऐसे में बात की जाए, कुछ दिल की सुना जाए, कुछ आपसे और हम भी कुछ कहें। ऐसे में ऐसा मुमकिन तभी है FM शिमला के गीत संगीत के साथ। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, कसूर फिल्म से। कुमार सानू की आवाज़ है और गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

जी हाँ, अपनों का साथ अपनों का प्यार ही काफ़ी होता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इस छोटी सी ज़िंदगानी में जब भी आप चलते चलते थक जाते हैं तो जो कोई हमें ताकत देता है वो है हमारा अपनों का साथ, उनका प्यार और उनका हम पर विश्वास।

हर गीत की है अपनी अलग पहचान, हमारे हर एहसास से जुड़ जाते हैं ये, और हम भी इन्हें अपने दिल के बहुत करीब महसूस करते हैं क्योंकि ये हमारे हर जज्बात को बखूबी संगीत में पिरोकर बयां करता है।

इसी गीत के साथ म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम में आज बस इतना ही। पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। दोपहर के 2 बज चुके हैं और आप जानते ही हैं ये समय रहता है सब रंग कार्यक्रम का। जी हाँ, अलग अलग रंगों के गीतों का गुलदस्ता सजाया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बस आप यूं ही बने रहिए एफएम शिमला के साथ। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं अभिजीत के गाए इस गीत के साथ। बने रहिए यूं ही।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल

0: भार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

इसी गीत के साथ सबरंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। एक सौ 3.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। दोपहर के 2:15 होने को हैं। समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के

0: महर्षि बालार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: किन्यान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जर्दालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
3: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश

0: कर रहा हूं मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूं।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
2: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
2: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
2: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
3: नेवी, एयरफोर्स,
4: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
3: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
1: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है।

0: सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक चार मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। दोपहर के 2:30 हुए हैं। FM शिमला पर यह समय है शिखरों के स्वर कार्यक्रम का। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं लीना शर्मा की आवाज में ये लोकगीत।

0: इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 3 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र के साथ साथ FM शिमला पर भी सुना जा सकता है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपन्ना और सोल कढ़ी का सेवन करना उपयोगी है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड्स सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। इससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। उन्होंने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।

0: भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 3 नगर निगमों में जीत हासिल कर ली है। आज हुई मतगणना के मुताबिक धर्मशाला नगर निगम में कुल 17 वार्डों में से भाजपा ने 11, कांग्रेस ने 5 और निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 वार्ड पर जीत हासिल की है। इसी प्रकार सोलन नगर निगम में भाजपा को 10 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 6 वार्डों में ही जीत हासिल हुई है। 1 वार्ड पर निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। उधर मंडी नगर निगम में भाजपा को 12, कांग्रेस को 1 और निर्दलीय प्रत्याशी को भी 1 वार्ड में जीत मिली है। पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई है। शहर के कुल 15 वार्डों में से 11 पर कांग्रेस और 4 वार्डों में भाजपा को जीत मिली है। धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने स्थानीय नगर निगम पर भाजपा को मिली जीत के लिए मतदाताओं का आभार जताया है।
1: 17 में से 11 वार्ड में पार्टी जो है वो विजय होकर आई है। बहुत बड़ा ये मैंडेट है पार्टी के लिए। हमारी तो अपेक्षा थी कि इससे ज़्यादा सीटें हमारी आएंगी, लेकिन कुछ जगह पर कुछ अंतर से जो है वो पार्टी हारी है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम बना है। पूरे नगर निगम के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और नगर निगम में कार्य हो, धर्मशाला जो है वो तेजी से विकास की गति पकड़े और आने वाला समय अच्छा हो धर्मशाला के लिए, इस भावना से हम लोग सब काम करेंगे।
0: इस बीच प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को हुए जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना भी आज हो रही है। राज्य के 51 विकास खंडों में सुबह 9 बजे मतगणना शुरू हुई और अनेक सदस्यों के चुनावी नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार आज शाम तक सभी प्रत्याशियों के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। जिला परिषद सदस्यों के विजेताओं की आधिकारिक घोषणा उपायुक्त और BDC सदस्यों की घोषणा संबंधित उपमंडल अधिकारी द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी लोगों से जनगणना कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जनगणना 2 चरणों में की जाएगी और पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई के बीच चलेगा। इस दौरान मकान सूचीकरण, मकान गणना और जनसंख्या की गणना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कल 1 जून से 15 जून तक लोग स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने लोगों से स्वगणना विकल्प का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में दूसरे चरण में 11 सितंबर से 30 सितंबर तक जनगणना का कार्य किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुने, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है पीएम स्वनिधि गुजारे से आत्मनिर्भरता की ओर। वाचक स्वर है पूनम शर्मा।
0: पीएम स्वनिधि भारत की अनाधिकारिक शहरी अर्थव्यवस्था में काम करने वाले आपूर्तिकर्ताओं को सहायता देने वाली एक बड़ी पहल के तौर पर उभरी है। बिना किसी गारंटी के ऋण देने के अलावा इस योजना ने डिजिटल तरीकों को अपनाने को बढ़ावा दिया है, संस्थागत ऋण तक पहुंच को बेहतर बनाया है और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाया है। वर्ष 2020 में शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से ज़्यादा ऋण वितरित किए जा चुके हैं। इस पहल से शहरों और कस्बों में 75,00,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को फ़ायदा हुआ है। इस योजना के तहत 17,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा के ऋण दिए गए हैं। इसका असर न सिर्फ सरकारी आंकड़ों में दिखता है, बल्कि उन लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी नज़र आता है जो अपनी आजीविका को ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ बना रहे हैं। किसी भीड़भाड़ वाले बाजार में सब्जी बेचने वाला और किसी व्यस्त दफ्तर के बाहर चाय बेचने वाला, ये भारतीय शहरों में आम नज़ारे हैं। गलियों में घूमकर फल बेचने वाला और सड़क के किनारे फुटपाथ पर जूते ठीक करने वाला भी रोज़मर्रा की शहरी ज़िंदगी के लिए उतने ही ज़रूरी हैं। ये लाखों रेहड़ी पटरी वाले मिलकर हर दिन भारत की शहरी अर्थव्यवस्था को चलाते रहते हैं। वे स्थानीय बाजारों और आस पड़ोस की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखते हुए किफ़ायती सामान और ज़रूरी सेवाएँ देते हैं। हालांकि औपचारिक ऋण तक उनकी पहुंच बहुत कम थी, जिसकी वजह से कई विक्रेताओं को बहुत ज़्यादा ब्याज दरों पर अनौपचारिक ऋण पर निर्भर रहना पड़ता था। उनकी इन मुश्किलों को दूर करने के लिए जून 2020 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की गई।

0: यह अपनी तरह की पहली सूक्ष्म वित्तीय पहल थी जो रेहड़ी पटरी वालों पर केंद्रित थी और जिसे सरकार की क्रेडिट गारंटी का सहारा मिला हुआ था। इस योजना का मकसद रेहड़ी पटरी वालों को स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान देना था। आज पीएम स्वनिधि सिर्फ एक ऋण देने वाली सामान्य योजना से कहीं आगे बढ़कर एक देशव्यापी आंदोलन बन गई है जो भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लाखों लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, डिजिटल दुनिया से जोड़ने और सामाजिक सुरक्षा देने का काम कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में इस योजना ने देश भर के शहरों और कस्बों में जबरदस्त तरक्की की है। इस योजना के तहत 55 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से जोड़ा गया है। एक साथ मिलकर उन्होंने लगभग 8,96,000 करोड़ रुपए के 841 करोड़ से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किए हैं। पीएम स्वनिधि के तहत लाभार्थियों को डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन और ब्याज सब्सिडी के जरिए लगभग 800 करोड़ रुपए भी मिले हैं। इन मजबूत उपलब्धियों और महसूस किए जाने वाले प्रभाव को देखते हुए इस योजना को मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना ने देशभर के विक्रेताओं के लिए व्यापार की स्थिरता को मजबूत किया है और उनकी आमदनी में सुधार किया है। लगभग 95% लाभार्थियों ने पीएम स्वनिधि के तहत पहली बार औपचारिक संस्थागत ऋण प्राप्त किया। लगभग 30% लोगों ने बाद में स्वनिधि ऋणों के अलावा अतिरिक्त ऋण भी प्राप्त किया जो उनकी बेहतर ऋण पात्रता और वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। लाभार्थियों की आय में भी औसतन लगभग 20% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। पीएम स्वनिधि के तहत हुए आर्थिक लाभों ने लाभार्थियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस योजना ने आवास की अधिक स्थिरता और पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक बेहतर पहुंच में सहायता प्रदान की। पीएम स्वनिधि ने शहरी क्षेत्रों के कमजोर समुदायों के बीच सामाजिक समावेशन को भी मजबूत किया है। इस योजना के तहत लगभग 46% लाभार्थी महिलाएं हैं जो इसमें मजबूत लैंगिक समावेश को दर्शाती हैं। लगभग 70% लाभार्थी हाशिए पर रह रहे समुदायों से हैं जो इस योजना की समावेशी पहुंच को उजागर करता है। आंकड़ों और ऋण वितरण के पीछे दृढ़ता, साहस और नई उम्मीदों की कहानियां हैं। कई विक्रेताओं के लिए पीएम स्वनिधि ने स्थिरता, विकास और उन अवसरों के दरवाजे खोल दिए हैं जिन्हें कभी उनकी पहुंच से बाहर माना जाता था।
1: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। दिन के 3:10 हुए हैं। फिल्म शिमला पर यह समय है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं आवारा फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीतकार है शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। दिन के 3:30 हुए हैं। एफएम शिमला पर यह समय है युववाणी कार्यक्रम का।

हेलो फ्रेंड्स, पहाड़ों की ठंडी हवाओं, नदियों की मधुर सरगम और दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत है 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। जी हाँ, और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त मुस्कान ठाकुर। दोस्तों, आज हम चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जहाँ मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रास्ते होंगे। दोस्तों, कहते हैं ना, सफ़र सिर्फ फासले तय नहीं करता, सफ़र इंसान को खुद से मिलवाता है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है ट्रैवल और कल्चर, यानी यात्रा और संस्कृति। हम जानेंगे कि कैसे यात्रा की परंपरा शुरू हुई, कैसे ये हजारों सालों से चली आ रही है और हमारी सेहत को बेहतर बनाती है, व्यक्तित्वता को निहारती है और दुनिया को देखने का नज़रिया बदल देती है। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें याद दिलाती है कि रूटीन से निकलकर खुले आसमान में उड़ना भी ज़रूरी है, सपनों को सिर्फ देखना नहीं उनके पीछे चलना भी ज़रूरी है। और इसी एहसास को खूबसूरती से बयां करता है ये गीत ख्वाबों के परिंदे, फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। इस गीत को मधुर आवाज़ों में सजाया है मोहित चौहान और एलिजा मेंडोंसा ने, जबकि इसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने। तो चलिए, ख्यालों को पंख देते हैं और उड़ चलते हैं सपनों के

वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सफ़र और संस्कृति की। जी हाँ, एक ऐसे रिश्ते की जो सदियों से इंसानियत को जोड़ता आया है। ज़रा सोचिए, आज हम ट्रेन, बस, फ्लाइट और बाइक पर कुछ ही घंटों में 100-100 किलोमीटर तक का सफ़र यूं ही तय कर लेते हैं, लेकिन एक समय था जब लोग महीनों तक पैदल चलते थे। ना GPS था, ना गूगल मैप्स और ना ही ऑनलाइन बुकिंग्स, फिर भी लोग निकल पड़ते थे ज्ञान की तलाश में, व्यापार की तलाश में और कभी कभी खुद की तलाश में। और कहा भी जाता है ना दोस्तों, इंसान ने पहले रास्ते नहीं बनाए थे, रास्तों ने इंसान को बनाया था। यात्रा का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता। जब प्राचीन मानव एक जगह से दूसरी जगह गया,

सभी नए विचारों, नए आविष्कार और नए संबंध बने। अगर लोग अपनी जगह से कभी बाहर ही ना निकले होते तो शायद दुनिया इतनी रंग बिरंगी नहीं होती। जी हाँ, आज जिस दुनिया को हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, उसकी नींव हजारों साल पहले उन यात्रियों ने रखी थी जो अनजाने रास्तों पर चलने का साहस रखते थे। दोस्तों, आज हम टूरिस्ट कहलाते हैं, लेकिन किसी ज़माने में हम यात्री, खोजी और पथिक हुआ करते थे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के अगले गीत की ओर।

आशा करती हूँ आपको ये गीत बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं भारत की परंपरा में यात्रा का क्या महत्व रहा। जी हाँ, प्राचीन समय में ऋषि मुनि देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर ज्ञान बांटते थे। विद्यार्थी गुरुकुल से निकलकर दूर दूर तक सीखने जाते थे। व्यापारी सिल्क रूट जैसे प्राचीन व्यापारिक मार्गों से सफ़र करते हुए भारत को एशिया और यूरोप से जोड़ते थे। और जब व्यापार हुआ तब सिर्फ सामान का आदान प्रदान नहीं हुआ, भाषाओं का हुआ, कलाओं का हुआ, संगीत का हुआ और विचारों का हुआ। यानी सफ़र ने दुनिया को सिर्फ कनेक्टेड नहीं बनाया, उसने दुनिया को कल्चर्ड भी बनाया। आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आप में से कितने लोग सोशल मीडिया पर ट्रैवल रील्स देखते हैं? शायद लगभग सभी। लेकिन दोस्तों, ट्रैवल का ट्रेंड इंस्टाग्राम से शुरू नहीं हुआ। आज के ट्रैवल ब्लॉगर से पहले, हजारों सालों पहले भी लोग अपनी यात्राओं की कहानियाँ लिखते थे। फ़र्क बस इतना सा ही था, आज कैमरा मेमोरी कार्ड में सेव कर लेता है और तब यादें इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाती थी। दोस्तों, कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। इसी एहसास को अपनी सूफी सी मिठास और सोलफुल आवाज़ में सजाया है लकी अली ने गीत हैरत में। तो चलिए खो जाते हैं इस खूबसूरत एहसास में।

दोस्तों, सोचिए, अगर किसी ने कभी एक शहर से दूसरे शहर तक सफ़र ही ना किया होता, तो क्या हमें इतनी अलग-अलग भाषाएं, खाने और कलाएं देखने को मिलती? शायद नहीं। ट्रैवलिंग ने हमें सिखाया कि दुनिया में सिर्फ एक ही तरह की सोच नहीं होती, हर जगह के लोगों की अपनी एक कहानी होती है। और जब हम उनकी कहानियाँ सुनते हैं, समझते हैं, तो हम समझदार बनते हैं। इसीलिए तो यात्रा को सबसे बड़ा टीचर कहा गया है। और फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो समय भी बदल गया है। पहले लोग मजबूरी, ज्ञान, व्यापार के लिए सफ़र करते थे, और आज हम एडवेंचर, लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ के लिए ट्रैवल करते हैं। लेकिन एक बात तब भी सच थी और आज भी, सफ़र इंसान को बदल देता है। और शायद इसीलिए कहा भी जाता है, दुनिया एक किताब है, और जो लोग यात्रा नहीं करते, वो उसका सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ पाते हैं। आपको क्या लगता है, यूथ की असली पहचान क्या है? उसकी असली पहचान है सपने देखना, रूल्स को चैलेंज करना और ज़िंदगी को अपने अंदाज में जीना। कॉलेज की दोस्ती, मस्ती भरे दिन, बिना वजह की हंसी और वो बेफिक्री भरे लम्हे, इन सब का परफेक्ट साउंड ट्रैक है ये अगला गीत। जी हाँ, फिल्म रंग दे बसंती का ये आइकॉनिक सॉन्ग, जिसके बोल दिए हैं प्रसून जोशी ने और आवाज़ दी है नरेश अय्यर और मोहम्मद असलम ने। तो दोस्तों, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, वरीज को साइड में रखिए और याद कीजिए अपनी दोस्ती और कॉलेज के वो गोल्डन दिन।

दोस्तों, अब बढ़ते हैं भारत की ओर। जी हाँ, हमारा भारत विविधता में एकता का एक जीवंत उदाहरण है। कश्मीर की कहवा से लेकर तमिलनाडु की फिल्टर कॉफी तक, गुजरात की डांडिया से लेकर हिमाचल की नाटी तक, राजस्थान की रंगों से लेकर नॉर्थ ईस्ट की परंपराओं तक, हर राज्य एक अलग कहानी सुनाता है। यात्रा हमें सिखाती है कि अलग होना ही हमारी सबसे ज्यादा सुंदरता है। वैसे आपने किसी यात्रा में ऐसी कौन सी परंपरा देखी है जो आपको आज भी याद हो? इस बारे में सोचिएगा जरूर। देखा जाए तो सफर सिर्फ यादों का खजाना नहीं, सेहत का भी खजाना होता है। रिसर्च बताती है कि ट्रैवलिंग स्ट्रेस को कम कर सकती है, मूड को बेहतर बना सकती है और मेंटल रिफ्रेशमेंट दे सकती है। तो दोस्तों, पहाड़ों में चलना, नदियों किनारे बैठना और कभी यूं ही किसी शहर की गलियों में घूमना, ये सब एक नेचुरल थेरेपी की तरह काम कर सकते हैं। यूं भी कह सकते हैं, कभी-कभी सबसे अच्छी दवा एक नया रास्ता और खुला आसमां होता है। तो चलिए, थोड़ी सी मुस्कान के साथ, थोड़ी सी पॉजिटिविटी के साथ और दिल खोल कर कहते हैं, लव यू जिंदगी। जी हाँ, सुनिए जाने तू या जाने ना फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, आज हमने जाना कि सफ़र सिर्फ जगहों तक पहुंचने का नाम नहीं, ये सेहत है, सीख है और संस्कृति है। मंजिलों से ज़्यादा रास्ते याद रहते हैं, चेहरों से ज़्यादा एहसास याद रहते हैं। जो सफ़र दिल से किया जाए उसके किस्से ज़िंदगी भर याद रहते हैं, ज़िंदगी भर याद रहते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो हम सफ़र मुस्कान ठाकुर 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, और घड़ी पे वक्त हो चला है अब आप सबसे विदा लेने का। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी के हर सफ़र को खुलकर जीते रहिए। नमस्कार।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं फिल्म शिमला पर। कार्यक्रम का अगला गीत जन्नत फिल्म से केके की आवाज़ है। गीतकार हैं सईद कादरी, संगीतकार प्रीतम।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं फिल्म शिमला पर, कार्यक्रम का अगला गीत तुम मिले फिल्म से नीरज श्रीधर की आवाज़ है। गीतकार हैं कुमार, संगीतकार प्रीतम।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। शाम के 4:20 होने को हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। पेश है हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों के अंतर्गत आइए सबसे पहले सुनते हैं सिरमौरी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुन सकते हैं।

नमस्कार, राम राम, सुबिखे मेरे ढाल। ये जो आकाशवाणी को शिमला केंद्र सो और आकाशवाणी के शिमला केंद्र शाह तुम लुआने सिर मौरी कार्यक्रम ये भी टाइम रहा हो बेड़के के 4:22:15 आकाशवाणी के शिमला केंद्र शाह सिर मौरी कार्यक्रम का तुम साथी आऊँ वसल तुम्हारा अपना नाड़ा भाईड़े उम्मीद वर्मा। तो सिरमौरी कार्यक्रम सुनने वाला है सभी श्रोताओं है उम्मीद वर्मा की एक ही पॉइंट दुजालिया ढाल। तो लोग एतलो हमारे सिरमौरी कार्यक्रम दे जो बात करने से करने विश्व तंबाकू निषेध दिवस गशी जे एतलो के जो देश भी असो से हमारे विश्व तंबाकू निषेध दिवस के समर्पित असो इन गश हमारे भी विस्तार से चर्चा करने और साथ के साथ हमारे चर्चा करने पर्यटन रोजगार का साधन असो इनके साथ हतलो के हमारे कुछ खास खबरें भी दिखनी है और सबसे ज़्यादा ध्यान तो लोगों के मनोरंजन का भी असर और तुम्हारे मनोरंजन के हमारे कुछ हतलो के खास लोकगीत भी सुनने तो एतलो का कार्यक्रम शुरू करवे एक ही बस तुम सभी के ढाल एतलो का कार्यक्रम शुरू करना हमारे एतलो की खास समाचार शाह। तो सुनो एतलो के समाचार ईवीएससी व्यक्त है प्रदेश दे 24, 28 और 30 मई दे जो पंचायती राज चुनाव भी रथे होए तीन चुनाव दे बीडीसी मेंबर और जिला परिषद के भी वोट रथे पड़े और इन्हीं वोटों की गिनती सियातले भी चाले दिवस एकों के रिजल्ट आएगी और एकों के रिजल्ट भी आने बाकी असो और ऐसा मानना सो जितल फिर रहता हूँ ऐसे सब भी जिला परिषद और बीडीसी मेंबर के जो

रिजल्ट भी असो से सोबी के दे पाई दे और अतलो फिर अतः सोबी का पता चल दा जे ऐसे इलेक्शन दे कोश की हार हो और कौन जानता है चुने हुआ है से जिला परिषद और बीडीसी मेंबर बना और बीडीसी मेंबर और जिला परिषद के जो ऑफिशियल घोषणा भी असो जो कौन जीता से डीसी कर दे हर जिले के डीसी कर दे और हर जिले दे जो उपमंडल के अधिकारी है से कर दे। अबे बात कर बे थोड़े से जनगणना गाशी तो सभी के पता हो सर जे भी जनगणना शुरू होने लागे तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है प्रदेशों के सब भी लोगों से डाल थे करे जितने जो आज जनगणना लागी होते इन दैगाशी बड़े चौड़े भाग दिए प्रदेश दे जनगणना है से दो चरण दे पहला चरण से 16 जून से शुरू होता और 15 जुलाई तक चलता है और ऐसे चरण दे कहाँ दो जो सब भी घरों के मार्क होंगे सब भी घरों की गिनती होती और जनगणना होंगे। मुख्यमंत्री बोलो जो दोती मतलब कि 1 जून से 15 जून ताओ लोग ऐसे स्व जनगणना पोर्टल द जाइ से अपने जानकारी जनगणना के दे सको स्व पोर्टल ए ऑनलाइन जनगणना का एक माध्यम सो तेनिए लोगों से ऐसा आग्रह थवा करे या जे डाल था करे जे तुए इन दगा सी जाइ स्व गणना स्व जनगणना का प्रयोग करियो इन दखा साथ दिए। हिमाचल प्रदेश के जो बर्फबारी वाले इलाके भी असो तेंदे दूजे चरण दे जनगणना होंगे जो 11 सितंबर से शुरू होंगे और 30 सितंबर तक चलते और दूजे को भी होंगे जब अगले वर्ष 2027 दी 9 फरवरी से 28 फरवरी तक चलते। तो आज यो की कुछ खास खबरें थी। अब हमारे बातों को नियागु विश्व तम्बाकू निषेध दिवस गशी पर इंदेश ही आगे बातों को नोश पहले तुम सभी के मनोरंजन के ताइए एक लोकगीत सामने हो सो तो ये जो सुनो एक लोकगीत जिंदा के बोलो सो पांडुए पोरो रे सितुए साजे टेकरे और इंदे का गीतांगे उदय राम और तस के साथे तो सुनो ये जो लोकगीत

तो जो थी वो बजाओ के बैठिया लोक गीत, उदय राम और तेसके साथी की प्यारी सुरीली आवाज़ दो। अब हमारे बात कौन नहीं विश्व तम्बाकू निषेध दिवस गशी, तो सभी के पता सो जो विश्व तम्बाकू दिवस निषेध का मतलब हो सो जे जुंजे एतलोका हमारे सबसे बड़ा मुद्दा बने वा देशों परदेशों दा हमारे समाज दा हमारी परिवार दा जो एतलो सबसे बड़ा चिंता का कारण दा बने जे हमारा जो नए पीढ़ी बसो नया जो ढूंढे है या हमारे कुछ भी समाज का जो जिनका देश का भविष्य हो सो से ऐसे नशे की ओर लागे उड़ते हैं। और नशे मुझे सबसे जो प्रमुख हो सो से हो तुमको तो तुमको जो छोड़ाना है से अतलो सबसे बड़ा कारण अजूरा हो चुनौती रहे बने जाए से तुमको छोड़ाना की किया है। तो वो का जो 31 मई को जो 10 वर्ष ए विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के रूप तो मनाया जाए जो देश हर वर्ष तुमों के खिलाफ और लोगों के जागरूक करने के ताइए मनाई जो तुमों के खिलाफ है से जागरूक हो और तुमों को कहा कि ऐसे त्याग करो। तम्बाकू निषेध दिवस मनाने का सबसे बड़ा कारण भी है से ऐसा सो जो इतना तम्बाकू के कारण है से पूरे दुनिया दे अलग अलग तरह की बीमारी लगी फैल दी। हमारा समाज हमारा परिवार हमारे घर सबका है बर्बाद लगे होंगे। जुनजा आदमी तमुक के लद्दा पड़े भी जाओ तेसके ना अपना ध्यान रौंदा ना अपने परिवार का ध्यान रौंदा ना अपने नंदड़िया का ध्यान रौंदा ना अपने तीरों का ध्यान रौंदा ना अपने माँ बाबा का ध्यान रौंदा। तेसके सिर्फ जब ध्यान रो तो सिर्फ तमुक का रो टाइम टाइम से तमुक से बैठो तमुक के भी भूते रूप हो। और इन दिले का वो बीमारी तो कोरी कोरी कुठी साथ के साथ अपने नहड़िया की शिक्षा भी छोड़ाए पढ़नो लिखनो भी छुड़ाओ घर बार भी छूटा और जो है कि हमारी जिंदगी हो से बहुत कीमती हो सर जिंदगी भाई अपने ते करो ख़त्म। और जो समाज दे गांव दे से भूते प्रकार की बीमारी बुराई लड़ाई झगड़े ऐसे सब बाध्य प्रॉब्लम हुआ। और जो विश्व तम्बाकू निषेध दिवस है से मनाई कभी शुभ है इनका का इतिहास का सो तो इनके के बारे देवा बोले दे जो विश्व तम्बाकू निषेध दिवस की शुरुआत भी सो से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा थे करे बस 1987 की बात हो सो जब विश्व स्वास्थ्य सभा ये जो देखो जैसे तुमको ले से कोई अगर बर्बाद गया है

तो इज थी ओ बठिया लोक गीत दोखा कोरा मरण जुगा गंगे ताखे बीजा पड़ ली और मु विश्वास अस जे तू ए बढ़िया रोलो लागे। ये भी तमाम बात करे विश्व तम्बाकू निषेध दिवस गशी। और अब आप मैं अगली बात करने से करने पर्यटन रोजगार का एक साधन असो, पर्यटन रोजगार का एक साधन असो क्यों है? क्योंकि जो पर्यटन है से ऐसा ठाव है या ऐसे ठाव की एक सुंदरता का शी निर्भर हुआ जो अपनी पुरानी चीज़ों या धार्मिक ठाव जैसे मंदिर मस्जिद या कोई ओके ऐसे जगह जिन्हें देखने के करिए लोग दूर के से आओ। इतना पर्यटन सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं रहा है, पर्यटन है से लोगों के रोजगार और अपने विकास का भी साधन रहा बने। कुछ ही ठाव की कुछ ही क्षेत्र की अपनी संस्कृति है, तेनी देखना के तेनी समझना के भी कहा है से दूर के से लोग आओ। और जब से लोग तथे आओ भी तो तथे से का करो अपने पूंजी से खर्च करो, पैसे खर्च करो। और जो से पैसे खर्च करो तीन का फायदा कुछ के पहुँचो तथे के स्थानीय लोगों के जते से घूमिया आए रे। तो वे बोले जाए जो पर्यटन भी है से रोजगार का एक एतलो बड़ा साधन रहा बने। जब वे कोई सीठा होते लोग घूमते भी आओ तो तथे बहुत ही चीज़ों की जरूरत नहीं पड़े जाओ, जैसा खाना पीना रहना आना जाना घूमना फिरना। और ऐसा गाइड भी लगो चाहिए जो तेन लिया को देखाओ बाद चीज़ों। तो जब तेनी के तथे आनो है तो माने जाओ जो तेन के कुछ खाना पीना है तो खाना पीना खाए सबसे पहले होटल लागू चाहिए और ढाबा लागू चाहिए। तो ढाबा तथे के लोग खुला भी और ते इनकम कम आवे ते तेन के रोजगार खोले गया। रौनक है रौनक है तेन के ठाव लागू चाहिए जिंदगी का करो से तथे के जो स्थानीय लोग है तथे के रेस्टोरेंट बनाए कमरे बनाए ते चढ़ाए किराया देगू ते तेन के भी बना रोजगार का साधन। और वही ते ऐसे भी आओ घूमिया जिनकी पता ना होता जिन्हें घुमाना फिराना के एक ही गाइड की जरूरत हो एक ही मददगार की जरूरत हो जो तीन लिए आगू दिखा ले बाद ठाव ते तस के दिहाड़े बना उन्हें तस का बना रोजगार का साधन। ओके गाड़ी टैक्सी आना जाना ड्राइवर तीन के साधन भी नीचे बुने दे रो। और जतोड़ा भी आओ है जतोड़े का है अपने पैसे खर्च करो और तीन पैसा लेती वो तथे स्थानीय लोगों का विकास। तो वे बोले चाहिए जो मतलब कि टाइम द पर्यटन है से रोजगार का सबसे बड़ा साधन रहा बने। जब हम बात भी करो भारत के तो भारत के भी बेजाई भूते पर्यटन ठाव सो।

जिन्हें देश और परदेशों से विदेशों से लोग घूमते आओ, विदेशों के जो मुद्रा ऐसी इतने इन्वेस्ट करो, खर्च करो, ऐसे भूते ठाव वो सो जिन्हें लोग लगातार चलें दे, जिन्हें लोग घूमें दे। कौन से जैसे तुम देखते लो आगरा को ताजमहल है, आगरा को ताजमहल को दिव्य देखो तथे रश हुए हुआ है, तथे कोई ना कोई लोग चले नहीं रुआ, और तथे के जो स्थानीय लोगों का से सबसे बड़ा साधन हो सो जब टूरिस्ट आले घूमे फिर आले तो इनका रोजगार गुना दर होता। दिल्ली का लाल किला है, कुतुब मीनार है, और हिमाचल प्रदेश के जब हम बात करते हिमाचल प्रदेश के जो बड़े बड़े पहाड़ है और शिमला है, मनाली है, ऐसे भद्दे का हो सो पर्यटन ठाव हो सो गोवा को समुद्र तट रोतौल तुम्हें कहा है लोग दस रातें चाले दे सो ती एथे के जो स्थानीय लोग तीन का लगा बंदा रोजगार लगा बंदा। तब तो हमें बोले सको जो पर्यटन है से रोजगार का मतलब सबसे बड़ा साधन रहा बने इन लिए लोग अपने आमदनी तल कमाए कमाए पर अपना विकास पहला करे और अपने विकास के साथ साथ जो अपने देशों की अर्थव्यवस्था है से भी मजबूत लय बनाए और इन दिल्ली पर्यटन लिए ऐसे लाखों लोगों की इनकम है से बड़ी आसानी से लागे होंगे जिन्हें अपने दस रात का गुजारा इन दी लीला करे। तो मानो जे आम सबके अजी बात बड़े गर्व के सो भारत देवे भूते से ठाव में जो पर्यटन कहना कहलाने लायक है तो तू सो भी मेरे जे डाल है जो हमारे से ठाव बस पर्यटन स्थान जो जस है तेन की सुरक्षा करे जो तथे लोग घूमिया वाले और जितनी तथे लोग घूमिया वाले तेती तथे के लोगों के का है अपने रोजगार के साधन बढ़ दें। तो ऐसी बातों थी कुछ पर्यटन स्थान की जो पर्यटन स्थान स्थान है से किश किश हो से रोजगार को साधनों से अब लोग टाइम रहा है हज एक लोकगीत सुनने का तुम्हारी मनोरंजन का अमर जो है लोग लास्ट लोकगीत सो से रोयो रातड़ी ना कटो मेरे और इनका गीतांगी सो भाई सुनील कुमार। तो सुनो तुम्हें ये जो लोकगीत भाई सुनील कुमार की आवाज़ दो।

तो ये जो थी वो बजा के बढ़िया लोकगीत रोयो रातड़ी ने कटो नरे। और एथु लोकगीतों सा थी एतलो का सिरमौरी कार्यक्रम भी हुआ खत्म। तो सुबिक है एक बार ढाल नमस्कार।

सिरमौरी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 4:50 हुए हैं। प्रस्तुत है महास्वी कार्यक्रम।

किन्नौरी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 5:50 हुए हैं। आइए सुने लोकगीत। सबसे पहले सुनिए मंजू भारद्वाज की आवाज में ये लोकगीत।

मंजू भारद्वाज की आवाज में ये लोकगीत अभी आपने सुना। लीजिए अब सुनिए वनिता ठाकुर और दिव्या शर्मा की आवाजों में अगला लोकगीत।

लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप FM शिमला 103.7 MHz के साथ साथ DTH तथा मोबाइल ऐप न्यूज़

0: ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहचान बनाई है और आम देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांसो और गुजरात के केसर सहित आम की अन्य प्रमुख किस्मों की चर्चा की।
1: मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के तीन नगर निगमों में शानदार जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। राज्य में 17 मई को 4 नगर निगमों में वोट डाले गए थे, जिनकी आज मतगणना की गई। धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगम पर भाजपा ने कब्जा किया है, जबकि पालमपुर नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला नगर निगम में कुल 17 वार्डों में से भाजपा ने 11, कांग्रेस ने 5 और निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 वार्ड पर जीत हासिल की है। इसी प्रकार सोलन नगर निगम में भाजपा को 10 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 6 वार्डों में जीत हासिल हुई है। 1 वार्ड पर निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। मंडी नगर निगम में 15 वार्डों में से इस बार 14 वार्डों में ही मतदान हुआ। इनमें से 12 पर भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट गई है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी को 1 वार्ड पर जीत मिली है। उधर पालमपुर नगर निगम पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया है। शहर के कुल 15 वार्डों में से 11 पर कांग्रेस और 4 वार्डों में भाजपा को जीत मिली है। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने सोलन सहित प्रदेश के 3 नगर निगम चुनावों में पार्टी की जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने आज सोलन में कहा कि इस जीत से ये स्पष्ट हो गया है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी। सुरेश कश्यप ने कहा कि इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों को जाता है। उन्होंने भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने के लिए मतदाताओं का आभार जताया।
2: 3 नगर निगमों में, धर्मशाला, मंडी और सोलन में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है और विशेष रूप से सोलन में इतिहास हमने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 काउंसलर जिताकर, और जो 11वां काउंसलर है वो भारतीय जनता पार्टी का ही है, मैं कह सकता हूं कि 11 काउंसलर जिताकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले। मैं बहुत

0: धन्यवाद करता हूँ सोलन की प्रबुद्ध जनता का, यहाँ के समस्त कार्यकर्ताओं का। और ये इस बात का द्योतक है कि 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में इसी प्रकार से परचम लहराएगी और जीत हासिल करेगी।
1: प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को हुए जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना भी आज की गई। हालांकि जिला परिषद और बीडीसी के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं करवाए गए, लेकिन भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत के दावे कर रही हैं। प्रदेश में जिला परिषद की कुल 251 और पंचायत समिति सदस्यों की 1669 सीटों पर हुए मतदान की आज सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हुई। इनमें से अधिकतर सीटों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और शेष बची सीटों पर भी मतगणना अंतिम चरण में है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
3: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
3: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
4: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: प्रादेशिक समाचार अभी आप आकाशवाणी के शिमला, हमीरपुर, धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz, DTH तथा मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों के अंतर्गत अब प्रस्तुत है बिलासपुरी कार्यक्रम।

संजय रे बजी गए 6 बजे ने 6 मिनट और हिमाचली बोलियां रे कार्यक्रम रे अनुसार वक्त हो गया बिलासप्री कार्यक्रम रा। दोस्तों सभी ते पहले तुहां सभी जो तुम्हारी रेडियो दोस्त सुनीता परमार री प्यार भरी नमस्कार स्वागत कराई तुहां सभी रा अपने बिलासप्री कार्यक्रम च। साथियों आज एक गल करनी आहें बिलासपुर रे धार्मिक स्थलों री और दूजी गल करनी आत्मविश्वास च छिपिरा सफलता रा राज। कुछ खबरसार और कुछ लोकगीत भी सुनाने ता आवा शुरुआत करें इस प्यारी जी माता री भेंटा कन्ने।

तां जे भेंट सुनी तुहें विद्या देवी होरी री आवाजा च। हुण अहें करनी गल बिलासपुरा रे धार्मिक स्थलां रे बारे च। हिमाचल प्रदेश रा बिलासपुर जिला धार्मिक, सांस्कृतिक और इतिहासिक नज़रा ते बहुत ही महत्वपूर्ण आ। इत्थे कई पुराने मंदिर, तीर्थ स्थान और कई पवित्र स्थान है। इत्थे पूरा साल भर श्रद्धालु आवा और जावा है। ये जितने भी स्थल है सिर्फ आस्था रे केंद्र ही नहीं बल्कि प्रदेशा री समृद्ध संस्कृति और परंपरा रे प्रतीक भी है। तियां जी देखा नैना देवी मंदिर, ये मंदिर बिलासपुर जिले रा सभी ते प्रसिद्ध और धार्मिक स्थान।

तां जी भोले भंडारी जी दा भजन सुनिया तुसें ज्वाला प्रसाद शर्मा जी दी आवाज़ च। हुण असीं गल करनी आत्म विश्वास च छिपिरा सफलता दा राज। आत्म विश्वास आदमी दी सभी ते बड़ी शक्ति। जिस आदमी जो जे अप्पू पर विश्वास हुआ सै कठिन ते कठिन कम्मां जो भी आसानियां ने करी लवां। जीवन च सफलता पाने खातर ज्ञान मेहनत और मौके जितने जरूरी है उतने जरूरी आत्मविश्वास भी है। आत्मविश्वास सह शक्ति सहज माणु जो आगे बढ़ने चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्य तक पहुँचने की प्रेरणा देवाई। जिस भी आदमी च आत्मविश्वास हुआ सह असफलता ते नहीं डरता। सह हर कठिनाई जो एक नवी सीख मनी ने आगे बढ़ा। आत्मविश्वासी माणू अपने फैसले आपू लवान और दूजियां री नकारात्मक गल्लां ने प्रभावित नहीं होंदा। इतिहास गवाह कि तिने लोकें जे दुनिया च बड़ा नौ कमाया तिन्हारे अंदर अटूट आत्मविश्वास था। चाहे वैज्ञानिक हो खिलाड़ी हो या फिर कोई महान नेता सभी अपने आत्मविश्वास रे जोरा पर सफलता प्राप्त कीती रही। आत्मविश्वास रा अर्थ घमंड नहीं हुंदा, ए अपने गुण और क्षमता पर विश्वास रखना। तां जे अहें मेहनत करें और ठीक सोच रखें तो अहारा आत्मविश्वास

तां जी यशपाल जी रे इस लोक गीता कन्नै आहरे बिलासप्री कार्यक्रम वक्त जैसा हुन खत्म होया दा। देवा इजाजत, नमस्कार।

बिलासपुरी कार्यक्रम अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 6:35 हुए हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों के अंतर्गत अब प्रस्तुत है लाहौली कार्यक्रम।

दी आकाशवाणी शिमला केंद्र शो स्वंगलो प्रोग्राम रे रादी केंदी भत्ते दी गिप्रोमिला तरफे राम राम जुले जी सादी रे तोगल स्वंगलो प्रोग्राम अरी स्वंगलो रूठे रूठे गीत गुरेर केंद्र रे रोनी दीरा सादे इमिना खास खास खबर अल शपोग त गल गप्पा आवती केंदा सादे शपोग गी शिष्टाचारो बारे छरिकुजी हिंज बत्तेज नेन कि भई शिष्टाचार दू भाषा शू आऊँ भाषा हर मी शूंजा कुछ मना दिमियु इचमियु जिंदगी ध्यान छो गुण छू छई दुमियु संस्कारो बारे कंड्रा रूठे संस्कारे शिष्टाचारे इचमी महान बना के रतो ओई दिबी इज्जत रन रमी हमेशा इज्जत खोरसा तो गलगा पदी पाठिल छो दो त दीरा सादे सादे केंज बत्तेज नैन की भई तोक शु विश्व तंबाकू निषेध दिवस दि खास दिहाड़ा हैं जित तो मनाच लेख तो दोनी त गप्पा दी ये कि भई हर साल निजो से दी मायरी दी पूरे दुनिया मना सयुआ दी खास दिहाड़ा तमागू नुकसान अदबारे मीर जागरूक ले मी थल जी मना सयुआ छरिकू जी तम्बाकू सेवने छन मी दू स्वास्थ्य थल जी आई ने नुकसान रन रा छोशु भी त दियू सेवन आऊँ जी लादुर दो दी कुर्मा स्वास्थ्य पाठी आई ने मस छप पार शुजा तो ध्यान छो मी दी कैंसर छो मदम टेकू ले भी रसा दे उल मदम मदम बीमारी शुभी तरसी ता थे कुड्रे लेख तो दिन कि भाई तंबाकू इच धीमा जहरो छोशू छई सूले सूले मी फूको हर अंग भी नुकसान रन रतो तंबाकू बजा जी छा पूरे दुनिया वर्षोत फोमे लखो मीरे क्वज उम्र अरिये सी यू आदुर तात दिए आऊँ जानी नुकसान तो दी रोके चिम थल जी दी अभियान चला सयुआ तो दी पाठी ले गलगप्पा प्रोग्राम बीजा जरूर के दसा दे शपोग तो प्रोग्राम मुंडर हेंज रे रोनी मानदासी ऐसा दिख सकसी दी गीत

जी, स्वंगलो धरती स्वर्गो शुडेरा पेशायो आतई रेसा दिरे ऐने रुठे रेजा जिन जी गीत हैं जिरेश तनी इमिना खास खास खबरर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश उम्मीद दुर्चिनी शेल की दी ट्रो दू साजे उदी मौसमारी ऐने मस सावधानीता जिमिये सरकारी दिशा निर्देश पालन लेमी दोई अपील लतो आकाशवाणी नी सेम उगप्पा कार्यक्रम रे तोग दोई मी दी ऐन ती तुमिमिये एगे नी वच पिम पार्टी उपाय लाजी थल्ले चुंगनी दाथिका हुंजमी सलारन दो। प्रधानमंत्री कुतो की ट्रोची राहत थलजी आमो रस छुई बोदी छुई सत्तु छुआ ता शरबत तो बेल पन्नाए सोल काड़ी तुमी आईने रूठे छुबी। प्रधानमंत्री नीदरलैंडो एनो हालो यात्रा बारे गप्पा लहतर कुतो की भई नीदरलैंड सरकारे छन चोलकालीन तामर पट्टिकार भारत अभी यज दो द्यारे पूरे दुनिया तमिल समुदाय दुबिजा आईने उत्साह तो दोई कुतो की दी पट्टिका जी चोल साम्राज्य आऊँ समुद्री ताकते दक्षिण पूर्व एशिया हुई आऊँ देश अर्तो दो दसादे दो दो संबंधो पाठी कंड्रा दिबिजा प्रदेशा निजो त्री निजो रे निजो सा मयरी शुजी जिला परिषदे पंचायत समिति सदस्य दु चुनावो वोटर मीचिम कमल तो शुभी लेगी तो राज्यो निंजो से दी विकास खंड दु मुंजे 9 बजे नी वोट मीची चूसाई दे तेईया सदस्य दु चुनावी नतीजा हुंज केश्ता दुर ता राज्य चुनाव आयोग मुताबिक तोगियों गोले तचे भत्ते प्रत्याशी दु नतीजा हुंजयो दो जिला परिषद सदस्य दु द्राछा दु आधिकारिक घोषणा उपायुक्ते आयदुर बीडीसी सदस्य दु घोषणा

संबंधित उपमंडल अधिकारी जी लौर दितोई इमिना खास खास खबर रे गप्पा छना शाजलेक तो गी के दसा दे तो की खास ध्याड़ा कुजी मनत विश्व तंबाकू दिवसो पाठी ते सादिरे साल सस्कुराव पिनिजो निजरी विश्व स्वास्थ्य सभाई तंबाकू सेवन बजाई मीदी शुजा छो मदम टेकुए दिव सेवन बजाई मीदू सी खानी पूरे दुनियांग दिव पाठी जागरूकता बढ़ा चिंथल खास दिन मना चिम फैसला दो लेपचि दे त छान मुंडारी त निज अप्रैल साल सस्कुराव पिनिजो रेरी विश्व धूम परंपान निषेध दिवस रूप पर दी मना सैल दे पर थले दीते शुआ कि भाई हर साल निजो सही दिमाई भी विश्व तंबाकू निषेध दिवस रूपे मना सैली तात दो थल हर साल निजो सही दिमाई री दि खास ध्याड़ा मना सैवा छरी कुजी हेंजी भत्तेज नेज दन कि भाई दि तमागो तो आऊँ तंबाकू तो दी इच मियो जिंदगी सूले सूले खराब था चिकेरा दी योजिकन रा स्वास्थ्य रूठे खुशहाल जिंदगी उथल जी तंबाकू नी ओई ब्रही आईने जरूरी शुचील जी तो हेन दिल दी खास ख्याल ताज लेब दो कि भाई हेन अडलो ओ इब्राउनी तो उई दिबल दियू मदम असरा दु पाठी सेहत अभी नुकसान नो पाठी हेंज उई मीर ल जागरूक लाउनी तो दी तंबाकू ने ओई लेमी हेंज पूरे कोशिश लाउनी तो हेंज बातेज नैन कि भाई तो की वक्त अर्चाना मस मी जी बीड़ी सिगरेट तू जातो दूर ध्या छो मदम टू तू जातो दूर धीरा सा दे उल पाठी पाठी गुड़दन माँ गुटका शुआ खेनी शुआ उल तंबाकू चीजर दू दोजी सेवन लजा तो दूर ते या फीगी छोकरा जिल ईदू उई दुखानी ते शाऊ को शाऊ करी कुर्मा दिउ आदत दो दी ले गुआ ई पाठी हेंज दी कौन की भाई नहीं तंगी दोज एना दू आदत लगा के दूर तात दी खास दिहाड़ा मना गिते ध्या छो मी दी हेंजी कुर्दन माँ आऊ धीरा सा दे दी मदम टेकू रसा दे या हेंज कौन की भाई एना स्वास्थ्य ख्याल माता जाते ध्या छो चीजा रसा दे दुर जुड़े पुदुर ध्या छो मीद तंबाकू रनी दो दू सेहत अभी शुजा खतरा दुबारे दो दी जानकारी रंजिम थल जे दी खास ध्याड़ा मना सयोआ कुछ मना तो दी खास ध्याड़ा मनाच में मकसद दी तो कि भाई आऊँ जी ध्या छो मदम चीजा दू सेवन ला दुर दो दी दिव नुकसान उबारे कंड्री त दो दी तंबाकू फोके चिम पाठिल प्रेरित लसयुआ तंबाकू निषेध दिवस मना चिम खास मकसद मी दी स्वस्थ जीवन अपना चिये समाज तंबाकू मुक्त बना चिशु गप अदी ये कि भई भत्ते दीदी तंबाकू नी ओई ब्रेन जूशु आऊँ दी भी दिव आदत लेगी ईलजी तो दो दिल दिव आऊँ कुर्मा तंबाकू म्यू स्वास्थ्य री शुजा मदम असर तो दी दुबारे कंड जूशु इच स्वास्थ्य खुशहाल जिंदगी उथल जी तंबाकू फुकेटरी आईने जरूरी तो तात कुर लेख तो दोन कि भाई विश्व तंबाकू निषेध दिवस हैं दीदी उजाब रन रखी भाई हिंदू सेहत हिंदू भत्ते मोड़े संपत्ति शु तात हिंदी भत्ते दी दी तंबाकू नी ओई ब्रमाते स्वस्थ जिंदगी शी भी जूं शु गप्पा दी ये कि भाई कुर जुम्बुनी कि भाई तंबाकू इच धीमा जहर शु तात दिव सेवन लहजा म्यू जिंदगी री दू मदम असर शुजा तो इच पलखो मदम हीड़ियु वजई दुमियु सेहत अभी आईने नुकसान शुजुआ छरी कुजी कैंसर छो मदम टेकू ले भी लाजी राजबाजी जिंदगी री दी हयार लाजी के रा दी तंबाकुई गप्पा लादनी तो ओ दी तंबाकू ये तो हयार लाजी कन रा मीदू रूठे जिंदगी री तात सादिरे तंबाकू सेवन मा लाजी स्वस्थ भारत सुपना हेले लाजी कंट्री मिथाल जी देशो हर मी दी दी गप्पा हेंज कुछ जुम्बुन की भाई तंबाकू फोके तुनी स्वस्थ जीवन रसा दे नाता केंजी जोड़े तुनी दिए गलगप्पा रसा दे आई तुई गीत हेंज रे रुनी रामदेव कपूर जू सक्सी।

जी सादिरे घुरे किंजरे तनी दना ओ साजी रामे दना तेरे डोले। ना इफो गलगप्पा सभ्यता बारे शिष्टाचारों बारे छरी कुजी दीगु जुड़ एना गुबी जा धोन जुड़े गितो दोगु कि ईच में ऐसा खोचमी ख्याले बेकार शुआ। गप्पा दी कि भई आरिसा बेशुई नेसलासी गप्पा दू जरूर शिष्ट शो दो। आजे शिष्टाचारों पालन ला दोवी बातते जी सभ्य कोर। इच सभ्य मी हमेशा ध्यान छो गप्पा नी बचे इब्रां जातो छई आदुआ सेमरी कष्ट शुई। रूठे मीज त एना रसादे मदम लजामी दिला मदम मकुर रातो दुर। ध्यान छो मीज अब आदिल मदम मकुर रातो दुर। ध्यान छो मी त एनो गप्पा रूठे रसादे लजा तो एनो गप्पा उई दसादे रूठे रसादे लेरा सादे दोई उई दुगा पाला आईने आदर रसादे रे जातो। ध्यान छो मी एन मोड़े माचे जातो एन मोड़े माचे गीते दोई एनो टोयजी छम्मील पाठी फोसो माला जातो। एनो आयरानी एनो शटना कबिल अबिल माला जातो पर दोई उई दू दो दू रूठे गुणा दू क्षण जरूर लजातो। इच सभ्य मी त एनो व्यवहारे गप्पा फासा धोंड रूठेता जातो कि भाई दो कचरे ब्रांजा दो गप्पा रेरा मीर ल दो शाणा लाजिमे मा ब्रांजा तो दुर। कुरी मना त एनो बर्तावे एनो गल गप्पाई दोई उई मी दू टोई धोंड कुरमा असर ता जातो कि भाई उई मी जी दो दू शाणा जरूर लजा तो दुर। सादिरे कहावत लतो कि भाई हिंदू सेनाज ल कुशा कुशेता दुर कुरातो दुर कि भाई इच मी छमी शु दिव पता दो नाजिमी खाई शु भी मी दो जेमी ढांगे उई दसा दे गप्पा लेमी तमी जेरानी लेबा। कुछ मन ते इच मी रूठे रसा दे संभाड़े शा खड़े

वा समाड़े शाते सोड़िंग नाजा दुमी मोड़े दा सेना दसा दे छन गप्पल हा दुए क्वज काड़ू दसा दे छन गप्पल हा इन बिज मुड़ मी दू आदर ला दा कि तुमला द्या छोते या गा पार्शु भी छाई पता ले जातो कि भाई दुमी छमी छू तो दू छिड़ ही कुर्मा दुमी आऊँ व्यवहार छमी तो दुमी एन छमी गड़े छू तो दू चिड़ हद तचे सामाजिक छू हेले गप्पा कि भाई हे नर मी दू हिंदू आचरण है हिंदू रहन सहन रिते या क्वज मोड़े खराब आदत अरल जरूर शू जातो छो हिंदी आदत छू बेपरमा कुर्मा हिंदी पता है माले जातो कि भाई गी दी छी गप्पा ले लेक तो दोगी याद हो रहा गी दी छी बर्ताव उम्मीद आसा दे तो याद हो रहा भाई दी छी मादम आदत गी भी लेगी तो जहाँ छो हिंदी पता है माले जातो हिंदी तो चिट्टन ल मादम माचे सातो पर इच उई आऊ मी तो आऊ जी दियो कुर्मा हिंदू बर्ताव खंड रहा दोबी दियो पाठी मदम जरूर चेसा तो कुर्मा ना तो उई मी भी हिंदू मदम आदतर असभ्य तांफ दो दी मदम चेस तो दी पाठी इच गप्पाल कुर्जुम्बो की भई छन रेफिगी हिंजी आदो आदोर्चिनी छा चीज ताजा ते हबदनी पर थाले दू याजिम पाठी दोन हिंजी ध्यान मरण रातो दोनी या दुरा उई दू दोर्चिनी पेजी हाँसी चीज ध्यान माता जीते लापरवाह शु जीते हिंजी इस्तेमाल लाजी खराब लाजीते हिंजी अगर हजदनी या दुरा इच हाड़ी नी सामान ताजी हंजी दो ढाबा आऊँ दो लस्वा दुरंजी हिंजी ध्यान माता हजदनी ते या दुरा दिल लगा पशवा कि भाई आर्या प्रौण चूंग बुलागी पर दो आऊँ दू प्रौण तो दुमियों अभी मी वक्त अरी घ्यांग और तिखा नियर अच्छा भी कुछ मना चूंग मबरे तो दिल इच मदम आदत छो दी अध्याँ छो आदत अर हिंदी हमेशा सुधारे ची जू छू तारे छो मी मी जी जेते आऊँ पढ़े लिखे छो आदुर कुछ मना तो शिक्षा है रूठे फेश नो खमज ले जी सभ्य शिष्टाचार दो जमाने सा तो दुर कि भाई दू मी तो आईने रूठे खमज ले जा फेश नो खमज ले जा या दुरा दू पढ़ा लिखा तो दू आईने सभ्य छो दो तो दी गप्पा हेले मस्त दी इफो गलत सोच ल शुभी तरसी छरी कुछ इच पढ़े लिखे गे तरक तरक रूठे खमज ले जा मील अशिष्ट शुभी तरसी मदम शुभी तरसी इच क्वाज नगरा आऊँ ब्रजा इच कुमा पढ़ा लिखा मा अनपढ़ मील शिष्ट शुभी तरसी इच गरीब मील रूठे शुभी तरसी शिष्टाचार अर दोहन ताकत शुभी की भाई इच मी उई दिबी छाल रानी मेल भत्ते थल से आदरो राखी बने गुआ छन एनो इच रूठे बसने रही आऊँ दो गप्पा शुआ प्रेत शुआ दू दोहन रूठे शुआ कि भाई तुझे आऊँ मी शुआ दुई मसे शील दुमियों आदर ले इज्जत ले ठारे शुआ ता धुरा दिव फुजारी हिंज गप्पा लादनी आऊँ मी भी शिष्टाचारों का मी शुआ दुई त आर्य आदि दोराय सादे मदम बर्ताव लजिके रतो दोबी त दोरा एनो चुंग की टब रता चे मदम ताफी सादे दुनिया हर मीर दोबी एनो मदम लजार ताफी द्याचो मी चिट चिट गा पारी तेनी शाहे सी ठारे शयुआ दुवाक्तर तो दोई कुर्मा क्वाज मोड़ेर ताचे मखन रतो धीरा सादे इफो क्वाज क्वाज गा पाजी छाई इच मीऊ इज्जत उई दुची दारी ढाशु जुआ दो लहन जी गप्पा जरूर ले जुम बोनी छेर कुछ हैं जी क्वाश क्वाश गप्पा ध्यान हिंदू जिंदगी री ते या फिगी मरण रतो दोनी छान घ्यांगो दफ्तर हमेशा खराए पीपी आऊ ते वक्त तो दु वक्त रही है नरमा पीपी मी दा सादे गप्पा लतर जोर जोरे हौशेक ते गप्पा ले या तो रगत जई ब्रेन सहित भगत पेदानी दाथिका लागी पुर्चिकेश कुछ मना ध्यान छो रट्टू रे गप्पार शुआदुर सादी रे छाई इच मी इज्जत ढाशु जुआ दू उदु चीदारी उदु नजर आ रही क्वज बने गुआ तात ना थलमु करत गीत दी एक सादी रे कि भई हिंदू भारत देशे आऊँ सभ्यता हिंदी राशिता दो बराबरी दि संसारो आऊँ ल सभ्यता इले मारतू हिंदू सेना जी हिंदू पूर्वज जी भारतो धरती भारतो जमीन आऊँ बेज एजुकेशता दुर दो बराबरी लहजा दी दुनिया इच्चल चीज माँ तो दी ये कौन की भाई हमेशा कुर्मा जिंदगी री रूठे व्यवहार हेंदी उई दसा देता जजू शू ते ताए गप्पा दी कि भाई अगर हेंजी उई दी भी इज्जत रण दन से तो हेंदी ल इज्जत जरूर खोसी थलमु कर हेंज रेजोनी रिक जिन डोलमाए सादित सकसी दी गुरे

जी सादिरे, गुरे केंज रेश्तानी मास्टर रामू चांदा हो, अपना जिंदगी खत्म हो। दिए गुरे रसादे तो किसवांगलो प्रोग्राम वक्त यो सैलजा, ले पुगी जाजत, राम राम जुले।

0: Republic of Congo, the epicenter of the ongoing outbreak. And that is the end of this news bulletin.
1: एक सौ 3.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम शिमला केंद्र। 7:10 हुए हैं, लीजिए अब प्रस्तुत है किसान बागवान भाई बहनों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम।
2: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान एवं बागवान भाइयों और बहनों को हमारा नमस्कार। किसान साथियों, कृषि जगत के आज के इस अंक में मैं हूं रामकुमार शर्मा।
3: और मैं गुलवंत।
2: गुलवंत जी, कैसे हाल है आपके?
3: राम जी, हालचाल तो ठीक है। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो किसान श्रोता हैं, जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वे भी स्वस्थ होंगे और दैनिक कृषि कार्य कर रहे होंगे। देखिए, आजकल मई महीने का दूसरा पखवाड़ा समाप्ति पर है और जून महीना शुरू होने वाला है, लेकिन बारिशें और गर्मियां अच्छी पड़ रही हैं, तो ऐसे में हमें अपने जो खेतों में लगी फसलें हैं उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ खरपतवार उग गया है तो उन्हें हटाकर नष्ट कर दें, और जो नई फसलें हमने अपने खेतों में लगानी है, दलहनी फसलें, उनकी बिजाई इन दिनों आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ गर्मी के मौसम में सुबह और शाम ही अपने खेतों में काम करें।
2: लेकिन अपने विषय की ओर जाने से पहले जो हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा के बारे में आपको जानकारी दे दें।
3: जी,
2: किसान साथियों, काम की बातों के अंतर्गत हमारा जो आज का विषय है वो है गर्मियों में दुधारू पशुओं की बीमारियां व उनका स्वास्थ्य प्रबंधन। साथ ही हम अपने किसान और बागवान साथियों का मनोरंजन कराएंगे लोकगीतों के माध्यम से, और रोजमर्रा की तरह सुनाएंगे उन्हें एक जानकारी पूर्ण बातचीत जिसका विषय रहेगा सब्जी उत्पादन का महत्व। और इस विषय पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर योगराज शुक्ला, और उनसे जानकारी हासिल करेंगे दिनेश। और कार्यक्रम के अंत में जो हमारा अगले दिन प्रसारित होने वाला कृषि जगत कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा के बारे में आपको जानकारी देंगे।
3: बिल्कुल, तो काम की बातों के तहत अपने किसान भाइयों को जानकारी दे देते हैं। गर्मियों में दुधारू पशुओं की बीमारियां और उनका स्वास्थ्य प्रबंधन किस तरह से हम कर सकते हैं उसके बारे में। देखिए किसान भाइयों, पशुपालकों को गर्मियों और बरसात में अपने पशुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय वातावरण शुष्क गर्मी से नमी वाला गर्मी में परिवर्तित होता है। अधिक गर्मी के कारण पशुओं की रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रभावित होती है और अधिक नमी से परजीवियों और रोगाणुओं की उत्पत्ति होती है और वे तनाव में आ जाते हैं। इसलिए पशुपालकों को अपने पशुओं को स्वस्थ रखने और अधिक उत्पादन के लिए उनके रख रखाव में बदलते मौसम के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए।
2: जी, और किसान साथियों, इस मौसम में पशु का शारीरिक तापमान बढ़ जाता है, सांस तेज हो जाती है, और हीट स्ट्रेस के कारण दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन सामान्यतः घट जाता है। यह कमी अस्थाई से लंबे समय तक हो सकती है। इसके अलावा घास खाने में कमी और पानी पीने में बढ़ोतरी हो जाती है। गर्मियों और बरसात के मौसम में पशुओं की बीमारियां बढ़ जाती है, जिनमें की बाह्य परजीवी रोग, अंत परजीवी रोग, खुरपका मुंह पका जिसे FMD रोग कहते हैं, और 3 दिवसीय बुखार जिसे FMRL बुखार कहते हैं। साथ ही पशुओं को गलघोंटू और लंगड़े बुखार की शिकायत होती है। अब किसान साथियों, बाह्य परजीवी रोग की बात करें तो इसमें मुख्यतः चीचड़, जुए, मच्छर आदि होते हैं और गर्मियों के मौसम में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। चिचड़ी ग्रसित पशुओं में खून की कमी, बेचैन रहना, रक्त अल्पता आदि समस्याएं होती है। यह रक्त परजीवी दुधारू पशुओं के लिए अभिशाप होता है, क्योंकि ग्रसित पशु में दूध की कमी, खून की कमी और कमजोरी आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। देखने में आया है कि यदि पशु को 100 चिचड़ियां लगी हो तो वे 250 ग्राम खून जो है वो प्रतिदिन चूसती है। इसके अलावा बाह्य परजीवी चमड़ी संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है।
3: किसान भाइयों, अंत परजीवी रोग की अगर बात करें तो मुख्यतः गर्मियों के मौसम में अंत परजीवी जिसमें पेट, आंत और जिगर के, जैसे कि लीवर, फलियूक जो कि लार्वा ग्रसित घास खाने से पशु के अंदर जाकर विकार करते हैं, ये पशु का खून चूसना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे पशु कमजोर हो जाता है और पशु का गोबर बदबूदार और पतला हो जाता है। अतः इसके बचाव के लिए पशु के गोबर की परजीवी जांच करवानी चाहिए और पशु चिकित्सक की सलाह से कृमिनाशक दवाई लेनी चाहिए। जहां तक खुरपका मुंहपका रोग की बात है तो ये प्रत्येक मौसम में फैलने वाला विषाणु जनित संक्रामक रोग है और ये रोग बहुत तेजी से फैलता है। इसके मुख्य लक्षणों में तेज बुखार होना, खुरों में घाव होना, मुंह के अंदर फफोले एवं

0: छाले पड़ना, चलते हुए पशु में लंगड़ापन दिखाई देना और मुंह से लार टपकना और दूध की मात्रा में कमी होना मुख्य कारण है और ये बीमारी विषाणुओं द्वारा होती है। अतः इसका कोई उपचार अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन मुंह को लाल दवाई के घोल व खुरों को फिनाइल यानी कि 5% से साफ करें और मक्खी आदि का खुरों में बैठने ना दें। बीमार पशुओं का उपचार तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह से करवाना चाहिए और मुंह में तथा जीभ के ऊपर बोरोग्लिसरीन लगाने से घाव जल्दी भर सकते हैं।
1: अब किसान साथियों, 3 दिवसीय बुखार जिसे एफिमरल बुखार कहते हैं, यह रोग गर्मियों के मौसम में होने वाला विषाणु जनित आम रोग है। इसके लक्षणों में बुखार, लंगड़ापन एवं शरीर की अकड़न होना मुख्य है। यह रोग अचानक होता है और अधिकतम 3 दिन तक रहता है। आंखों, नाक और मुंह से पानी आता है और शरीर दर्द के कारण जकड़ सा जाता है। दूध का उत्पादन बहुत कम हो जाता है और कुछ समय बाद पशु एक जगह खड़ा रहना पसंद करता है। इस रोग में मृत्यु बहुत ही कम होती है और रोग स्वयं ही कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है। रोग का उपचार पशु चिकित्सक द्वारा करवाया जाना चाहिए।
0: जी,
1: अब किसान साथियों, गलघोंटू जिसे HS रोग कहते हैं, यह गायों और भैंसों में तेजी से फैलने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग है। यह बीमारी 1 से 3 दिन में अपना विनाशकारी रूप धारण कर लेती है और महामारी के रूप में फैलती है। इसके मुख्य लक्षणों में बहुत तेज बुखार जो कि 106 से 107 डिग्री फारेनहाइट तक जाता है और सुस्त होना, गले के नीचे और अगले पैरों के बीच में गर्म कठोर और पीड़ादायक सूजन होना तथा सूजन दबाने से दर्द होती है। गले के नीचे सूजन से सांस लेने में भारी तकलीफ और पीड़ादायक श्वसन के कारण नथुने चौड़े हो जाते हैं। इस बीमारी में आंखें लाल हो जाती है और नाक से पहले पतला और बाद में गाढ़ा म्यूकस निकलता है। अंत में पशु की मौत सांस में भारी तकलीफ के कारण हो जाती है। इस रोग के लक्षण प्रकट होने के पश्चात इसका उपचार कठिन होता है, इसलिए तत्काल ही पशु चिकित्सक से उपचार के लिए संपर्क करना चाहिए। समय रहते इलाज न करवा पाने पर पशु का बचना बहुत ही कठिन हो जाता है।
0: बिल्कुल। और किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं लंगड़ा बुखार यानी कि ब्लैक क्वार्टर की। ये बीमारी गर्मियों के मौसम में अधिक पशुओं में दिखाई देती है और प्राय 6 महीने से 3 साल के गौ पशुओं में होती है। भैंसों व भेड़ों में ये रोग होता है क्योंकि इस रोग के जीवाणु मिट्टी चरागाहों में पड़े रहते हैं, इसलिए ऐसे दूषित चरागाह में चरने से आहार के साथ स्वस्थ पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। संक्रामक रोग से बचाव और उनकी रोकथाम के तरीके अपनाए जाएं, पशु चिकित्सक के परामर्श से रोगग्रस्त पशुओं का इलाज किया जाए और बरसात से पहले स्वस्थ पशुओं को इस रोग का टीका लगा देना चाहिए।
1: अब किसान भाइयों, प्लीहा जिसे एंथ्रेक्स रोग कहते हैं, यह भी एक भयानक संक्रामक रोग है। इस रोग से ग्रस्त पशु की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। इस रोग के शिकार मवेशी के अलावा भेड़, बकरी और घोड़े भी होते हैं। इसके लक्षणों की बात करें तो इसके कारण तेज बुखार यानी 106 डिग्री से 107 डिग्री तक हो जाता है। मृत्यु के बाद नाक, पेशाब और गोबर के रास्ते खून बहने लगता है। ग्रस्त पशु के शरीर के विभिन्न अंगों में सूजन आ जाती है। प्लीहा काफी बढ़ जाती है और पेट फूल जाता है। इसके उपचार के लिए आपने करना क्या है कि संक्रामक रोग की रोकथाम व उनसे बचाव के तरीके अपनाएं और पशु चिकित्सक की सेवाएं प्राप्त करें। यह रोग भी स्थानिक होता है, इसलिए समय रहते टीकाकरण करने से बीमार होने का खतरा नहीं रहता है। तो किसान साथियों, ये तो हमने आपको जानकारी दी गर्मियों में दुधारू पशुओं की बीमारियों व उनका स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में। किसान साथियों, अब आपको निश्चय ही इंतजार होगा मनोरंजन का। आइए आप और हम मिलकर सुन लेते हैं चंपा शर्मा की आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान भाई और बहनों, ये तो सुना आपने लोकगीत। अब आपको इंतजार रहता है एक जानकारीपूर्ण बातचीत का, तो सुनते हैं रिकॉर्डेड कार्यक्रम के तहत सब्जी उत्पादन का महत्व विषय पर ये पुनः प्रसारित बातचीत। बातचीत में भाग ले रहे हैं डॉक्टर योगराज शुक्ला और उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं दिनेश।
1: आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर योगराज शुक्ला। डॉक्टर योगराज शुक्ला जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर योगराज शुक्ला जी, जैसे कि आज का हमारा विषय है सब्जी उत्पादन का महत्व एवं गुंजाइश, इसी विषय से संबंधित हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सब्जियों का हमारे भोजन में क्या महत्व है।
2: सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में रेशा, विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्व जिन्हें कि हम मिनरल्स बोलते हैं, और सूक्ष्म तत्व जिन्हें कि हम माइक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं, जैसे कि कॉपर, मैंगनीज एंड जिंक, ये सभी

0: तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं।
1: जी
0: ये सभी तत्व जितने सस्ते और जितने अधिक मात्रा में सब्जियों में पाए जाते हैं उतने किसी अन्य वस्तु में, अन्य किसी सोर्स में नहीं पाए जाते।
1: जी डॉक्टर साहब, सब्जियों का खाना या खाने में इस्तेमाल करने कैसे फायदेमंद है ये?
0: जी बिल्कुल, सब्जियों में प्रचुर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए है। तो विटामिन ए की कमी से हमें रात में कम दिखाई देता है।
1: जी
0: एक बीमारी है जिसका नाम है जीरो थैलमिया, इनके कमज़ोर नज़र हो जाती है,
1: जी
0: छाती में संक्रमण हो जाता है, कमज़ोर और लेट जो है घाव भरते हैं, और मुहासे इत्यादि ये रोग हो जाते हैं, खासकर नज़र से संबंधित रोग हो जाते हैं।
1: जी तो डॉक्टर साहब, विटामिन ए हमें किन-किन सब्जियों से मिल सकता है?
0: जी बिल्कुल, विटामिन ए हमें हर पीली सब्जी से, जैसे कि गाजर है, और आपका शकरकंदी है, और पका हुआ कद्दू है, और आलू है, केल एक पत्तेदार सब्जी है, मेथी के पत्ते हैं, और कुछ अन्य सब्जियों जैसे कि पालक है, प्याज के डंठल है, गांठ गोभी है, शलगम के पत्ते हैं, और ब्रोकली है, पार्सले के पत्ते हैं, और लेट्यूस जिसको कि हम सलाद बोलते हैं,
1: जी
0: और रंगीन शिमला मिर्च जैसे पीली शिमला मिर्च
1: जी
0: और लहसुन के पत्ते, इन चीज़ों में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है।
1: जी यानी इन सब्जियों से विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है।
0: जी
1: साथ ही विटामिन कमी के क्या क्या लक्षण हैं?
0: विटामिन बी की कमी में जो है हमें एक तो बीमारी है जिसका नाम है बेरी बेरी डिजीज, बेरी बेरी बीमारी,
1: जी
0: और अनीमिया यानी कि खून की कमी, डिप्रेशन यानी कि तनाव, और फैटिक यानी कि थकान, और वीकनेस यानी कि कमजोरी, और संक्रमण के लिए संवेदनशीलता, और चमड़ी से संबंधित बीमारियां, और इन लोगों का संक्रमण, ये रोग हमें विटामिन बी की कमी से ज़्यादातर हो जाते हैं।
1: यानी अगर इस तरह के लक्षण हो तो हो सकता है कि उन्हें विटामिन बी की कमी हो सकती
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो विटामिन बी हमें किन-किन सब्जियों से मिल सकता है?
0: हाँ, विटामिन ए बी जो है हमें मटर, लहसुन, ब्रूसल स्प्राउट, फूलगोभी और सहजन जिसे हम ड्रम स्टिक भी बोलते हैं,
1: जी
0: मेथी के पत्ते, फ्रास बीन, लीमा बीन जिसे हम सेम या क्यों भी बोलते हैं,
1: जी
0: खरबूजा, आलू, पालक, देसी पालक, ब्रोकली, शकरकंदी और शलगम के पत्तों में, इन सभी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, यदि हमें विटामिन सी की कमी होगी तो कैसे पता चलेगा, इसके कैसे लक्षण होंगे जिससे हम ये पता लग सके कि विटामिन सी की कमी हो रही है?
0: जी बिल्कुल, विटामिन सी की कमी से हमें एक बीमारी है जिसका नाम होता है स्कर्वी, और चमड़ी में लगने वाले रोग यानी कि त्वचा संबंधी रोग,
1: जी
0: रूखी तथा फटी हुई त्वचा, होंठों का फटना, नाखून के साथ वाली चमड़ी का फटना, घावों का देरी से भरना, कमजोर हड्डियां, बीमारियों के लिए कम सहनशीलता यानी कि
1: जी
0: पुअर इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं,
1: जी
0: एकदम से मोटापा होना, और अत्यधिक तनाव यानी कि टेंशन वगैरह वगैरह, ये जो रोग है ये विटामिन सी की कमी से अक्सर हो जाते हैं।
1: और डॉक्टर साहब, विटामिन डी की कमी के क्या लक्षण हैं?
0: हाँ जी, विटामिन डी एक दुर्लभ विटामिन है जो कि हमें सिर्फ सूरज की रोशनी से ही मिलता है।
1: जी
0: इसकी कमी से हमें रिकेट्स यानी कि सूखा रोग, और ऑस्टियोमेलेसिया यानी कि अस्थि मृदुता,
1: जी
0: मतलब हड्डियों से संबंधित बीमारी है, और स्तन कैंसर, फिर प्रोस्टेट का कैंसर, और हृदय संबंधी रोग, डिप्रेशन यानी कि तनाव, वेट गेन यानी कि वजन बढ़ना,
1: जी
0: अस्थमा यानी कि दमा, और सांस से संबंधित रोग, ये कुछ मुख्य बीमारियां हैं जो विटामिन डी की कमी से होती है।
1: तो किन सब्जियों का उपयोग करके विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है?
0: जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये जो विटामिन है हमें सूर्य की रोशनी से फ्री मिलता है, और खासकर सुबह सुबह की सूर्य की रोशनी, जो इंसान धूप में काम करते हैं या जो धूप सेकते हैं उनको ये बीमारी कम होती है।
1: जी
0: फिर भी सब्जियों में विटामिन डी हमें पालक, केल, भिंडी और कोलार्ड्स होते हैं कुछ, और कुछ किस्मों के बीन जिसमें जैसे सोयाबीन या सफ़ेद बीन जिनके दाने सफ़ेद होते हैं,
1: जी
0: इन सब्जियों से ये मिल जाता है हमारे को
1: जी
0: विटामिन डी।
1: जी साथ ही विटामिन ई की कमी के क्या लक्षण है और किन-किन सब्जियों में विटामिन ई पाया जाता है?
0: जी, विटामिन ई भी एक दुर्लभ विटामिन है, और इसकी कमी से हमें मसल की वीकनेस, हमारी जो मसल है वो कमजोरी हो जाती है
1: जी
0: यानी कि मांसपेशियों की कमजोरी, चलने में दिक्कत आती है, और शरीर में झंझनाहट होती है, देखने में यानी कि नज़र संबंधी दिक्कत होती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। इस तरह के रोग कुछ विटामिन ई की कमी से होते हैं, और कुछ सब्जियां जैसे कि लाल स्वीट पेपर यानी कि लाल शिमला मिर्च, शलगम के पत्ते, ब्रोकली, चुकंदर के पत्ते, एस्पेरेगस और सरसों के पत्ते यानी कि

0: सरसों का साग और पालक, ये सभी विटामिन ई का धनी स्रोत है।
1: साथ ही डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं और किन किन सब्जियों में पाए जाते हैं और इनका हमारे शरीर में क्या महत्व है।
0: ये आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा। अक्सर लोगों को एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पता नहीं होता, जागरूकता की कमी होती है।
1: जी
0: एंटीऑक्सीडेंट कई फलों और सब्जियों में पाए जाने वाला विटामिन, मिनरल और केमिकल, इन सभी का एक संयोजित रूप है। इन तीनों चीज़ों का
1: जी
0: हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं, जैसे कि पाचन संबंधी क्रियाएं, सांस संबंधी क्रियाएं, और इन सभी क्रियाओं में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। और ऑक्सीकरण के प्रक्रिया के दौरान ऐसे अनेक उत्पाद हमारे शरीर में पनपते हैं, पैदा होते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं,
1: जी
0: जैसे जैसे वो ऑक्सीडेशन होती है।
1: जी
0: तो जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इन अतिरिक्त नुकसानदेह उत्पादों को नष्ट करके कई तरह की जानलेवा बीमारियों से रक्षा करते हैं, जैसे कि दिल की बीमारियां, त्वचा की बीमारियां, बुढ़ापा जल्दी आना, और स्पेशली कैंसर,
1: जी
0: कैंसर जैसे रोगों से ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट युक्त सब्जियां, जैसे कि रंगीन सब्जियां, ये खानी
1: जी
0: चाहिए, जिनमें चुकंदर, रंगीन शिमला मिर्च, रंगीन ब्रोकली, गाजर, टमाटर, केल, लाल पत्ता गोभी और हरा धनिया,
1: जी
0: और सेम बीन, एक सेम,
1: जी जी
0: इन सभी हरे पत्तेदार सब्जियां का सेवन से हमें एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मात्रा में मिल जाते हैं। और ये सब्जियां विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होती हैं और साथ में एंटीऑक्सीडेंट भी देती है।
1: जी तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं और किन किन सब्जियों में पाए जाते हैं और इसका हमारे शरीर में क्या महत्व है। साथ ही अगर हम बात करें विटामिन के की कमी के लक्षणों के बारे में, तो डॉक्टर साहब, विटामिन के किन सब्जियों में पाया जाता है।
0: विटामिन के की कमी से जैसे बहुत ज्यादा घावों से ब्लीडिंग हो रही हो,
1: जी
0: खून निकल रहा हो, फिर वो भरते नहीं है, अत्यधिक खून बहता है, स्मॉल ब्लड क्लॉट्स, यानी कि खून के छोटे छोटे थक्के बन जाते हैं,
1: जी
0: सडन ब्लीडिंग होती है ब्रेन में, अचानक दिमाग में खून बहना शुरू हो जाता है, इस तरह के जो रोग है वो विटामिन के की कमी से होते हैं। और इनकी कमी हमें केल, एक सब्जी है, पालक, ब्रूसल स्प्राउट, ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पार्सले और लेट्यूस,
1: जी
0: और शलगम के पत्ते खासकर, इन सब्जियों को खाके इस विटामिन के की कमी को हम पूरा कर सकते हैं।
1: जी तो इनके अतिरिक्त और कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो हमें सब्जियों से मिलते हैं।
0: बिल्कुल, विटामिन से अतिरिक्त हमारे शरीर को जैसे कैल्शियम, आयरन, मैगनीज, सोडियम, पोटाशियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम और सिलिकॉन, वेनेडियम, फास्फोरस, क्रोमियम, कॉपर और जिंक, ये सभी खनिज तत्व हैं जो थोड़ी बहुत मात्रा में सब्जियों में पाए जाते हैं। और इन सब्जियों का सेवन करके हम इन सभी खनिज तत्वों से होने वाली कमी को पूरा कर सकते हैं।
1: जी तो डॉक्टर साहब, वर्तमान परिवेश में आंकड़े क्या बताते हैं कि हमारे देश में कितने क्षेत्र में सब्जियों की खेती की जा रही है और वास्तव में सब्जी उत्पादन की देश में क्या स्थिति है।
0: हाँ जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा प्रश्न ये। हमारे वर्तमान परिवेश में भारतवर्ष में 1,04,36,000 हेक्टेयर क्षेत्र में से 1,87,474,000 मैट्रिक टन सब्जी उत्पादन हो रहा है। इस तरह प्रति हेक्टेयर 16.7 टन की उत्पादन हो रहा है, यानी कि
1: जी
0: 1 टन से 16.7 टन सब्जियां उत्पादित हो रही है, जो कि काफी कम है, उनकी मात्रा काफी कम है। विश्व भर में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है, यानी कि हम सब्जी उत्पादन में भारत का चीन के बाद पूरे विश्व में दूसरा स्थान है।
1: जी
0: फिर भी प्रति व्यक्ति को सिर्फ 230 ग्राम सब्जियां ही उपलब्ध हो रही है,
1: जी
0: जबकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार एक व्यक्ति को औसतन कम से कम 300 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए।
1: जी
0: तो अगर हम 300 में से 230 को घटाएं तो लगभग 70 ग्राम सब्जियां एक इंसान को एक दिन में भारतवर्ष में कम मिल रही है खाने को।
1: जी
0: तो वर्तमान परिवेश में प्रति व्यक्ति 70 ग्राम सब्जियां कम खाई जा रही है, और इस हिसाब से यदि हम 130 करोड़ की आबादी को अगर मान के चलें आज
1: जी
0: के दिन में,
1: जी जी
0: तो प्रतिदिन 10,12,500 टन सब्जियां और चाहिए
1: जी
0: इस
1: यानी
0: कमी को पूरा करने के लिए,
1: यानी हमारा उत्पादन जो है वो और ज़्यादा होना चाहिए।
0: और ज़्यादा होना चाहिए।
1: जी
0: तो दूसरे शब्दों में, यदि 0.108% क्षेत्र सब्जी उत्पादन में और बढ़ा दिया जाए,
1: जी
0: तो ये जो 10,12,500 टन प्रतिदिन का जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा,
1: जी
0: और हर व्यक्ति को औसतन 300 सवा 300 ग्राम सब्जियां खाने को मिलेगी, और वो कमियां जो सब्जी ना खा

0: से पैदा होती है, ये सारी की सारी कमियां और बीमारियां दूर हो जाएंगी और भारतवर्ष का हर व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा
1: जी
0: सब्जियां खाने से।
1: जी बिल्कुल, यानी हमारा जो भी किसान भाई है या बागवान भाई बहन है या हमारे जितने भी लोग ले ले, उनके लिए अगर सब्जी अच्छी तरह से मिल जाती है, सब्जी उत्पादन अच्छा होता है, तो वो अच्छी तरह से स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं,
0: स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे और बहुत सारा पैसा जो सब्जियां ना खाने की वजह से बीमारियां हो रही है
1: जी जी
0: उनमें जो पैसा वेस्ट हो रहा है वो बच जाएगा।
1: जी बिल्कुल, तो सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में वर्तमान में या वर्तमान प्रवेश में कितनी गुंजाइश है?
0: जी बिल्कुल, बहुत गुंजाइश है। या तो सब्जियों के अंदर जो एरिया है वो बढ़ा दो
1: जी,
0: या उत्पादन बढ़ा दो
1: जी जी,
0: या उन्नत उत्पादन की विधियों को विकसित कर दो
1: जी,
0: या नई उत्तम किस्में विकसित कर लो जिसमें कि रोग रोधक किस्मों का विकास हो
1: जी,
0: और नई नई प्रजातियों का और नई नई तकनीकों का विकास हो।
1: जी
0: इन सभी तकनीकों को किसानों तक पहुंचाया जाए विकास करने के बाद
1: जी,
0: और सब्जियां ना खाने की वजह से जो रोग पैदा हो रहे हैं और उनके बारे में जनमानस को जागरूकता लाई जाए, जागरूकता पैदा की जाए
1: जी,
0: कम से कम कीटनाशकों का और फफूंदनाशकों का प्रयोग हो
1: जी,
0: जहर मुक्त खेती के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाया जाए और दवाइयों पर कम से कम पैसा खर्च किया जाए, तभी हमारा देश तरक्की करेगा।
1: जी बिल्कुल,
0: जी बिल्कुल, जागरूकता की कमी है
1: जी जी,
0: सब्जियां पैदा भी की जाए और उनकी इम्पोर्टेंस, उनका महत्व भी बताया जाए किसानों को, सभी लोगों को, नौ किसानों को भी,
1: जी
0: सभी जनमानस को
1: जी जी जी।
0: उससे सिर्फ ना कि उनकी सेहत अच्छी होगी बल्कि जो दवाइयों में जो पैसा वेस्ट जा रहा है दवाइयों में वो भी बचेगा
1: जी बिल्कुल,
0: तंदुरुस्त होगा हर इंसान, तंदुरुस्त होगा
1: और उनकी इससे प्रति व्यक्ति
0: आय भी बढ़ेगी
1: जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अंत में आप हमारे जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं बिल्कुल यही संदेश दूंगा कि हर इंसान को अपने और अपने परिवार के खाने लायक सब्जियां खुद उगानी चाहिए, बाजार की सब्जियों में कम डिपेंडेंट रहना चाहिए, जितनी की जितनी सब्जियां हैं वो ऑर्गेनिक खेती करें, कम से कम स्प्रे हो, मिनिमम स्प्रे हो और अपने परिवार को जहर मुक्त खेती करके सब्जियां उपलब्ध कराएं ताकि स्वस्थ भी रहें और बीमारियों के ऊपर पैसा भी बचे।
1: जी बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब आज आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए, कौन कौन से विटामिन है, किस तरह के विटामिन की कमी को हमारी सब्जियों के द्वारा वो पूरा कर सकते हैं और किस तरह से वो इस समय वर्तमान परिवेश में अगर हम बात करें तो सब्जी का उत्पादन किस तरह से किया जा सकता है और अपना उत्पादन किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और इस विषय में सब्जी उत्पादन का महत्व और गुंजाइश के बारे में आपने हमारे किसान श्रोताओं को ये जानकारी दी। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथियों, अभी आपने सुना ये जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण जिसका विषय था सब्जी उत्पादन का महत्व और इस विषय पर हमें ज्यादा जानकारी दे रहे थे डॉक्टर योगराज शुक्ला और उनसे जानकारी हासिल कर रहे थे दिनेश। निश्चय ही आप इस जानकारी का फायदा उठाएंगे। तो किसान साथियों, अब निश्चय ही आपको पुनः इंतजार होगा मनोरंजन का। आइए आप और हम मिलकर सुन लेते हैं लेखराम पाल व साथियों की आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान भाइयों, ये तो सुना आपने लोकगीत। अब चलते चलते कल के मुख्य आकर्षणों की जानकारी भी आपको दे देते हैं। कल हम काम की बातों के तहत आपको जानकारी देंगे मक्के की किस्मों के बारे में, साथ ही पहाड़ी लोकगीत से मनोरंजन करेंगे और एक जानकारीपूर्ण बातचीत सुनाएंगे जिसका विषय रहेगा गाभिन गाय व बछड़ों की देखभाल। बातचीत में भाग लेंगे डॉक्टर संदीप गुप्ता और उनसे जानकारी हासिल करेंगे अशोक। तो अब तो देखिए हमारे इस कार्यक्रम का समय भी संपन्न हो चला है, सभी श्रोताओं से अनुमति चाहते हैं।
1: नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: अभी किसान बागवान भाई बहन सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र।
3: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला।
2: में घर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला के

इंद्र भी रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप FM शिमला 103.7 MHz के साथ साथ DTH तथा मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भीषण गर्मी में सावधानी बरतने और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने का किया आग्रह। धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगम पर भाजपा का कब्जा, पालमपुर में कांग्रेस ने मारी बाजी। मुख्यमंत्री का दावा, पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को मिला भारी जनसमर्थन। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा, जनता ने भाजपा की नीतियों पर जताया भरोसा। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की भी आज हुई गणना, देर रात तक सभी परिणाम आने की उम्मीद। और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से जनगणना कार्य में भाग लेने का किया आग्रह, कल से स्वगणना पोर्टल पर जानकारी दर्ज करवा सकेंगे लोग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में गर्मी के मौसम में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना और सोल कड़ी का सेवन करना उपयोगी है।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड्स सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई है। इससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है।
2: नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहचान बनाई है और आम देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
2: मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारा मंडल देखने की अपील भी की। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 3 नगर निगमों में शानदार जीत हासिल कर ली है। राज्य में 17 मई को 4 नगर निगमों में वोट डाले गए थे, जिनकी आज मतगणना की गई। धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगम पर भाजपा ने कब्जा किया है।

0: जबकि पालमपुर नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी है। धर्मशाला नगर निगम में कुल 17 वार्डों में से भाजपा ने 11, कांग्रेस ने 5 और निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 वार्ड पर जीत हासिल की है। इसी प्रकार सोलन नगर निगम में भाजपा को 10 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 6 वार्डों में ही जीत हासिल हुई है। 1 वार्ड पर निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। मंडी नगर निगम में 15 वार्डों में से इस बार 14 वार्डों में ही मतदान हुआ। इनमें से 12 पर भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी को 1 वार्ड में जीत मिली है। मंडी के बहना वार्ड में लोगों ने स्थानीय विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया और यहां मतदान नहीं हो सका। उधर पालमपुर नगर निगम पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया है। शहर के कुल 15 वार्डों में से 11 पर कांग्रेस और 4 वार्डों में भाजपा को जीत मिली है। कांगड़ा जिले में नगर निगम चुनावों के नतीजों पर अधिक ब्यौरे के साथ प्रस्तुत है हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: सप्ताह का सेमीफाइनल माने जा रहे

0: हो सका। उधर पालमपुर नगर निगम पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया है। शहर के कुल 15 वार्डों में से 11 पर कांग्रेस और 4 वार्डों में भाजपा को जीत मिली है। कांगड़ा जिले में नगर निगम चुनावों के नतीजों पर अधिक ब्यौरे के साथ प्रस्तुत है हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: सप्ताह का सेमीफाइनल माने जा रहे नगर निगम चुनावों में प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा से भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए मिश्रित संदेश सामने आया है। धर्मशाला में भाजपा की इस जीत को स्थानीय विधायक सुधीर शर्मा के प्रभाव और संगठनात्मक मजबूती से जोड़कर देखा जा रहा है। इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि कांगड़ा की राजनीति में मुकाबला अभी भी बेहद रोचक और संतुलित बना हुआ है। मिशन 2027 की दिशा में दोनों दलों के लिए यह चुनाव एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत साबित हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR_News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि प्रदेश में पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को भारी जनसमर्थन मिला है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि प्रदेश में लगभग 2400 कांग्रेस समर्थित पंचायत प्रधान व 2300 उप प्रधान विजयी हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नगर निगम चुनावों के आधार पर पूरे प्रदेश का माहौल अपने पक्ष में होने के दावे कर रही है, जो गलत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम के चुनावों में लोग स्थानीय विधायक को देखकर वोट देते हैं। उधर मंडी नगर निगम में भाजपा की प्रचंड जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज मंडी में एक विजय रैली निकाली। रैली को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया कि ये जनादेश प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ है और जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 3 नगर निगमों के चुनावी नतीजे प्रदेश की बदलती राजनीतिक दिशा का संकेत है।
2: सबसे बड़ी बात तो है जो पार्टी के जो कार्यकर्ता ने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, पसीना बहाया, तब जाकर के ये जीत हुई है। लेकिन आज मैं इन सभी काउंसलर से इस बात के लिए भी आग्रह करूंगा, अगर कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया है, अब आपको पसीना बहाना है मंडी के बेहतरी के लिए, मंडी के विकास के लिए। हम मिलकर के काम करेंगे।
0: प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को हुए जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना भी आज की गई। इनमें जिला परिषद की कुल 251 और पंचायत समिति सदस्यों की 1669 सीटें शामिल हैं। हालांकि जिला परिषद और BDC के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं करवाए गए, लेकिन भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत के दावे कर रही हैं। 3 चरणों में हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में लगभग 81% मतदाताओं ने वोट डाले और मतदान को लेकर सभी आयु वर्ग के लोगों में खासा उत्साह देखा गया। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने सोलन सहित प्रदेश के 3 नगर निगम चुनावों में पार्टी की जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने आज सोलन में कहा कि इस जीत से ये स्पष्ट हो गया है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी। सुरेश कश्यप ने कहा कि इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों को जाता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी लोगों से जनगणना कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जनगणना 2 चरणों में की जाएगी और पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई के बीच चलेगा। इस दौरान मकान सूचीकरण, मकान गणना और जनसंख्या की गणना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कल 1 जून से 15 जून तक लोग स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने लोगों से स्वगणना विकल्प का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी तक चलाया जाएगा, जबकि प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना कार्य का दूसरा चरण 11 सितंबर से 30 सितंबर तक होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भीषण गर्मी में सावधानी बरतने और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने का किया आग्रह। धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगम पर भाजपा का कब्जा, पालमपुर में कांग्रेस ने मारी बाजी, मुख्यमंत्री का दावा, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को मिला भारी जनसमर्थन। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा, जनता ने भाजपा की नीतियों पर जताया

0: भरोसा। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की भी आज हुई गणना। देर रात तक सभी परिणाम आने की उम्मीद। और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से जनगणना कार्य में भाग लेने का किया आग्रह। कल से स्वगणना पोर्टल पर जानकारी दर्ज करवा सकेंगे लोग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी आप आकाशवाणी के शिमला, हमीरपुर, धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच तथा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने देशगान।

देशगान अभी आपने सुना, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम शिमला केंद्र। 8 बज चुके हैं और ये वक्त है प्रोग्राम भूले बिसरे गीत का। प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मैं रमदीपक शर्मा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना अपने परिवार का

समाज व पर्यावरण का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। प्रोग्राम की पहली पेशकश मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम जागते रहो। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: सच है क्या?
1: बिन तेरे शहर का शहर वीरान रहता है, बिछड़ के तुमसे हर रास्ता सुनसान रहता है। वो तुम्हें तुमसे भी ज्यादा प्यार करता है, जो तुम्हारे सामने अक्सर अनजान रहता है।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
3: कैसी लत लगी है तुम्हारे दीदार की, बात करो तो दिल नहीं भरता, ना करो तो दिल नहीं लगता।

0: अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों में अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
1: थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है। आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
0: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी। आकाशवाणी
1: नियमों श्रुति लागू।
2: तुम्हारे

हर रात उनकी यादों का जहर पीता हूँ, टूटता हूँ, बिखरता हूँ, फिर भी जीता हूँ। शायद यही किस्मत में था हमारी, तुम्हारे बिना हर पल यूं ही तड़पता रहता हूँ।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम शिमला केंद्र। 8:30 हो चुके हैं, वक्त है फिल्म संगीत का। सातरंग

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम शिमला केंद्र। 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या का प्रसारण अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ @9। कीजिए बस कुछ ही क्षणों का इंतजार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की।

0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा।

0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
1: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा

0: कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
1: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत

0: करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar.

9:15 हो चुके हैं और ये वक्त है प्रोग्राम एक फिल्म से का। प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मेरम दीपक शर्मा। दोस्तों आज हम बात करेंगे 1976 में आई हिंदी फिल्म महबूबा के बारे में। ये फिल्म शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित थी और फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म की जो कहानी है वो पुनर्जन्म विषय पर आधारित है और आपको बता दें कि इस फिल्म की मुख्य जोड़ी द्वारा शानदार अभिनय, लता मंगेशकर, किशोर कुमार द्वारा गाए गीत, खासतौर पर मेरे नैना, सावन भादो और पर्वत के पीछे के लिए इस फिल्म को जाना जाता है। इस फिल्म का कथानक गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित है और उन्होंने पटकथा भी स्वयं लिखी थी। ये उपन्यास सिसकते साज पर आधारित थी। क्या है फिल्म की कहानी बताएंगे इस गीत के बाद। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

दोस्तों, फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से, क्योंकि ये पुनर्जन्म पर आधारित होती है, तो पूर्व जन्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की शुरुआत पुराने समय यानी राजस्थानी पृष्ठभूमि से होती है, जहां पर एक लोकप्रिय गायक प्रकाश यानी राजेश खन्ना और एक बंजारा नर्तकी जुमरो यानी हेमा मालिनी एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं। लेकिन जुमरो का कबीले का सरदार यानी प्रेम चोपड़ा उसे प्रकाश से दूर करना चाहता है और उनके प्रेम को पूरा होने का मौका ही नहीं मिलता और एक दुखद दुर्घटना में दोनों की मौत हो जाती है, लेकिन वो अगले जन्म में फिर से मिलने का वादा करते हैं। अब वर्तमान जन्म की कहानी की बात करें तो आधुनिक समय में प्रकाश का पुनर्जन्म सूरज यानी सूरज के रूप में होता है और सूरज एक अमीर और प्रसिद्ध चित्रकार पेंटर होता है। एक दिन उसे अपने सपनों में एक रहस्यमयी चेहरा दिखाई देता है और ये बिल्कुल उसी चेहरे की पेंटिंग बना देता है जो जुमरो का ही रूप होता है। अपनी कला प्रदर्शनी के दौरान सूरज की मुलाकात रितिका यानी हेमा मालिनी से होती है, जो बिल्कुल जुमरो की तरह दिखती है। सूरज रितिका को देखकर हैरान रह जाता है और उसे बताता है कि वो दोनों पिछले जन्म के प्रेमी हैं। हालांकि रितिका एक आधुनिक और व्यवहारिक लड़की होती है, इसलिए वो इन बातों को नकार देती है और सूरज को एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति समझती है। बाद में जब रितिका को अपने ही कुछ अजीबोगरीब अनुभवों और सूरज के प्रति खिंचाव का एहसास होता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि उनका रिश्ता इस जन्म का नहीं बल्कि युगों पुराना है। पुनः रितिका के जीवन में विलेन प्रेम चोपड़ा का प्रवेश होता है, जो अपने पुराने जन्म के मंसूबों को पूरा करना चाहता है। कहानी कई उतार चढ़ावों और रहस्यों को

जिस उस फिल्म के जो गीत लिखे थे वो आनंद बख्शी ने और उन्हें दिलकश संगीत से संवारा था आर डी बर्मन ने। बहुत ही खूबसूरत इस फिल्म के गीत थे, जैसा कि अभी आपने सुना मेरे नैना सावन भादो। किशोर कुमार और लता मंगेशकर दोनों ने इस गीत को गाया था अलग अलग तरीके से। और इस फिल्म के जो गीत थे वो मन्ना डे ने भी गाए थे। और इस फिल्म के लिए 5 श्रेणियों में फिल्म फेयर के पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए हेमा मालिनी को, सहायक अभिनेता के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए प्रेम चोपड़ा को, फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ कथा के पुरस्कार को गुलशन नंदा को, सर्वश्रेष्ठ संगीत के पुरस्कार को आर डी बर्मन को और आनंद बख्शी को फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ गीतकार के पुरस्कार के लिए नामित इस फिल्म के लिए किया गया था।

0: अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
1: आपका थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है।
0: आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: दोस्त भी तू, प्यार भी तू, एक भी तू, हजार भी तू, गुस्सा भी तू, माफी भी तू, जिंदगी के सफर में हमारे लिए बस काफी है तू। दिल की आवाज विजन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका रेडियो मेरम दीपक शर्मा। प्रोग्राम की पहली पेशकश, फिल्म का नाम साजन की बाहों में। साधना सरगम और कुमार शानू के बोल, कुमार शानू की आवाजें, नदीम श्रवण के बोल, समीर के बोल, नदीम श्रवण की धुन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: यदि आप चला रहे हैं कोई पंजीकृत स्वास्थ्य क्लिनिक या अस्पताल
1: या पंजीकृत होटल या रेस्टोरेंट,
0: तो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कीजिए। शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, यह है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: हमने तन्हाई में जंजीर से बातें की है, अपनी सोई हुई तकदीर से बातें की है। तेरे दीदार की भला हमको अब क्या तमन्ना होगी, जिंदगी भर तेरी तस्वीर से बातें की है। मौसीकी से भरपूर गजलों के इस कार्यक्रम में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। मैं आपका रेडियो मैरम दीपक शर्मा। प्रोग्राम की पहली पेशकश चंदन दास की आवाज में।

कच्ची दीवार हो ठोकर न लगाना मुझे, अपनी नजरों में बसाकर यूं ही ना गिराना मुझे। तुमको आंखों में तसव्वुर की तरह रखता हूं, दिल में धड़कन की तरह तुम भी बसाना मुझे।

कि मैं वक्त के साथ साथ चल रहा हूँ, जैसे जैसे काम मिलता गया और गज़लें मकबूल होती गई वैसे वैसे आपको सुना रहा हूँ।

हमारे दिल को सुकून मिले जब तुम्हारे लबों पर मुस्कान हो, जब तुम ना दिखो तो लगे दिल में बेचैनियों का ही मुकाम हो। अगली आवाज़ गुलाम अली की, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

दिल का हाल बताना नहीं आता, हमें ऐसे किसी को भी तड़पाना नहीं आता। सुनना तो चाहते हैं हम उनकी आवाज़ को, पर हमें कोई बात करने का बहाना नहीं आता। अगली आवाज़ चित्रा सिंह की, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ओनली 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला के साथ।

लब पर हमेशा तुम्हारा नाम रहने दे, तुम्हारे इश्क की सुरमई ये शाम रहने दे। ख्वाब बन के उतर जाओ हमारे इन आँखों में, तुम्हारे हुस्न का ये छलका हुआ जाम रहने दे। आखिरी पेशकश आशा भोसले और भूपेंद्र की आवाज़ों में।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जिस्म को पा लेना इश्क नहीं, रूह को महसूस करना इश्क है। किसी को अपना बनाना इश्क नहीं, खुद सिर्फ उन्हीं का बन जाना इश्क है। सदाबहार निगम कार्यक्रम की पहली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में।

जब खामोश निगाहों से बात होती है तो बस ऐसे ही मोहब्बत की शुरुआत होती है। हम तो बस खोए रहते हैं उनके ख्यालों में, पता ही नहीं चलता कब दिन और कब रात होती है।

तुम्हारे ख्याल से खुद को छुपा के देखा है, दिलो नज़र को रुला रुला के देखा है। तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे कसम हमने कुछ पर तुम्हें भुला के भी देखा है।

उनसे मिलकर जाना मोहब्बत क्या होती है, कैसे दिलों में चाहत की शमा जलती है, हर लम्हा उनके साथ बिताना चाहते हैं, अब तो बस यही बात दिल करता है। प्रोग्राम की आखिरी पेशकश

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम शिमला केंद्र। इस समय रात्रि के 11 बजने को हैं। समाचारों का प्रसारण अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, पहले हिंदी में और फिर 11:05 पर अंग्रेजी में। कीजिए बस कुछ क्षणों का इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में शाजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान

0: चार शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Man Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President Ooh Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a 5-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors